आज दिन शुक्रवार है। शक संवत 1947 के आषाढ़ मास की 19वीं तिथि तदनुसार 10 जुलाई 2026। अब हमारी सुबह की सभा आरंभ होती है। आप सभी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन

0: जीवन सौरभ।
1: आज हम समझेंगे कि किस प्रकार हम गरुड़ पक्षी से एक अच्छा टीम लीडर बनने की प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। भारतीय परंपरा में गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन माना गया है। ये एक ऐसा दिव्य प्रतीक है जो दूरदर्शिता, गति और रक्षा का द्योतक है। तेज दृष्टि, निर्भीक उड़ान और अचूक लक्ष्य साधने की क्षमता के कारण गरुड़ नेतृत्व को नई ऊंचाई देता है। गरुड़ ऊंचाई से भी शिकार को देख सकता है। यह दूरदृष्टि उस क्षमता का प्रतीक है जिसे प्रत्येक टीम लीडर को विकसित करना चाहिए। श्रेष्ठ नेतृत्वकर्ता छोटी चुनौतियों और परेशानियों से विचलित नहीं होते, बल्कि वे बड़ी तस्वीर देखते हैं, बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, परिवर्तनों का अनुमान लगाते हैं और भविष्य के लिए तैयारी करते हैं। गरुड़ ऊंचाई पर अकेला उड़ता है। नेतृत्व में भी कई बार अकेले चलने का साहस चाहिए। कठिन निर्णय लेना, लोकप्रियता को त्याग कर सही मार्ग चुनना। गरुड़ झुंड का हिस्सा नहीं बनता, वो हवा के प्रतिरोध को चुनता है ताकि और ऊंचा उड़ सके। जहां अन्य पक्षी तूफान से भागते हैं, गरुड़ उन्हीं हवाओं का उपयोग ऊपर उठने के लिए करता है। वो तूफान से लड़ता नहीं, बल्कि उसे पार करता है और उससे भी ऊपर उठ जाता है। एक टीम लीडर को भी चुनौतियों को खतरे के रूप में नहीं, बल्कि ऊपर उठने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। गरुड़ अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करता, वो सब तरफ शांतिपूर्वक उड़ता है जब तक सही क्षण ना आ जाए, फिर वो अचूक वेग से वार करता है। टीम लीडरशिप में भी यही संतुलन, धैर्य और निर्णायकता का होना चाहिए। गरुड़ हमें सिखाता है कि उत्कृष्ट टीम लीडर का सारा दृष्टिकोण सटीकता और भीतरी शक्ति में छिपा है। ये जानना आवश्यक है कि ऊर्जा को कहाँ केंद्रित करना है। जब चारों ओर शोर और भ्रम हो, तब गरुड़ की तरह मौन और निर्भीकता से टीम लीडर ही सही मार्ग दिखा सकता है। आज हमने समझा कि किस प्रकार हम गरुड़ पक्षी से प्रेरणा लेकर अपने कार्य कौशल और नेतृत्व क्षमता को विकसित कर सकते हैं।
0: जीवन सौरभ।

आइए अब आपको बताए थे आज की सभा में प्रसारित की जाने वाले अन्य कार्यक्रमों के बारे में। अब से ठीक बात सुनेगा कार्यक्रम अक्षय निधि मंडली एक सूक्त 164 और उसके बाद आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का।

कुछ पर आधारित होगा आज का ये कार्यक्रम। कार्यक्रम में स्वर होगा सुनीता सिंह का। आमने सामने ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 8:30 पर। एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस की बचत और इसका संरक्षण कैसे करें, विषय विशेषज्ञ आशा पाठक से मोहम्मद दानिश खान की खास बातचीत आपको इस कार्यक्रम में सुनवाएंगे। सुबह 9:00 सुनिए कार्यक्रम वागर्थ। रश्मि शर्मा की कहानी पाठ इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे, रिकॉर्डिंग की है फराज फैयाज ने। और हमारे विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 9:30 पर आज सुनिए मुशायरा, जिसकी रिकॉर्डिंग की है फराज फैयाज ने। सुबह 10:00 का समय होगा परिक्रमा का। सुबह 10:30 पर सुनिए आजाद हिंद, सीताराम राजू की जयंती पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम आजाद हिंद। कला कल्लोलिनी यह कार्यक्रम सुनिए सुबह 11:00। उस्ताद बिस्मिल्ला खान पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम में स्वर होंगे गौसिया खान और विजयकांत नायक के। युग प्रवर्तक विवेकानंद यह कार्यक्रम सुनिए सुबह 11:30 पर। तो अब से लेकर दोपहर 12:00 तक बने रहिए मेरे यानी रत्नेश के साथ और आनंद लीजिए विभिन्न कार्यक्रमों का। और आइए अब सुनते हैं अक्षय निधि एक छोटे से विराम के बाद।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 164 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं विश्वेदेवा, वाक आप, धूम, सोम, अग्नि, सूर्य, वायु, सरस्वती, साध्य, पर्जन्य, अग्नि और सरस्वान। छंद है त्रिष्टुप, जगति, प्रस्तार पंक्ति और अनुष्टुप।
1: गायत्रेण प्रति मीमीते अर्कमर्केण साम त्रैष्टुभेन वाकम वाकेन वाकम द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्तवाणी ही। परमात्मा ने गायत्री छंद से प्राण की रचना की, ऋचाओं के समूह से सामवेद को बनाया, त्रिष्टुप छंद से यजुर्वाक्यों की रचना की तथा दो पदों एवं चार पदों वाले अक्षरों से सातों छंदमय वाणियों को प्रादुर्भूत प्रकट किया। जगता सिंधुम दिव्यस्त भायद्र थंतरे सूर्यम पर्यपश्यत गायत्रस्य समिधस्ति स्र आहुस्ततो महना प्र रिरिचे महित्वा। गतिमान सूर्यदेव द्वारा प्रजापति ने द्युलोक में जलों को स्थापित किया। वृष्टि के माध्यम से जल, सूर्यदेव और पृथ्वी संयुक्त होते हैं। तब सूर्य और द्युलोक में सन्निहित प्राण जल वृष्टि के द्वारा इस पृथ्वी पर प्रकट होता है। गायत्री के तीन पाद अग्नि, विद्युत और सूर्य, पृथ्वी, द्यु और अंतरिक्ष हैं। उस प्रजापति की तेजस्विता से ही ये तीनों पाद बलशाली होते हैं, ऐसा कहा गया है। उपहवये सुदुघाम धेनुमेताम सुहस्तो गोधु गुत गोहदेनाम श्रेष्ठम सवम सविता साविषण्णो भीद्धो घर्मस्तुदु शुप्रवोचम। दुग्ध सुख प्रदान करने वाली गौ को हम आवाहन करते हैं। इस गौ के दुग्ध का दोहन कुशल साधक ही कर पाते हैं। सविता देव हमें दुग्ध प्रदान करें। तपस्वी एवं तेजस्वी ही इसको ग्रहण कर सकता है, ऐसा कथन है। हिं कृणवती वसुपत्नी वसूनाम वत्समिच्छन्ति मनसाभ्यागात दुहामश्विभ्याम पयो अघन्येयम् सा वर्धताम महते सौभगाय। कभी भी वध न करने योग्य गौ मनुष्यों के लिए अन्न, दुग्ध, घृत आदि ऐश्वर्य प्रदान करने की कामना से अपने बछड़े को मन से प्यार करती हुई, रंभाती हुई बछड़े के पास आ जाती है। वह गौ मानव समुदाय के महान सौभाग्य को बढ़ाती हुई प्रचुर मात्रा में दुग्ध प्रदान करती है। गौरमी मेदनु वत्सम मिशंतम मूर्धानम हिं कृणोन मातवा उ सृक्वाणम घर्ममभि वावशाना मिमाति मायुम पतये पयोभिः। गौ स्नेह से आंखें मीचे हुए बछड़े के समीप जाकर रंभाती है। बछड़े के सिर को चाटने के लिए वात्सल्यपूर्ण शब्द करती है। उसके मुंह के पास अपने दूध से भरे थन को ले जाती हुई शब्द करती है। वह दूध पिलाते हुए शब्द करते हुए बछड़े को संतुष्ट भी करती है। अयम स शिंगते येन गौरभीव्रता मिमाति मायुम ध्वसनावधिश्रिता सा चित्तिभिर्नि हिचकार मर्त्यम विद्युद्भवन्ति प्रति वव्रिमौहत। वत्स गौ के चारों ओर बिना शब्द के अभिव्यक्ति करता है। गौ रंभाती हुई अपनी भाव भरी चेष्टाओं से मनुष्यों को लज्जित करती है। उज्ज्वल दूध उत्पन्न कर अपने भावों को प्रकाशित करती है। अनच्छये तुरगातु जीवमेजद ध्रुवम मध्य आ पस्त्यानम जीवो मृतस्य चरति स्वधा भिरमर्त्यो मर्त्येना सयोनिहि। श्वसन प्रक्रिया द्वारा अस्तित्व में रहने वाला जीव जब शरीर से चला जाता है तब यह शरीर घर में निश्चल पड़ा रहता है। मरण धर्मा शरीरों के साथ रहने वाली आत्मा अविनाशी है, अतएव अविनाशी आत्मा अपनी धारण करने की शक्तियों से संपन्न होकर सर्वत्र निर्बाध विचरण करती है।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 164 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई एक ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सब के मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं।

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही हैं।

मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

0: भोजपुरी अंचल के मन की मिट्टी को नम करने वाले ऐसे अनगिनत गीत भारतीय संस्कृति की धरोहर हैं। आज भी इसे गाते या सुनते हुए यहाँ के लोगों की आंखें भर आती हैं। लोक नाट्य की परंपरा से उभरे ये गीत यहाँ के लोगों की संवेदनाओं से बहुत गहरे तक जुड़े हुए हैं। भोजपुरी के अमर लोक नाट्य कलाकार भिखारी ठाकुर की ये थाती है, जो एक साथ एक कवि, गीतकार, नाटककार, लोक गायक और संगीतकार, नाट्य निर्देशक और अभिनेता थे। चूंकि उनकी मातृभाषा भोजपुरी थी, इसलिए अपने काव्य और नाट्य के लिए उन्होंने भोजपुरी को ही परंपरा से ग्रहण किया। बिहार में नाच विधा के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं भिखारी ठाकुर, 20वीं शताब्दी के महान लोक नाट्य कलाकार, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भिखारी ठाकुर ने सन 1917 में अपनी नाच मंडली की स्थापना की और विदेशिया, गबर घिचोर, बेटी बेचवा, भाई विरोध, गंगा स्नान जैसे अनेक नाटकों, सामाजिक धार्मिक प्रसंग गाथाओं और गीतों की रचना की। अपने नाटकों और गीत नृत्यों के माध्यम से उन्होंने भोजपुरी समाज की तत्कालीन विसंगतियों और कुरीतियों को नाच के मंच पर बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया।
1: अरे डगोरिया जो अपना बीत बाते अठकोरिया हो धो धोरिया धोई के कान्हा पोरो चौधरिया हो बबोरिया झारी के ना।
0: उनके नाच में किया जाने वाला उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है विदेशिया। उनकी लोकप्रियता का ये आलम था कि उनकी नाच मंडली असम, बंगाल और नेपाल के अनेक शहरों में जाकर टिकट पर नाच दिखाती थी, ठीक वैसे ही जैसे फिल्में दिखाई जाती थीं। विदेशिया की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि इस पर फिल्म भी बनी। लेकिन जो बात भिखारी ठाकुर की प्रस्तुति में थी, वो बात फिल्म में नहीं बन पाई। भिखारी ठाकुर के जीवन को देखें तो लगता है कि बेशक कलाएं सीखी सिखाई जाती रही हैं, तराशी जाती रही हैं, रियाज से परिष्कृत होती रही हैं, लेकिन कुछ कलाकारों को ईश्वर स्वयं गढ़ रचकर धरती पर भेजता है और वो अपने हिस्से की सर्जना करके चले जाते हैं। भिखारी ठाकुर एक ऐसे ही महान लोक कलाकार थे। भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को बिहार के सारण जिले के कुतुबपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम दल सिंगार ठाकुर और माताजी का नाम शिवकली देवी था। ये परिवार गांव में पेशे के रूप में हजामत बनाना, चिट्ठी नेवतना, शादी ब्याह, जन्म श्राद्ध और अन्य अनुष्ठानों और संस्कारों के काम किया करता था। भिखारी ठाकुर ने 9 वर्ष की उम्र में स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता था। 1 साल पढ़ाई के बाद भी उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं हुआ। अब वो घर की गाय चराने का काम करने लगे। माटी से जुड़े लोकगीत उन्हें पुकारते और वो गुनगुनाते हुए उनके पीछे चल पड़ते।

एक साल पढ़ाई के बाद भी भिखारी ठाकुर को जब अक्षर ज्ञान नहीं हुआ तब उन्होंने अपने पारिवारिक पेशे को ही अपनाया और गांव में काम करने लगे। काम के बीच ही उन्हें दोबारा पढ़ने की इच्छा हुई और गांव के ही एक मित्र ने उन्हें पढ़ाया। इसी दौरान उनकी शादी भी हुई। अपने विषय में भिखारी ठाकुर ने स्वयं लिखा है, अल्पकाल में लिखे लगली तेकरा बाद खड़गपुर भगली, ललसा रहे जिबहरा जाई छुरा चलाकर दाम कमाई, गईली मेदनीपुर के जिला उहिजे कुछ देखली रमलीला, घर पे आके लगली रहे गीत कवित कतहूं केहु कहे, अर्थ पूछी पूछी के सीखी दोहा छंद निज अक्षर लिखी। इस तरह शादी के बाद रोजी रोटी की तलाश में वो खड़गपुर और मेदिनीपुर गए। यहाँ उन्होंने रामलीला देखी। बंगाल से जब वो वापस लौटे तो गीत कवित सुनने लगे, लोगों से उसका अर्थ पूछकर उसे समझने लगे और धीरे धीरे अपना गीत कवित दोहा छंद लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा कर रामलीला का मंचन भी किया। वो स्वयं लिखते हैं, निजपुर में करके रामलीला नाच के तब बनहली सिलसिला, 30 बरिस के उम्र भइल बेधलस खूब कलिकाल के मईल, नाच मंडली के धरि साथ लेक्चर दिही जय कहीं रघुनाथ, बरजत रहलन बाप महतारी नाच में तू मत रह भिखारी, चुप्पे भाग के नाच में जाई बात बना के दाम कमाई। इस तरह उनके इस जीवनी गीत से मालूम होता है कि 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी नाच मंडली बना ली थी। उनके माता पिता उन्हें नाच में जाने से मना करते थे, लेकिन वो छुपकर नाच में जाते और वहां कलाकारी दिखाकर पैसे कमाते थे। इससे ये भी मालूम होता है कि भिखारी ठाकुर नाच विधा के कलाकार थे और उनसे पूर्व भी नाच विधा का प्रचलन था और 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी नाच मंडली बना ली थी। यानी सन 1917 में उनकी रंगमंचीय यात्रा आरंभ होती है। भिखारी ठाकुर ने राम सुहाग सिंह को एक साक्षात्कार के दौरान बताया था कि मैं कुछ कुछ गाना बजाना जानता था। मेरे एक साथी राम सेवक ठाकुर ने मेरे गाने की तारीफ की और कवित्त छंद आदि में मात्रा की गिनती के विषय में जानकारी दी। इसके साथ ही बाबू हरिनंदन सिंह ने मुझे सबसे पहले राम गीत का पाठ पढ़ाया। इस तरह हम पाते हैं कि भिखारी ठाकुर का आरंभिक जीवन एक सामान्य ग्रामीण युवक की तरह ही बीता। यानी एक युवक जो अपने पारिवारिक पेशे को अपनाता है, ब्याह करता है, कमाई के लिए बाहर जाता है, अपने आसपास रामलीला और नाच देखता है, इन कलाओं से इतना प्रभावित होता है कि धीरे धीरे लिखना और गाना शुरू कर देता है। जो लोग आसपास हैं, उन्हीं से कुछ सीखता सिखाता है और फिर अपनी नैसर्गिक प्रतिभा से एक महान कलाकार बन जाता है। एक सामान्य ग्रामीण युवक की तरह जीते हुए भी भिखारी ठाकुर के भीतर कुछ खास बातें थीं, और वो बातें थीं उनकी संवेदनशीलता, मानवीय करुणा से भरा हुआ उनका हृदय और सामाजिक सरोकार। समाज की कुरीतियों पर उनकी पैनी नजर थी। अपने आसपास जो कुछ भी वो घटित होते देखते या सुनते थे उससे उनकी गहरी संलग्नता थी और अपने समाज में प्रचलित गीत नृत्य और नाट्य विधाओं में वो उसे ढालकर कहने लगते थे। कहा जा सकता है कि भारत की दुर्दशा पर जैसा चीतकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की कलम से निकला था, अपने आसपास की सामाजिक विसंगतियों को देखकर भिखारी ठाकुर की आत्मा भी कुछ वैसा ही विलाप कर उठती थी।

भिखारी ठाकुर का युग भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का युग था। ये वो समय था जब समाज सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन का प्रचार प्रसार पूरे देश में चल रहा था। गांव में उथल पुथल थी। भारत की सामंती संस्कृति में पहली बार पूंजीवादी संस्कृति हस्तक्षेप कर रही थी। वर्ण व्यवस्था रखने की कोशिशें जारी थीं। गृह उद्योग नष्ट हो रहे थे। लकदक करती विदेशी वस्तुएं गांव के हाट में प्रवेश करने लगी थीं और ग्रामीण नौजवान शहर की ओर रुख कर रहे थे। ये पलायन वृत्ति उस समय की बड़ी समस्या थी। इसी को केंद्र में रखकर भिखारी ठाकुर ने विदेशिया नाटक की रचना की, जो उनका सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक साबित हुआ। इस नाटक में संवाद और गीत संगीत ही इसे प्रभावी बनाते हैं। नायिका सुंदरी के वियोग में डूबे स्वर जैसे देखने वालों को भी अपने साथ डुबो लेते हैं, जब वो कहती है, करी के गवनवा भवनवा में छोड़कर अपने परैलन पुरबवा बलमुआ, अखियां से दिन भर गिरे लोर ढर ढर, बटिया जोहत दिन बीतेला बलमुआ। भाई विरोध नाटक में उन्होंने भाई भाई के झगड़े को मुख्य रूप से दिखाया है, जिसकी जड़ में एक महिला है। समाज में विधवाओं की स्थिति को दर्शाते हुए उन्होंने विधवा विलाप नाटक की रचना की। इसी तरह पिया निसैल में उन्होंने समाज में व्याप्त नशाखोरी की समस्या की चर्चा की है। नाटक गबर घिचोर विस्थापन की समस्या के साथ ही स्त्री के अपने बेटे पर अधिकार की चर्चा करता है, तो वहीं नाटक गंगा स्नान में बुजुर्गों की उपेक्षा को दिखाया गया है। बेटी बेचवा उनका एक बहुत मार्मिक नाटक है, जिसमें एक निर्धन पिता मजबूरी में एक बूढ़े व्यक्ति से अपनी छोटी सी बेटी की शादी करके पैसे ले लेता है। इस बेमेल विवाह से लड़की का दर्द छलक पड़ता है और वो कहती है, रुपिया गिनाई लेहला पगहा धराई देहला, चेरिया से छेरिया बनवला हो बाबूजी, के ऐसन जादू कैल पागल तोहार मति भइल, नेटी काटी बेटी भसियवला हो बाबूजी। बेटी बेचवा गीत आज भी भोजपुरी अंचल में आंसुओं की धार के साथ गाया और सुना जाता है। भिखारी ठाकुर ने अपने नाटकों में सामाजिक विसंगतियों से जुड़े पक्षों का एक ऐसा समा बांधा कि आज अभिव्यक्ति की उनकी एक अपनी विशिष्ट शैली है। उन्होंने नाटकों के अलावा भगवान शंकर, भगवान श्रीराम, श्री कृष्ण की लीलाओं पर भक्तिपद और गाथा गायन भी लिखा। इसके साथ ही उन्होंने अनेक देवी देवताओं की आरतियां भी लिखीं। सन 1938 से 1962 के बीच उनकी 3 दर्जन के लगभग पुस्तकें छपीं। अपने समय में वो नाच विधा के स्टार कलाकार बन गए थे। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर और अनगढ़ हीरा कहा था। जगदीश चंद्र माथुर ने उन्हें भरत मुनि की परंपरा का प्रथम लोक नाट्य कलाकार कहा, तो वहीं समालोचक महेश्वराचार्य ने उन्हें जन कवि कहकर संबोधित किया। 10 जुलाई सन 1971 को उन्होंने अंतिम सांस ली और अपने पीछे लोक नाट्य कला की अथाह विरासत छोड़ गए। उनकी सर्जना से प्रस्फुटित होती माटी की सूंधी महक आज भी जन मन को डुबो लेती है। ऐसे विलक्षण कलाकार को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: जोसेफ एमिन, लंदन की सड़कों से आजादी के सपने तक का सफर। अगस्त 1751 में जोसेफ एमिन नाम का एक व्यक्ति लंदन के वापिंग बंदरगाह पर उतरा, जिसके पास संपत्ति के नाम पर केवल 4 शर्ट और 4 मोटे अंत वस्त्र थे। वे दोहरी मार झेला हुआ एक शरणार्थी था, जो पहले फारसी अत्याचारियों से बचकर कलकत्ता भागा और फिर कलकत्ता से लंदन पहुंचा। एमिन एक ऐसे सपने के साथ आया था जो असंभव लगता था। वे अपने प्रिय आर्मेनिया को आजाद कराने के लिए अंग्रेजी लोकतांत्रिक आदर्शों का उपयोग करना चाहता था। जीवित रहने के लिए इस भावी विद्वान ने ड्रूरी लेन में एक ईंट ढोने वाले मजदूर, एक कुली और यहां तक कि एक किराने की दुकान पर अकुशल सहायक के रूप में काम किया। वह लंदन की सड़कों पर बेसहारा था और उसने घर लौटने के लिए अपने पिता के पैसे लेने से इनकार कर दिया था। फिर एक रविवार की दोपहर सेंट जेम्स पार्क में उसकी किस्मत बदल गई। वहां उसकी मुलाकात एडमंड बर्क नामक एक युवा आयरिश वकील से हुई। बर्क ने उसके भीतर एक तड़प को पहचाना और उसे अपने संरक्षण में ले लिया, जहां उन्होंने एमिन को राजनीतिक दर्शन और अंग्रेजी कुलीन वर्ग से परिचित कराया। एमिन का परिवर्तन बिजली की गति से हुआ। ड्यूक ऑफ नॉर्थम्बरलैंड और कम्बरलैंड के समर्थन से उन्होंने वूलविच की रॉयल मिलिट्री एकेडमी में दाखिला लिया और ज्ञानोदय यानी इनलाइटमेंट के सैनिक बनने का प्रशिक्षण लिया। अंततः वे अंग्रेजी सेना में शामिल हुए, फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़े और जॉर्जिया में एक राजनयिक बने, जहां उन्होंने अपने साथी आर्मेनियाई लोगों को स्वतंत्र करने के साहसी प्रस्ताव पेश किए। जोसेफ एमिन दुनिया के 2 छोरों के बीच एक सेतु थे। 1792 की उनकी आत्मकथा में दर्ज उनका जीवन ये सिद्ध करता है कि लंदन में रहने वाले शुरुआती भारतीय केवल नौकर नहीं थे, बल्कि वे दूरदर्शी थे, जिन्होंने शहर के क्रांतिकारी विचारों में अपनी मातृभूमि के नक्शे को फिर से लिखने के औजार देखे थे।

0: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं दानिश। कार्यक्रम आमने सामने में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हर घर से जुड़ा है, एलपीजी गैस का सही इस्तेमाल और उसका संरक्षण। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में तरल पेट्रोलियम गैस कहते हैं। यह हमारे घरों में सबसे जरूरी चीजों में से एक है। इसका मुख्य उपयोग खाना बनाने में होता है। ये गैस कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल को साफ करने की प्रक्रिया से निकलता है। भारी दबाव डालकर इसे तरल रूप में बदला जाता है ताकि सिलेंडरों में भरा जा सके और आसानी से कहीं भी ले जाया जा सके। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं विषय विशेषज्ञ आशा पाठक जी। नमस्कार मैम।
2: नमस्ते, आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: मैम, सबसे पहले हम इस विषय पर आपसे ये जानना चाहते हैं और हमारे श्रोता भी, कि एलपीजी गैस का सही इस्तेमाल और उसका संरक्षण किस तरह से किया जाए।
2: बहुत ही आवश्यक एक प्रश्न है, क्योंकि एलपीजी हर घर में भोजन तो बना ही रहा है और साथ में लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रदान कर रहा है। कहीं अगर रात में कोई मेहमान आ जाए और चूल्हा जलाना पड़ता तो आप समझ सकते हैं कि उस महिला का मानसिक स्थिति जो है वो क्या होती है, उस समय लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो एक प्रकार से एलपीजी जो है परिवार में खुशियां लाता है और ये सबसे ज्यादा बोलना सुविधाजनक ईंधन है और साथ में सुरक्षित ईंधन है। तो एलपीजी का उपयोग जो है वो घर घर में तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ ही आज जो है एलपीजी से चलने वाली गाड़ियां भी हैं और एलपीजी इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होता है। तो एलपीजी एक प्रकार से इसीलिए ये इस्तेमाल होता है इतना ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ही सुविधाजनक ईंधन है। इसको एक तो कन्वीनियंट है कि इसको हम स्टोर कर सकते हैं या तो फिर हम उसको पाइपलाइंस के जरिए हम भी ले सकते हैं। ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईंधन है।
1: तो क्या एलपीजी एक सीमित संसाधन है और इसे बचाना क्यों जरूरी है?
2: जी हाँ, देखिए क्या होता है, क्योंकि एलपीजी आपने बताया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, पेट्रोलियम मींस वही जो पेट्रोलियम से निकला क्रूड ऑयल जिसको हम कच्चा तेल बोलते हैं, तो ये कच्चे तेल का ही एक मतलब उसमें से फ्रैक्शन है। दो तरीके से वैसे तो बनाया जाता है ये, थोड़ा इसीलिए इसका उत्पादन पेट्रोल के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसको हम जो कई बार जो कुएं होते हैं तेल के, उसके ऊपरी सतह पर एक गैस हमको मिलती है, उसे आप बाय प्रोडक्ट बोल सकते हैं पेट्रोलियम कच्चे तेल का, उसे हम प्राकृतिक गैस बोलते हैं। या तो फिर कई कुएं ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ गैस होती है, प्राकृतिक गैस होती है, तो उससे भी इसको बनाया जाता है। और साथ में क्रूड ऑयल के जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसको हम कहते हैं, तो उसमें सबसे ऊपरी सतह के ऊपर जो है हमें एक गैस मिलती है, तो यही गैस जो है उसको फिर हम लिक्विफाइड रूप में लाते हैं, मतलब तरल बनाते हैं, उसको इतना प्रेशर देते हैं कि वो, इसका एक गुण है ये कि अगर इसको प्रेशराइज किया जाएगा तो ये एक तरल रूप में बन जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा गुण है इसका, उसके कारण ही हम इसे सिलेंडर में भर पाते हैं, नहीं तो 200 ग्राम गैस भी पूरे सिलेंडर को भर लेती। तो हम इसमें 14.2 किलोग्राम गैस भर पाते हैं। मतलब ये मैं किसके बारे में बता रही हूँ, जो घरेलू हम लाल वाला जो सिलेंडर होता है, फिर उसके बाद कमर्शियल सिलेंडर है या अलग अलग, फिर वो उनके मतलब वॉल्यूम्स होते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो एलपीजी जो है इसकी अपने कोई गंध या कोई मतलब कलरलेस है, ये कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, तो अगर ये लीक होगा तो कैसे पता चलेगा आपको। तो इसीलिए इसके अंदर एक मतलब इसे तरल किया जाता है और इसके अंदर एक रसायन मिलाया जाता है जिसे मरकैप्टन भी बोलते हैं। ये इसी की गंध होती है जो आपको जब एलपीजी लीक होती है तो आपको समझ में आता है, जो कि एक संकेत होता है कि आप इसको अटेंड करिए। तो हाँ, गंध जो है वो ये हमें बताती है। तो ये इस तरीके से एलपीजी जो है इसका संरक्षण हमें इसीलिए जरूरी है क्योंकि पेट्रोलियम से बना है, तो पेट्रोलियम तो एक प्राकृतिक ईंधन, प्राकृतिक रिसोर्स है और इसको बनने में लगभग 250-300 करोड़ साल लग जाते हैं। तो इतना लंबा समय इसको बनने में लग रहा है, फिर आप खर्च करने में तो कुछ सेकंड्स में खर्च कर देते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे एलपीजी हो, हमने तो बहुत इस्तेमाल कर लिया। पिछले 50 साल से ही समझ लीजिए हम इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन आगे के बच्चों का क्या होगा, आगे के जनरेशन का क्या होगा, जो आगे हमारी बहुएं आएंगी उनका क्या होगा? खाना तो सबको हमेशा रोज ही चाहिए, दोनों टाइम चाहिए, तो इसीलिए इसको संरक्षित करके न केवल हम अपना पैसा बचा रहे हैं बल्कि साथ ही जो भविष्य में जो हमारी जनरेशन आ रही है उनके लिए हम कुछ
1: उनकी भी जरूरतें पूरी हो,
2: तो इसीलिए हमें इसका संरक्षण करना जरूरी है, क्योंकि अब ये बहुत कम बचा हुआ है पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी में अंदर से निकाला जाता है, किसी फैक्ट्री में तो आप बना नहीं सकते, तो ये एक कारण है कि इसका संरक्षण हमें अवश्य करना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है।
1: घर में एलपीजी की खपत कम करने के आसान तरीके क्या है?
2: बहुत ही आसान से तरीके हैं
1: जी।
2: और ये कोई तरीके ऐसे नहीं है कि एलपीजी में ही इस्तेमाल, एलपीजी में कुछ विशेष अलग भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये वही सब हैं जो कि शायद मेरी दादी भी जब चूल्हा जलाती थी गाँव में तो वो इस्तेमाल करती थी, कि वो जो है लकड़ी कम इस्तेमाल हो या सिगड़ी में कोयला कम इस्तेमाल हो, कहीं ना कहीं वही उसका एक थोड़ा दूसरा रूप एलपीजी में आता है। तो ऐसा कुछ नया नहीं है या कुछ टेक्निकल नहीं है इसके अंदर कि कोई नहीं कर सकता इसको। तो पहला तो क्योंकि हम सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सिलेंडर के नीचे अगर आप एक लकड़ी का पटा रख दें है ना, लोग आजकल वो एक मतलब स्टैंड टाइप रखते हैं, तो हम ये कहेंगे कि उसकी जगह अगर आप लकड़ी का पटा रख दें, लकड़ी क्या होती है, ये एक कुचालक है ऊष्मा की, तो आपके जो फर्श होता है वो ठंडा है और खासकर ठंड के दिनों में तो और ठंडा हो जाता है, तो अगर वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है सिलेंडर के तो हमारी जो गैस जो है वो थोड़ी नीचे जम जाती है, तो हम ये सोचते हैं कि गैस खत्म हो गई है, लेकिन हो सकता है कि एक दिन की कुछ समय कुछ घंटे तक आप उसको और इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वेस्ट चला जाएगा आपका, तो नीचे आप लकड़ी का पटा रख लीजिए, तो ज्यादा कन्वीनियंट आपके लिए, मतलब बचत के हिसाब से हो जाएगा। हाँ, कुछ घंटों का उतना भी, अगर हम ऐसे 1000 सिलेंडर देखें, 100 सिलेंडर देखें तो थोड़ा थोड़ा भी बहुत हो जाता है। और जो दूसरे उपाय मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ इनका अगर आप उपयोग कर ले तो 23% तक आपका ईंधन बच जाएगा, मतलब 23% मतलब लगभग एक हफ्ता हो गया।
1: बिल्कुल,
2: एक हफ्ते का सिलेंडर अगर आप गैस की बचत कर रहे हैं, तो ऐसे आप सोचिए कितने घर, हमारे प्रधानमंत्री जी की भी योजना जो घर घर तक एलपीजी पहुंचाने की थी, तो एलपीजी हम पहुंचा तो रहे हैं, लेकिन अगर कमी हो जाएगी तो क्या करेंगे, 23% हम इसी तरीके से बचा सकते हैं। पहला तो आप देखेंगे कि दो आपके बर्नर होते हैं, छोटा एक बड़ा है, कई बार चार बर्नर भी होते हैं, तो आप ये देखिए कि अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप छोटे बर्नर्स का इस्तेमाल करें, छोटे बर्नर या तो फिर बड़ा बर्नर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप फिर उसको एक बार कोई भी, जैसे अगर प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने देखा स्टीम हो गई है उसके अंदर, काफ़ी स्टीम आ गई है, तो फिर आप जो है उसको धीमी आँच पे कर दें। हम लोग क्या करते हैं, मतलब ये एक बाकी सोचने वाला विषय है कि जब हम रसोई का काम करते हैं तो उसको हम सेकेंडरी मान के साथ साथ दूसरे काम भी करते हैं, तो हमारा प्रेशर कुकर वो करीब 8 बार विसल दे चुका होता है। अगर आप अटेंड करें, रसोई को अटेंड करें अपन, तो ये हमें पता चल जाएगा कि अब स्टीम बन गई है, तो आप उसको धीमा कर सकते हैं, और धीमा करके फिर थोड़ी देर में तेज कर दें, और फिर ऐसा करके आप 3 बार विसल ले लीजिए, तो आपका खाना, बल्कि 2 ही बार में आपका खाना बन जाएगा, तो जो है आपका काफी ज्यादा ईंधन बच जाएगा। पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा बर्तन का साइज क्या है, मतलब एज पर जो रिकमेंडेशन है वो ये बोला जाता है कि 25 सेंटीमीटर व्यास का जो बर्तन होता है वो परफेक्ट होता है। तो आप कैसे देखेंगे ये कि अगर जो लॉ जो है वो बर्तन के ऊपर चढ़ रही है, तले के अलावा ऊपर भी चढ़ रही है, तो वो बर्बादी है,
1: छोटे बर्तन
2: तो वो बर्बादी है, तो उसको या तो धीमा कर दीजिए आप, और छोटे चौड़े तले के बर्तन इस्तेमाल करेंगे तो नीचे ही सिर्फ उसकी लॉ लगेगी,
1: तली को जो है कवर,
2: तली को कवर करेगा,
1: लॉ जो है कवर करेगा
2: जी। हाँ, तो ये बर्तनों का है, बर्तन पे ही अगर हम बात करें तो आजकल कॉपर प्लेटेड बर्तन आते हैं जो नीचे तली पे रहता है, तो आप पता है कॉपर जो है बहुत अच्छा कंडक्टर है, सुचालक है, हाँ, हीट का मतलब, तो वो आप इस्तेमाल करें। उसके अलावा बर्तनों पे ही हम आए तो लिड का इस्तेमाल करें, उस पर ढकना है हमको, आजकल तो बर्तन बहुत अच्छे आ गए हैं, साथ में आपके ढक्कन आते हैं, तो उसी तरह के बर्तन अगर आप इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें, लेकिन एक घर में शायद 3-3, 4-4 प्रेशर कुकर हैं, वो क्यों है, एक बार दाल, एक बार चावल, एक में एक्स्ट्रा भी रखा रहता है कुछ है तो मांझना ना पड़े और तीसरे में कर लिया हमने, वो आपकी बात सही है लेकिन ये तरीका गलत है। क्योंकि प्रेशर कुकर जो बने थे उसमें सेपरेटर्स भी मिलते थे हमको, है ना। आपने देखो अगर डिब्बे आपकी मम्मी के समय के अगर आपने देखे हो तो डिब्बे थे उसके अंदर, तो एक में दाल एक में चावल ऐसे करके सब्जी बघाड़ के तीसरे में मम्मी डाल देती थी, तो एक साथ में सारा खाना हमारा बन जाता था। तो एक ही बार का उसमें तो तीन चीजें बन गई ना आपकी। तो जहां तक हो सके आप सेपरेटर्स या वो डिब्बों का इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो आप जाके आप ले सकते हैं तो आप उनका इस्तेमाल करें। प्रेशर कुकर अच्छे वाले इस्तेमाल करें आप, महंगे नहीं बोल रही हूँ मैं, ISI मार्क के अच्छे प्रेशर कुकर होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें, तो वो जो है आपके गैस की बचत के भी गारंटी होते हैं। लोकल नया करें वो थोड़ा आपके लिए दुर्घटना का भी

0: तरह से बनाया गया है उसका उसका बर्नर का डिजाइन या सब कुछ इस तरह से बनाया गया है कि वो बचत करेगा आपकी। बर्नर किस तरह से बचाता है, एक तो बर्नर जो लेके आए हैं आप तो उसमें तो वो तो लगा ही हुआ है, लेकिन अब आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। देखिए गैस मैंने क्यों बोला था बड़ा कन्वीनियंट ईंधन है ये, क्योंकि ये जलता है तो ब्लू कलर में फ्लेम आती है, तो ब्लू कलर आप भी जानते हैं ये दर्शाता है कि वो ईंधन पूरी तरह जल गया। जब पूरी तरह जल गया तो पर्यावरण के लिए तो कुछ घातक
1: नुकसानदायक
0: कुछ
1: नहीं
0: बचा
1: है।
0: ही नहीं।
1: हाँ
0: लौ जो है वो ऑरेंज आ रही है मान लेते हैं, इसका मतलब वो संकेत दे रही है कि ये बर्नर गंदा है,
1: खराब हो गया बर्नर।
0: दाल गिर जाती है कई बार,
1: हाँ,
0: दूध गिर जाता है
1: क्लीन
0: तो
1: करने
0: उसमें
1: की
0: चिपक
1: जरूरत।
0: जाता है। तो हम जो है इस चीज का ध्यान रखें कि अगर रोज नहीं तो कम से कम 3 महीने में एक बार आप जो है उसकी सफाई करें। और सफाई में ये भी ध्यान रखें, बर्नर की लाइफ इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि कहीं आप गरम गरम बर्नर में पानी तो नहीं डाल रहे हैं, आप समझ सकते हैं ठंडा
1: बिल्कुल
0: गरम तो वो टूटने का भी डर रहता है,
1: टूटने का।
0: ब्रेक हो जाता है। तो आप उसकी जगह क्या, ठंडा हो गया बर्नर उसको आप खोल लीजिए, खोलने के बाद में एक भगोने में पानी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा आप कपड़े धोने वाला सा पाउडर डालिए, उसमें थोड़ी देर भिगो दीजिए, मतलब भिगो दीजिए मतलब छोड़ दीजिए उसको, और फिर उसके बाद 15-20 आधा घंटे बाद उसको निकालिए और जो पुराने टूथब्रश होते हैं उनसे अच्छे से साफ कर लीजिए।
1: ताकि
0: आप
1: पूरी
0: देखिए
1: गंदगी साफ हो
0: आपको
1: जाए
0: समझ में
1: उसमें।
0: आ
1: हाँ
0: जाएगा
1: हाँ
0: आपका पानी कितना गंदा हो गया, और फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको सुखा के और फिर उसको लगा दीजिए तो वो पूरी तरह से ब्लू कलर की फ्लेम फिर से आने लग जाएगी। तो ये तरीका होता है, और आप ये ध्यान रखिए कि उस पे गिरे नहीं कुछ भी, तो अपने आप ही वो साफ रहेगा। लेकिन
1: बिल्कुल।
0: आप ये मत करिए कि आपने रोटी बनाई और अब चलो किचन का काम खत्म, अब सफाई कर रहे हैं तो पानी डाल दिया, फिर एक पॉलिथिन में आपने मतलब कोई पाउडर लिया साफ करने वाला और उसको घिसा आपने, तो यहाँ पर क्या होगा, वो पाउडर अंदर घुस जाएगा,
1: बर्नर के जो सुराख होते हैं,
0: हाँ
1: छेद होते
0: सुराख में
1: हैं,
0: अंदर चला जाएगा और
1: ब्लॉक
0: वो
1: कर देंगे
0: जम
1: फिर।
0: जाएगा, जम जाएगा, तो फिर आपको आगे जाके दिक्कत होगी। तो इसीलिए ये जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से आप इसकी सफाई करें। ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप जो वो आते हैं ना कि बर्नर साफ करा लो या ये, उनसे मत कराइए आप।
1: अच्छा
0: आप जो है एजेंसी में भी इसको आप कर सकते हैं कि हमारे बर्नर ठीक से काम नहीं कर रहे, तो सर्विस चार्ज लेंगे आपसे लेकिन वो
1: आप घर
0: साफ
1: पे
0: करते
1: आके
0: हैं।
1: करके जाते हैं
0: हाँ
1: जी
0: तो
1: जी
0: वो जो रास्ते पे घूम रहे हैं उन लोगों से ना करवाएं। इसके बाद में जो है आपका भोजन आप बना रहे हैं तो उसमें तो पानी का इस्तेमाल होता है, पानी उतना ही डालें जितनी ज़रूरत है ना। आप जो है सिर्फ एक वीडियो देखना है या कुछ उसके चक्कर में थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल देते कि जले नहीं, लेकिन उसको उड़ाने में आप कितना ईंधन जला देते हो, तो इसीलिए हमें उतना ही पानी डालें जितनी ज़रूरत है। और मैं ये कहूंगी कि भोजन वो मतलब एक जरिया है आपके घर के अंदर, माध्यम है जिससे कि घर में संस्कार आते हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: भोजन बच्चों के अंदर जा रहा है, पति के अंदर जा रहा है, आपके अंदर जा रहा है, वही आपके विचारों को बनाता है।
1: विचारों को
0: तो इसीलिए अगर आप उसे मतलब एक प्रकार से सेकेंडरी बला टालने वाला काम
1: बनाते
0: करेंगे कि हाँ भोजन बनाना है हमें, तो फिर आप उसके भी असर देख रहे हैं उसके।
1: प्रायोरिटी पर रखना है सबसे पहले
0: जी जी
1: उसको जो।
0: प्रायोरिटी हमारा भोजन है, आप चल किससे रहे हैं, भोजन से ही
1: बिल्कुल,
0: चल रहे हैं ना।
1: सेहत उसी से
0: मैं तो
1: बनेगी।
0: आपको एक टिप दे देती हूँ यहाँ महिलाओं को, आप मेरे कहने से, मैं काउंसलर भी हूँ एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि विचार क्या काम करते हैं। तो उस रोटी के ऊपर सिर्फ अगर प्रेम लिख लें, उंगली से प्रेम लिख लें, या बच्चे का एग्जाम है 100% लिख लें और बच्चे को सेक के खिला दें प्यार से,
1: हाँ, अरे
0: है ना, आप
1: वाह,
0: देखिए क्या असर होता है, क्योंकि वो
1: बिल्कुल
0: विचार जाता है, वो लिखा इज ओके लेकिन
1: साइकोलॉजिकली।
0: आपका विचार जा रहा है उसके अंदर। हस्बैंड से तो रोज लड़ाई होती है लेकिन प्रेम लिख के तो देखिए आप,
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल
0: सब मिल बैठ कर एक साथ खाना खाएं, क्यों
1: बिल्कुल।
0: बार बार जो है रोटी बने, है ना, बार बार तवा गर्म हो,
1: बार बार चाय गर्म करते हैं, बार
0: बिल्कुल
1: बार। हाँ,
0: बिल्कुल। हम
1: बहुत सारी
0: तो
1: चीजें हम बार
0: हाँ
1: बार करते हैं
0: अगर
1: उसमें।
0: हम एक नियम बना दें घर में कि चाय सब साथ में पियेंगे, है ना, या तो एक ही बार
1: खाना साथ
0: बनेगी
1: में
0: चाय,
1: खाएंगे।
0: जी
1: हाँ
0: जी खाना साथ में खाएंगे, अगर दिन में नहीं भी पॉसिबल हो पा रहा है तो डिनर तो साथ में कर लो,
1: बिल्कुल
0: रात का खाना तो कर लो साथ में,
1: बिल्कुल
0: तो उससे
1: बिल्कुल।
0: क्या होगा कि परिवार में जो एक लिंक्स खत्म होते जा रहे हैं, भोजन एक बहुत बड़ा जरिया होता
1: जरिया
0: है
1: होता
0: ना,
1: है
0: तो वो जो एक लिंक्स हैं वो फिर से
1: वो।
0: बनेंगे, रिकनेक्ट होंगे, आप बच्चा क्या कर रहा है उसकी शक्ल से आप पहचान जाओगे। तो आप जो है डाइनिंग टेबल वो जगह है,
1: बिल्कुल
0: भोजन
1: सही,
0: वो
1: बिल्कुल।
0: जगह है, वो चीज़ है, तो आप जो है सब मिल बैठ के खाना खाएं, बार बार गर्म नहीं करना पड़ेगा, सब मिल बैठ के खाना खाएं
1: बिल्कुल
0: तो प्यार बढ़ेगा आपके घर के अंदर और हमारा एलपीजी बचेगा।
1: एलपीजी
0: और दूसरी
1: बचेगा।
0: चीज़ भोजन बना के आप जो है ऐसे बर्तनों में रखें जिससे वो गर्म रहे, है
1: बिल्कुल
0: ना,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल।
0: हम जो है हम वहाँ पे क्या करते हैं, तुरंत निकाला और ये ठंडा है तो माइक्रोवेव में रख दिया हमने, अब यहाँ पर मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, लेकिन माइक्रोवेव इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। जो एलपीजी

0: जैसा तो आपको कोई भी ईंधन नहीं मिलेगा, क्योंकि माइक्रोवेव इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा महंगी पड़ती है आपको एलपीजी से, अगर आप तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो।
1: रेगुलेटर जो होता है और पाइप, ये कितने समय पर चेंज करना चाहिए ताकि गैस का रिसाव भी इनमें से ही होने लगता है और हमें पता नहीं चलता है कि बाज़ वक़्त।
0: इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ संरक्षण को लेके, पहले कि जो भी आप दाल चावल वगैरह बना रहे हैं उसको थोड़ा भिगो दें पहले, भिगोने के बाद आप इस्तेमाल करें। नहीं तो एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको मुलायम करने के लिए, अगर वो पहले से मुलायम होगा तो डायरेक्ट पकना चालू हो जाएगा
1: जल्दी,
0: है ना। तो आप इस चीज को कर सकते हैं आप। और जहां तक रेगुलेटर की बात है, यहाँ आपके संरक्षण की भी बात आती है यहाँ पे, कि आप जितनी बार भोजन बनाए उतनी बार आप जो नॉब है उसका, आपका सिलेंडर का, उसको भी बंद करें। तो कहीं अनावश्यक अगर कहीं लीकेज हो रहा होगा तो उसको आप बचा सकते हैं। दूसरी चीज ये जो आपने पूछा कि कब हमें बदलना चाहिए, तो रेगुलेटर तो बदलने की जरूरत होती नहीं है कभी भी। हाँ, अगर टूट जाए, कुछ हो जाए, तो फिर आप कंपनी में जाके, जो भी एजेंसी है वहीं पे जाके आप उसको बदलें। लोकल मार्केट में शायद सस्ता वाला आपको मिल सकता है, लेकिन आप वो ना लें, ये मतलब एक बहुत ही जरूरी चीज है। हो सकता है वो 300 का मिले और ये 150 का मिले, लेकिन वो कभी भी आपके घर में बहुत बड़ा संकट ला सकता है। तो इसीलिए ISI मार्क का एजेंसी से ही लीजिए आप। दूसरी चीज ये है कि जो पाइप जो है उसका, आजकल तो आप बाहर से खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपको एजेंसी ही देती है। और जो पहले आते थे सिर्फ रबर के होते थे वो, तो वो काफी डैमेज हो जाते थे, और मतलब एक प्रकार से जो जहाँ पे चूल्हे के साथ लगते थे वो वहां पे खराब होने लग जाते थे, लोग उसे काट काट के छोटा कर देते थे।
1: तो ये रबर के रहते थे,
0: रबर के रहते थे
1: वो,
0: अभी वो वायर के साथ है।
1: हाँ,
0: तो बहुत डिफिकल्ट है उसे काटना भी। लेकिन वो क्या होता है, मैं जो आपको बता रही हूँ कि हो सकता है कई लोग उसमें भी दिमाग लगा लें कि हम उसमें काट देंगे आरी से या कुछ, तो क्या होता है ये करीब 1 मीटर करीब होता है ये, है ना। तो वो एक एक्यूरेट मतलब वो लंबाई लेंथ है उसकी। नहीं तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसे लिक्विफाइड किया जाता है और ऊपर की सतह पर वो गैस होता है, लेकिन वो जो पाइप है वो अगर सही नहीं है, छोटा है अगर, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो लिक्विड रूप में बीच में जम जाएगा। और आप खाना बना रहे हैं तो कई बार रोटी बना रहे हैं, 4 बार 5 बार बंद होगा वो, तो आप सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया, तो ये कारण आपका पाइप हो सकता है। अभी तो ये बहुत ही अच्छे पाइप्स हैं, तो बहुत जल्दी बदलने की जरूरत नहीं है, करीब आप 6-7 साल भी इसको चला सकते हैं, लेकिन बस इसे काट काट के मत यूज करें।
1: कहीं से चटक गए हैं या चूहे वगैरह ने काट लिया, तो
0: चूहा काटना भी इतना आसान नहीं है इसको। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि भाई आप क्या बहुत डेंजरस चूहे हैं, तो आप फिर उसको बदलिए बिल्कुल, और लेकिन लेना एजेंसी से ही है,
1: बिल्कुल
0: आप कहीं लोकल मार्केट से इसको नहीं लेंगे। ये सुरक्षा की दृष्टि से भी है,
1: बिल्कुल,
0: और संरक्षण तो है ही, वो बीच में परेशानी भी है आपकी कि गैस बंद हो रही है।
1: बिल्कुल आशा जी, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि PNG और LPG में क्या फर्क।
0: जी दानिश जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आज जो है भोपाल में देखिए बहुत सारी जगह थिंक गैस का आपने देखा हो, पाइपलाइंस पाइप दे रहे हैं वो घरों में, मतलब डायरेक्ट सप्लाई है वो। तो PNG का मतलब है पाइपलाइन नेचुरल गैस। मैंने आपको क्या बताया था शुरू में, नेचुरल गैस के बारे में थोड़ा बताया था, तो ये क्योंकि प्राकृतिक गैस ही है तो ये LPG नहीं है, LPG का मुकाबले सुरक्षित है ये। LPG की अगर हम स्मेल आ रही है तो क्या है कि LPG जमीन पे चिपकता है, क्योंकि वो हवा से भारी गैस है, तो जमीन पे चिपक गई कोई चीज तो उसको निकालोगे कैसे आप, अनलेस अनटिल आपको ये पता हो कि झाड़ू लगाओ अब, है ना। तो कई बार पता नहीं होता, तो वो चिपकी हुई है, हम सब दरवाजे खिड़की खोल दिए, फिर भी टाइम लेगी वो। लेकिन नेचुरल गैस जो है वो हवा से हल्की गैस है, अगर ये लीक होती भी है तो ऊपर जाएगी, तो ऊपर तो उसको बहुत बड़ा माध्यम मिल गया है फैलने का, तो सुरक्षित भी है। मैं तो यही बोलूंगी कि जहां कहीं पे भी, जिस भी मोहल्ले में PNG की सप्लाई के लिए अभी आपसे कॉन्टेक्ट किया जा रहा है, तो आप जरूर लें उसको, क्योंकि आगे PNG की सप्लाई ज्यादा मात्रा में है, लेकिन हो सकता है LPG की कम हो जाए,
1: और फिर ये सिलेंडर भरवाने का या,
0: हाँ वो सब भी खत्म हो जाता है, आपके मीटर लगा रहता है, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं वैसे आप अपना,
1: ये तो सुविधाजनक हो,
0: बिल्कुल बहुत सुविधाजनक है, इसका कोई वो भी नहीं
1: भारी
0: है कि
1: भारी आप सिलेंडर उठा के अंदर रखना हो फिर बाहर ले जाना,
0: जी जी महिलाओं के लिए बहुत सारी चीजें हैं, उसको लगा ही नहीं पाते कई लोग,
1: वो अचानक रात में भी सिलेंडर खत्म हो जाता है, बिल्कुल ये सारी दिक्कतों से,
0: वो वेटिंग तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी इसके अंदर। ये दोनों में अंतर है, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ये पाइपलाइन नेचुरल गैस है।
1: बिल्कुल
0: तो ये काफी कन्वीनियंट है, उससे भी अच्छी है कहना चाहिए, तो इसको जरूर इस्तेमाल करें आप।
1: आशा जी, आजकल एलपीजी का जो सिलेंडर है वो लोग अपने कार में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, रिफिल करवाते हैं और कार चलाते हैं उससे, तो ये क्या इस्तेमाल करना सही है?
0: देखिए, एलपीजी का इस्तेमाल करना सही तब है जब आप उसे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कई हमारी आजकल जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने इस तरह का वो दे दिया है, आपके पास टैंक्स हैं कि जिनमें आप डायरेक्ट एलपीजी फिल करवा सकते हैं आप। अभी तो सीएनजी आ गया है, कंप्रेस नेचुरल गैस है वो, तो आप उसको ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, और भी अच्छा है। और अगर लेकिन आप एलपीजी, अगर आपकी गाड़ी है आप एलपीजी उसमें फिल करवा रहे हैं, तो आप जो है पेट्रोल पंप्स पे जहाँ भी अवेलेबिलिटी है इसकी वहीं से करें, खुद ट्राई ना करें। और जो आपके घर के अंदर, कई लोगों ने घर में चार, मतलब कुछ ज़्यादा लोग हैं, उनके नाम से सिलेंडर्स ले लिए हैं, फिर उनको आप वो ब्लैक वाले सिलेंडर, वो जो पाइप जो रहते हैं सिलेंडर्स, उसमें आप करते हैं, चेंज करते हैं आप, तो ये बहुत ज़्यादा जोखिम भरी चीज़ है और इसमें आप कई घर बर्बाद हो चुके हैं, जल चुके हैं, तो ये कभी ना करें। थोड़े से पैसे बच जरूर जाएंगे आपके, लेकिन जो तरीका यही है कि जो आप पेट्रोल पंप्स पे या इसके सिलेंडर जो मिलते हैं वही इस्तेमाल करें। तो आजकल तो सीएनजी का समय है, तो आप सीएनजी का इस्तेमाल करें। तो कंप्रेस नेचुरल गैस है, अगेन नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, आप समझ सकते हैं, तो आपको वो ज़्यादा सुविधाजनक है, सुरक्षित है, और दूसरी चीज़ यह है कि अवेलेबिलिटी ज़्यादा है।
1: अगर गैस लीक हो जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए?
0: पीजी अगर हो जाती है तो तुरंत जो है हमें सबसे पहले तो दरवाजे खिड़की खोलने चाहिए, क्योंकि उसे बाहर करना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज और भी मैं यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ महिलाओं के लिए, कि अगर एलपीजी जो है जहाँ आप इस्तेमाल कर रहे हो, रसोई जो है हमारा, वो थोड़ा खुला हुआ होना चाहिए। पूरा बंद कमरे के अंदर आप एलपीजी मत इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि किसी भी ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट जलेगा, और जो भी कुछ विषैली गैस बनेंगी वो आप ही के अंदर जाएंगी, क्योंकि आप वहां ज्यादा समय हैं, तो आपको चक्कर आने लग गया या आपको उल्टी जैसा होने लगा, तो इसका मतलब है वो बिना किसी कारण के अगर हो रहा है ऐसा, और जब आप खाना बना रही है तभी हो रहा है, तो हो सकता है कि ये कारण हो। तो हम, मैं ये कहूंगी तुरंत तुरंत आपको पूरे दरवाजे खिड़की खोल देने हैं, और दूसरी चीज जो सिलेंडर है उसको तुरंत निकाल लीजिए, रेगुलेटर निकाल दीजिए, उसको तुरंत बाहर करिए। उसमें सफेद कैप रहता है, सफेद कैप लगाइए और उसे बाहर करिए। कभी भी बिना सफेद कैप जो रहता है उसके बिना सिलेंडर को रखना ही नहीं है आपके घर में, अगर खाली भी सिलेंडर है तो। और अगर आपको लग रहा है कि अभी भी बहुत तेज बदबू आ रही है, तो आप जोर जोर से फर्श पे झाड़ू लगाइए, तो क्योंकि हवा से भारी गैस है जमीन पे चिपक गई है, तो झाड़ू लगाएंगे तो ये बाहर जाती है। अगर एलपीजी लीकेज हो रहा है तो ये इसका तरीका है। लेकिन अगर आग लग गई, मतलब इसका हम सुरक्षा की अगर हम बात करें, तो मैं एक दो चीज जरूर ऐड करना चाहूंगी कि जो हमारा रसोई होता है उसके अंदर देखा होगा आपने, महिलाएं जो है वो कागज जो रहता, पेपर जो रहता है, उसे काट काट के लगाती हैं शेल्फ्स में, तो ना करें वो, क्योंकि वो भी एक माध्यम बन जाएगा और ज्यादा फैलाने का। जहाँ सिलेंडर रखा उसके आसपास कोई ज्वलनशील चीज ना रखें। दूसरी चीज ये है कि आप गैस आपकी ऑन है, आप खाना बना रहे हैं, आपने कॉकरोच देखा और वहीं पर आपने उसे मारना चालू कर दिया हीट वगैरह से,
1: हाँ, उसके
0: तो
1: अंदर भी
0: वो भी पेट्रोलियम ही है,
1: फ्लेमेबल, हाँ।
0: फ्लेमेबल है वो, तो आप जो है उसमें भयंकर आग लग सकती है। एक और चीज है, कई बार महिलाएं जहाँ गैस जल रही है उसी के पास मोबाइल रख के और खाना बनाती हैं, तो ये बहुत रिस्की है।
1: वीडियोस देख रहे हैं,
0: वीडियोस देख रहे हैं, तो उसके अंदर जो एक स्टैटिक चार्ज है, बाय चांस आपने ध्यान नहीं दिया, कहीं गैस लीक हो रही है, कई बार गैस बंद हो जाती है, आपका ध्यान ही
1: ध्यान
0: नहीं
1: है,
0: हाँ, तो आप जो है इस तरह के जो रिस्क है वो ना लें, मोबाइल आप दूर रखें। दूसरी चीज, आपके मोबाइल के ऊपर उतने कीटाणु होते हैं जितने टॉयलेट सीट के ऊपर हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप बार बार उसको पकड़ रही हैं, फिर खाना भी बना रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा उसका, ये तो अनहाइजीनिक प्रैक्टिस है।
1: बिल्कुल,
0: अगर आग लग जाती है, सपोज कहीं इतने बुरा हो गया कि आग ही लग गई, दुर्घटना हो गई, तो आपको जो है तुरंत सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या आप उसे अटेंड कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अटेंड नहीं कर सकते तो बाहर निकल लो, जान ज्यादा जरूरी है, सबको घर से बाहर कर दो, क्योंकि अगर आग लग गई है और सिलेंडर फट गया, क्योंकि उसमें प्रेशर इतना बढ़ जाएगा आग के कारण कि वो फट जाता है, अगर वो फट गया तो जो गैस जो उसमें तरल रूप में है वो पूरी दीवारों पे चिपकेगी, और हर दीवार पे विद इन सेकेंड आग लग जाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी उसमें लाइन में आ गई वो आग, तो इलेक्ट्रिसिटी तो तुरंत बहुत आराम से पूरे घर के अंदर आग को फैला देगी। तो इसीलिए हमें तुरंत ये देखना है, और अगर आपको लग रहा है कि आप बच कर सकते हो, अभी ज़्यादा नहीं फैला हुआ है, तो उसके ऊपर तुरंत कोई मोटा कपड़ा गीला कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कंबल है या कोई ऐसी मोटी दरी है तो उसके ऊपर लगा के, आपने निकाल लिया रेगुलेटर, उसके ऊपर डाला आपने, और उसको जो है अच्छे से कवर कर दें, या फिर कोई भगोना है जैसे प्लास्टिक का, नहीं बोल रही हूँ, वो उसके ऊपर रख दें, ऑक्सीजन से उसकी सप्लाई जो है कट कर दें, तो आग बुझ जाएगी। सप्लाई तो वहीं से ही है ना, सिलेंडर से ही है। तो इस चीज़ का उसका तरीका भी होता है, वो हम अभी आपको रेडियो पे तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन उसके कुछ मॉक ड्रिल्स हम लोग करवाते हैं जिससे कि महिला को ये चीज़ पता चल जाती है कि इसको हमें कैसे बचत करना, सुरक्षित रखना है।
1: आशा जी, अंत में हमारे श्रोताओं के लिए आपका एक संदेश LPG संरक्षण और सुरक्षा को लेकर।
0: जी देखिए, हम लोग बहुत ज़्यादा अपने देश के लिए, लोगों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं ना, सोचते तो हैं बहुत ज़्यादा हम, तो आज ये वो मौका है हमारे पास में LPG के रूप में, कि अगर आप इसको संरक्षित करते हैं तो कि आगे आने वाली पीढ़ी आपको बहुत धन्यवाद देगी, और आपका एक रिश्ता जो है उनके साथ बहुत अच्छा होगा। तो देश, समाज और परिवार तीनों के लिए इसका संरक्षण बहुत ज़रूरी है।
1: तो दोस्तों, आज हमने जाना कैसे हम LPG की बचत कर सकते हैं और अपने घर को सुरक्षित भी बना सकते हैं। धन्यवाद आशा जी, इतने महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया, और सभी श्रोताओं का धन्यवाद जो मुझे सुन रहे हैं।
1: दोस्तों, याद रखिए, सावधानी ही सुरक्षा है और बचत ही समझदारी। श्रोताओं, ये था कार्यक्रम आमने सामने। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय संयोग सतीश बौथम, मैं था दानिश। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर। आमने सामने।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें। ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
2: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
1: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना।
4: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आज होगा कहानी पाठ रश्मि शर्मा का।
1: मैं जोर जोर से रोने लगता हूँ। रंजीता बिल्कुल पड़ोस वाले घर में रहती है। इतना अपनापन है कि कोई भी सब्जी दोनों घर में बिना बटे खाता नहीं कोई। अक्सर रंजीता ही कटोरदान लिए आवाज़ लगाती थी, चाची माँ ने उल्की सब्जी भिजवाई है आपके लिए, माँ सबको वहीं बुला रही है। ये बैना बांटने का काम माँ फिर मुझसे करवाती। साल दो साल की बड़ी थी रंजीता मुझसे, मगर माँ को बहुत पसंद थी यह लड़की।
0: तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वागर्थ में रश्मि शर्मा का कहानी पाठ।
1: भारत भवन भोपाल का धन्यवाद कि मैं आज यहाँ हूँ। मैं सबसे पहले कहानी पढ़ना चाहूँगी, उसका शीर्षक है उसका जाना। चारों तरफ खामोश बेचैनी फैली है, आसपास के लोगों के चिंतामग्न चेहरे और उदास भाव मुझे और उदास कर रहे हैं। पिछली कई रातों से सोया नहीं हूँ। मन में बस एक बात ही घुमड़ती है कि अब क्या होगा। पता नहीं इस बार उनको लेकर घर लौट पाऊंगा भी कि नहीं। बस उम्मीद है किसी चमत्कार की, हालांकि मैं इन सब चीज़ों पर कतई विश्वास नहीं करता। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में जिसे हम किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते और उनके बने रहने के लिए हर संभव उपाय करते हैं। सब परेशान हैं। पापा के चेहरे पर चिंता की लकीरों ने स्थायी डेरा डाल रखा है। छोटी बहन अनु कुछ नहीं समझती या समझना नहीं चाहती, अभी उसकी उम्र ही ऐसी है। हाँ भैया थोड़ा प्रैक्टिकल है, कम से कम बाहर से टूटता नज़र नहीं आता। यहाँ दिल्ली में सारा इंतज़ाम उसी ने किया। बेशक वो पिछले बरस आया है, मगर यहाँ के माहौल और रास्तों से खूब परिचित हो गया है और शायद महानगरों में रहने वालों की तरह उसका मन संवेदना के स्तर पर छिछला हो चला है, इसलिए मेरी तरह भावुक नहीं होता या हमारे सामने दिखता नहीं। डर से भरा हूँ बेतरह। माँ से सबसे ज़्यादा जुड़ाव मेरा ही रहा है। कई बार माँ कहती है तुम कभी बड़े नहीं बनोगे क्या प्रियम, हर बात में हर बात काम में मामा की रट लगाए रहते हो। मैं हंसकर कहता माँ माँ के लिए बच्चा कब बड़ा होता है, मुझे तुम्हारा आंचल पकड़कर घूमना अच्छा लगता है। माँ हंस पड़ती और कहती आ जाओ मेरे पास, और मैं लाड़ जताते हुए उनके गले में बाहें डाल देता। आज उनकी चौथी केमो है, बहुत सारे बाल गिर गए हैं। अब लंबे घने केश कंधों तक छोटे हो गए। कितने घने केश हुआ करते थे माँ के, उन्हें अपने बालों से मोह भी था बहुत। जब भी उनका ध्यान अपने बालों पर जाता वो रुवासी हो जाती है। मैं सोचता हूँ क्या लोगों को वही वस्तुएं ज़्यादा प्रिय होती हैं जो किस्मत उनसे छीन लेने को तैयार बैठी रहती है। माँ का कैंसर जब तीसरे स्टेज पर पहुँच गया तब हमें मालूम हुआ। ऐसा कुछ बाहर से बिल्कुल पता नहीं चला हमें न उन्हें, बस कमजोरी की शिकायत थी और बार बार बुखार होता था। कौन जानता था ऐसी गंभीर बीमारी से घिरी हुई है वो। अब तो बहुत कमज़ोर हो गई हैं, कई बार बड़ी बेबस निगाहों से देखती है मुझे तो रोने का मन हो आता है। वह घर से दूर यहाँ आना भी नहीं चाहती थी दिल्ली, उन्हें अपना मोहल्ला और शहर ही पसंद। स्मृति की गलियों से बाहर आकर मैं माँ को खाना खिलाना चाहता हूँ तो वो मना करती हैं। ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश में कई बार घुड़क देता हूँ उन्हें। दूसरे ही पल लगता है कि मेरे नहीं खाने पर माँ कितना पीछे पड़ी रहती थी, पर उन्होंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं गुड़का मुझे, बस मनाती रहती पुचकारती रहती। खा लो जरा सा, अच्छा चावल नहीं पसंद तो रोटी बना देती हूँ। ठीक है बाबा आज हलवा खा लो, कल खीर बना दूंगी ढेर सारा किशमिश डालकर। मन को काटने लगा कोई, बाहर निकल आया हूँ कैंटीन की तरफ। मैं अपनी हताशा उनके सामने प्रकट करना नहीं चाहता। सोचता हूँ मेरा चुलबुलापन बरकरार रहे, हंसता हंसाता रहूँ सबको। ओह मैं तो अपनी क्लास भी मिस कर रहा हूँ। अभी अभी मास कम्युनिकेशन में दाखिला हुआ है, ग्रेजुएशन में टॉप आने की खुशी भी नहीं शेयर कर पाया। दाखिले के बाद मुश्किल से 8-10 दिन ही क्लास कर पाया और माँ के साथ दिल्ली सफदरजंग अस्पताल आना पड़ा। सपना, हाँ सपना ही नाम है उस लड़की का। मेरे होठों पर उसकी याद ने मुस्कुराहट ला दी। पहली क्लास अटेंड करने के लिए कॉलेज पहुँचा था, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट दूसरे तल्ले पर था, खूब भीड़ भाड़ चारों तरफ। नए चेहरे जो शहर के विभिन्न कॉलेजों और आसपास के शहरों से आगे पढ़ने की इच्छा लिए आ गए थे, पत्रकारिता में सभी अनजाने थे सिवाय मेरे मोहल्ले की एक लड़की भावना की, जो स्कूल में भी मेरे साथ थी। बहुत अच्छी दोस्त है हमारी। अभी भी मैं यहाँ हूँ, मगर मुझे पता है कि क्लास नोट उससे मिल ही जाएंगे सभी। बस माँ को लेकर एक बार लौट तो जाऊँ, मुझे लगा कोई घूर रहा है। पलट कर देखा तो दो लड़कियों की पीठ दिखाई दी जो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। सीढ़ियाँ फलांगता हुआ ऊपर पहुँचा। ग्रिल के पास सारे स्टूडेंट जमा थे। एक दूसरे से परिचय का दौर चल रहा था। सब ऐसे चहक रहे थे जैसे सुबह के वक्त ढेर सारी चिड़ियाँ पेड़ पर एक साथ चहकती। मैं यह सब सोच ही रहा था कि मेरी नज़र दूर से आती हुई भावना पर पड़ी। उसके साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की चली आ रही थी। गोल चेहरा, दरमियाना कद और खिलता रंग। उसने गुलाबी रंग का पारदर्शी सूट पहना था। सब चुप होकर कभी मेरी ओर तो कभी उस लड़की की ओर ताकने लगी। वो लड़की भी पा चुकी होकर मेरा मुंह देखने लगी। हम नहायत अजनबी थे। आज से पहले ना कभी एक दूसरे को देखा और ना ही कुछ और भी जानते थे। मुझे एहसास हुआ कि बहुत गलत बात निकल गई मेरे मुंह से। अब तो तभी भावना ठिठाकर हंस पड़ी, कहा, तुम वाकई कभी नहीं सुधरोगे प्रियम। फिर अपनी सहेली को मेरा परिचय दिया कि ये मेरे बचपन का दोस्त है प्रियम, इसकी बातों का बुरा मत मानना, ऐसी उठपटांग हरकत करता रहता है। मैंने देखा सपना के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई और भावना के साथ क्लास की तरफ चली गई। मेरी जान में जान आई, लगा आज अगर भावना न होती तो पिटाई निश्चित थी। पता नहीं क्यों यह लड़की सपना पहले दिन से ही मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। एक बात गौर की मैंने कि सपना पर हर रंग अच्छा लगता है। आज वो पीले रंग की कुर्ती और ब्लू जींस में थी। कपड़े की पीली आभा से उसका चेहरा और ज़्यादा खिला लग रहा था। वाकई बेहद खूबसूरत और समझदार है वो। सुंदर तो मेरी माँ भी बहुत लगती हैं। अब इन दिनों जब से उनकी तबीयत खराब हुई है ज़रूर चेहरा बहुत उतर आया है। वैसे माँ बहुत चटक रंग पसंद नहीं करती हैं, अक्सर वो ग्रे कलर या नेवी ब्लू कलर की साड़ी खरीद ले आती। पापा से इस बात पर मीठी नोकझोंक हो जाती। चटक रंग पहनने के इसरार पर वो कहती, नहीं नेवी ली दुल्हन नहीं हूँ मैं जो रोज़ केवल लाल पीला पहन कर घूमूँ, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। मगर उन पर फपते थे सारे रंग। पूजा पाठ के अवसर पर अक्सर गाढ़ा रंग पहनती थी। मुझे याद है मम्मी पापा की शादी की सालगिरह पर हुई उनकी झड़प। माँ ने हल्के आसमानी रंग की साड़ी पहनी और मोतियों की माला के साथ बेहद खूबसूरती से तैयार हुई थी शाम को बाहर जाने के लिए। पापा ने त्योरियाँ चढ़ा ली थी यह देखकर। मैंने बाद में पापा को कहा भी था, पापा माँ को जो रंग पसंद है उन्हें वही पहनने से आप क्यों रोकते हैं। पापा जवाब में खामोश रहे। अचानक सब गड़मट हो गया, सपना और माँ। मैं कहीं खोया हूँ इसका तब पता चला जब नंदू काका की दुकान में भावना ने मेरी बाँह झिझोड़ कर कहा कि क्लास का टाइम हुआ, हम जा रहे हैं, चाय खत्म कर तुम भी आओ। मैं अपने घर और कॉलेज के बीच उलझा सा चल पड़ा। उस रोज़ घर आकर भी उदासी छाई रही। मैं बेमन से खाना खाते हुए सोच रहा था कि जल्दी ही माँ के पास चला जाऊँ, अभी शुरुआत में उतनी पढ़ाई नहीं होगी, क्लास मिस कर दिया तो भी ज़्यादा हर्ज नहीं होगा, एक बार मिल रहा हूँ माँ से तब आकर गंभीरता से पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। तभी लैंडलाइन पर पापा का फ़ोन आया। माँ के बारे में सभी बातें बताई उन्होंने, कहा कीमो तो चल रहा है, वो बहुत तकलीफ़ होती है माँ को, वो तुम्हें बहुत याद कर रही थी, 15 दिन के लिए तुम दिल्ली आ जाओ, मैं रांची आ रहा हूँ कुछ काम से। जी मैं कल ही करा लेता हूँ टिकट, माँ से मिल सकूँगा इसकी बेहद खुशी हो रही थी मुझे। बस अब कल कॉलेज चला जाऊँ और वहाँ मेहता जी के पास 15 दिनों छुट्टी का एप्लीकेशन दे दूँ, फिर कल ही रेलवे स्टेशन जाकर टिकट करा लूँगा। सुबह कॉलेज गया, पीआर की पहली क्लास थी, मैम पढ़ाने आई। हल्की बैंगनी साड़ी और बड़ी सी कत्थे बिंदी में वो बेहद खूबसूरत और स्मार्ट लग रही थी। कक्षा में आती उन्होंने नोट्स लिखवाना शुरू किया। जब पीरियड समाप्त हुआ तो उन्होंने कहा, किसी को कुछ कहना या पूछना है तो पूछ लो। मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया, उन्होंने मुझे खड़ा किया और कहा, बोलो क्या कहना है, क्या समझ नहीं आया। मैंने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बड़ी मासूमियत से कहा, मैम कहना यह था कि आप बहुत खूबसूरत हैं। पूरा क्लास ठहाकों से भर गया। मैम ने भी मुस्कुराते हुए अपना रजिस्टर उठाया और निकल गई। कुछ दोस्तों ने पीठ पर धौल लगा मेरे साहस को शाबाशी दी तो लड़कियों ने घूरा, मगर यह महसूस किया कि सब समझने लगे हैं मुझे और मेरी इन हरकतों को अन्यथा नहीं लेते। घर के लिए निकलते वक्त भावना और सपना को अपने दिल्ली जाने की बात बता दी और नोट संभाल कर रखने की ताकीद भी कर दी। तीसरी सुबह मैं अस्पताल में था। माँ बड़ी निरीह सी दिख रही थी, बदन की तकलीफ चेहरे पर उभर आई थी। मुझे देखकर बहुत खुश हुई, माथे पर हाथ फिरा, प्यार किया पूछा, पहली बार अकेले रहे हो ना, डर तो नहीं लगा तुम्हें? मैं झेंक गया। माँ अब भी समझती हैं कि मैं अकेले में डरता हूँ। सच तो यह है कि मैं अकेला रहना नहीं चाहता। माँ कहीं ना जाए मुझे छोड़कर, इसलिए कहता था उनसे कि आप साथ रहो। मुझे डर लगता है अकेले में, मगर यह तो बहुत पुरानी बात हुई, तब स्कूल में था मैं। क्या माँ की यादों में वक्त छलांग लगाकर पीछे जा रहा है इन दिनों? अब रोज की दिनचर्या वही हो गई, दिन भर माँ के पास। माँ कह रही थी उस दिन कि प्रथम की शादी हो जाती तो थोड़ी जिम्मेदारी कम होती मेरी, मगर पापा का कहना है कि भैया की अभी अभी नौकरी लगी है, उसे कुछ दिन तो काम करने दो, फिर गृहस्थी का भार उठाना ही है। मगर अब तो जिंदगी की कोई भी बात बहुत पीछे, बस माँ है सामने, उनका स्वास्थ्य और हमारी जिंदगी जुड़ गई है, सब कुछ उनके मुताबिक। अस्पताल में माँ के पास कभी मैं तो कभी भैया रात को रुकते, बचपन के किस्से सुनाकर माँ को हंसाते। माँ जीने की पुरजोर कोशिश कर रही थी, अभी जिम्मेदारियाँ हैं कंधों पर, जानती हैं, इसलिए जल्दी ठीक होकर घर वापस आना चाहती हैं। उन्हें अपने तुलसी के पौधों का भी पूरा ध्यान है। ऐसे में आते ही पूछा था, मेरे तुलसी के पौधों में रोज पानी देता है ना प्रियम? जवाब में हाँ मिलने पर मुस्कुरा पड़ी थी वो। आज शाम की ट्रेन से चला जाऊँगा, पापा 15 दिन के बजाय 10 दिनों में ही लौट आए हैं। मुझे वापस जाना पड़ेगा रांची, टिकट ले लिया है। मैं माँ को उनके हवाले कर दिल्ली के आकाश से अपने शहर की आकाश की तुलना करता हुआ बहुत देर से यादों की गलियों में घूमता रहा हूँ। माँ के पास कुछ देर रह लूँ फिर तो चला ही जाऊँगा। माँ मुस्कुराती है मुझे देखकर, सोचता हूँ पीड़ा से उपजी मुस्कान दिल को भेद देती है। माँ को लगता है कि वो मेरे सामने खुश रहेंगी तो मैं भी उतना ही खुश रहूँगा। सच है कि मैं उनका भ्रम तोड़ना नहीं चाहता और वो मेरा। हम दोनों दर्द की लहरों पर तैर रहे हैं, मगर मेरा दर्द मानसिक है और माँ मन के साथ साथ तन के दर्द को भी अपने से दूर करने के लिए प्रयास कर रही हैं। मैं ऐसा जताता हूँ कि माँ जानबूझकर यहाँ है और रांची वापस चलने के लिए बहाना कर रही हैं। हम दोनों एक दूसरे को आश्वस्त कर रहे हैं कि बस कुछ दिनों की बात है, सब अच्छा हो जाएगा, मगर दोनों को पता है कि शायद डॉक्टर्स भी खुलकर कुछ नहीं कहते। लौटा हूँ वापस अपने शहर, सूना घर काटने को दौड़ता है। माँ पापा भाई बहन सब वहीं हैं। मुझे घर भेज दिया गया है कि जाओ, घर खाली है, किसी न किसी को देखभाल के लिए जाना ही पड़ेगा। मेरी कक्षाएँ भी छूट रही थी, सोचता हूँ छोटी अनु भी तो आ जाती है यहाँ, उसका भी तो स्कूल छूट रहा है। मेरा मन भी लगा रहता मगर उसे छोटी होने का फ़ायदा मिला है, पापा उसकी भी देखभाल करते हैं माँ के साथ साथ। कितनी लकी है अनु, माँ के पास है। केवल मैं ही इस बार दिल्ली से लौटने के बाद सपना के घर पहली बार गया अकेले। भावना को कुछ काम था इसलिए वह नहीं आई मेरे साथ। मुझे सपना की माँ बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल मेरी माँ की तरह, खूब प्यार से बातें की। माँ के स्वास्थ्य के लिए भी पूछा, जरूर सपना ने सब बताया होगा, हमने स्कूल कॉलेज के किस्से कहे। हमारी बातचीत में सपना का छोटा भाई भी शामिल था, चंचल सा गोल मटोल बच्चा जो अभी 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था। हमारी हर बात में बीच में टांग अड़ाता, सपना जितना उसे दूर भगाती वो हमारे बीच आकर बैठ जाता। आंटी ने मेरी पसंद का खाना बनाया, छोले आलू की सब्जी, सत्तू वाली कचौरी और खीर। अचानक मेरे मुंह से निकला, माँ मुझे खीर बहुत पसंद है, और दो ना। कहकर मैं एक मिनट के लिए सोच में पड़ गया कि ऐसे कैसे कह गया, जाने इस बात का क्या अर्थ लगाएगी सपना। मैंने तुरंत कहा, आंटी आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह लगती है, मैं आपको माँ बुला सकता हूँ ना? अवचेतन में माँ इन दिनों हमेशा मेरे साथ होती है, या ये भी हो सकता है कि मैं उनसे इतना जुड़ा हूँ कि हमेशा पास होने का एहसास होता है। आंटी ने हंसकर जवाब दिया, क्यों नहीं, तुम मुझे अब माँ ही कहना। तब से उन्हें मैं माँ ही कहने लगा। माँ के दिल्ली जाने के बाद की वह दोपहर बहुत अच्छी गुजरी, बिल्कुल घर सा माहौल, सबका एक साथ खाना खाना, चहलबाजी और सपना की माँ का भी इसमें शामिल रहना। मैं बिल्कुल भूल गया कि माँ उस समय अपनी कैंसर जैसी बीमारी से लड़ती हुई अस्पताल के बेड पर होगी। घर रिश्तेदारों से भरा है, सब माँ की बात कर रहे थे। मैं एक कोने में दुबका बैठा हूँ, दोपहर 12 बजे की फ्लाइट से माँ को घर लाया जा रहा है। लोग अंतिम दर्शन के लिए बेकरार हैं। अचानक रंजिता का हाथ मेरे कंधे पर पड़ा, मैं चीहूँ उठा। वह चाय लेकर आई है, कहती है पी लो ज़रा, माँ के आने में देर है, खुद को संभालो। मैं एकटक देखता हूँ उसके चेहरे की तरफ, माँ होती तो कहती, देख प्रियमू रंजिता की बात माना कर, बहुत समझदार लड़की है। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगता हूँ। रंजिता बिल्कुल पड़ोस वाले घर में रहती है, इतना अपनापन है कि कोई भी सब्जी दोनों घर में बिना बटे खाता नहीं कोई। अक्सर रंजिता ही कटोरदान लिए आवाज़ लगाती थी, चाची माँ ने उल्की सब्जी भिजवाई है आपके लिए, माँ सबको वहीं बुला रही है। ये बैना बांटने का काम माँ फिर मुझसे करवाती, साल दो साल की बड़ी थी रंजीता मुझसे, मगर माँ को बहुत पसंद थी यह लड़की। तभी सुबुकने की आवाज़ आई, देखा बुआ जोर जोर से रो रही, पापा की इकलौती बहन है। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या हुआ अचानक, रंजीता कहाँ गई, बुआ क्यों रोई, समझ नहीं आता कि मैं वर्तमान में हूँ या अतीत में। तभी हलचल मची, बॉडी आ गई, मेरी जीती जागती माँ बॉडी में कैसे तब्दील हो सकती है, मैं देखना चाहता हूँ माँ कहाँ है। माँ तो अभी यहीं थी, मुझे खीर परोसती हुई, किसमिस वाली ठंडे की, अभी तो माँ ने सीने से लगाया था, चाय का प्याला पकड़ाते हुए कह रही थी, जा जरा रंजीता की माँ को बुला ला, ऊन के लच्छे देने हैं, गोला बना देगी तो अन्नू के लिए स्वेटर बुनूंगी। माँ ने गुलाबी रंग ड्रेस पहना है। माँ तुम कितनी सुंदर लग रही हो। माँ कहाँ हो माँ, मुझे नहीं जाना रंजीता के घर, कॉलेज को देर हो रही, नंदू काका ने अभी गर्म समोसा निकाला है, माँ एक खा लो। सपना कहाँ जा रही हो तुम, भावना पीआर की क्लास नहीं है क्या आज। बुआ आकर कंधे पर हाथ रखती है, जाओ प्रियम माँ को अंतिम प्रणाम कर लो। मुड़कर देखता हूँ पापा के चेहरे की तरफ, बेहद उदास, शून्य में विलीन हो जैसे। माँ को देखा, आज लाल रंग की साड़ी पहनी थी माँ ने। पापा कहाँ है, मैं आवाज़ देता हूँ, पापा पापा। चटाख की आवाज़ से तंद्रा टूटी, कपाल क्रिया संपन्न हुई, मैं ठहरा हूँ यहीं, रुकूंगा उतनी देर जब तक चिता की राख ठंडी ना हो जाए। मित्रों के हाथ अपने कंधे पर पा रहा हूँ, सांत्वना के बोल कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि सब जानते हैं इनका कोई असर नहीं होगा मुझ पर, जबकि कोई अपना हमेशा के लिए साथ छोड़ गया हो। लोग पीठ पर हाथ धरते और वापस मुड़ जाते। पापा ने भी सबकी तरह आकर कहा, चलो अब सब खत्म हुआ। मैं कहता हूँ, आप जाइए, मैं कुछ और देर रहना चाहता हूँ यहाँ। पापा समझते हैं मुझे, कहते हैं ठीक है, मैं भी बैठा हूँ, साथ चलेंगे वापस। धीरे धीरे चिंगारियों का ताप कम होता जा रहा है, सन्नाटा है सबूर, सांझ खिराई है, सफ़ेद बादल जाने कहाँ चले गए। चिता से उठते धुएं की एक मोटी परत समूचे परिवेश में फैली हुई है, स्वर्णरेखा नदी की पतली धार किसी पगडंडी से दिख रही है। दूर जहाँ आसमान का नीला छोर धरती से मिलकर हरा हो जाता है, वहाँ जैसे गुलाबी साड़ी में लिपटी माँ खड़ी है। मैं झटके से खड़ा होकर पुकारता हूँ, माँ माँ, पर माँ के कदम रुकते नहीं, अपनी सीध में बढ़ते जाते हैं। मेरी पुकार की विकल प्रतिध्वनियाँ जैसे दसों दिशाओं से लौट कर मुझ तक वापस आ रही हैं। पापा ने बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया, जाती हुई माँ को उनकी पसंद के रंग की साड़ी में देख मेरे भीतर की बेचैनी हौले से तरकती है। मेरे हाथ पर पापा की पकड़ और मजबूत हो गई है। माँ को उनके पसंद की रंग की साड़ी में देख हमारी हथेलियाँ सुकून की उष्मा से भर उठी मुझे से। धन्यवाद।

ख्वाजा अहमद का मिशन 1665, जब मुगल दूत डच राजधानी पहुंचा। 3 मार्च 1665 को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के समुद्री साम्राज्य के तांत्रिक केंद्र बटाविया कैसल के डक पर कदम रखा। उसका नाम ख्वाजा अहमद था और वो कोई व्यापारी नहीं था, बल्कि वो बंगाल के शक्तिशाली सूबेदार गवर्नर और मुगल शासक औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान का कूटनीतिक दूत था। जहां इतिहास एशियाई दरबारों में यात्रा करने वाले यूरोपीय राजदूतों के वृत्तांतों से भरा है, वहीं अहमद का मिशन इसके विपरीत था। ये एक मुगल दूत द्वारा यूरोपीय कंपनी राज्य की राजधानी की यात्रा का एक दुर्लभ उदाहरण था। ये मिशन प्रांतीय कूटनीति का एक सटीक उदाहरण था, जहां स्थानीय मुगल गवर्नर राजाओं की स्वायत्तता और वजन के साथ काम करते थे। ख्वाजा अहमद एक उच्च तनाव के क्षण में पहुंचा था। शाइस्ता खान चटगांव बंदरगाह को जीतने और अरकान खत्म करने के लिए एक बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा था। डच एक अनिश्चित स्थिति में थे। वे बंगाल में अपने व्यापार से भारी लाभ कमा रहे थे, लेकिन साथ ही वे शाइस्ता खान के दुश्मनों के क्षेत्रों में भी व्यापार कर रहे थे। अहमद ने डच सरकार के सामने एक पत्र और उपहार प्रस्तुत किए, जिसमें एक कड़ा अल्टीमेटम छिपा हुआ था। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, वीओसी को तुरंत अपनी अरकान फैक्ट्री बंद करनी होगी। चटगांव अभियान में जहाजों और तोपों के साथ मुगल सेना का समर्थन करना होगा। यदि डच इनकार करते तो शाइस्ता खान ने उन्हें न केवल बंगाल से निकालने की धमकी दी, बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य में उनके संचालन को रोकने की चेतावनी दी। बटाविया में डच प्रशासक एक रणनीतिक दुविधा में फंस गए। हालांकि उन्होंने शुरुआत में व्यवहारिक कारणों की कमी का बहाना बनाकर देरी करने की कोशिश की, लेकिन वो समझ गए थे कि वो दिल्ली में मुगल शासक से अपील करके शाइस्ता खान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कंपनी के अधिकारियों का मानना था कि सूबेदार केंद्रीय दरबार से बहुत दूर रहता है और वो दिल्ली के किसी भी हस्तक्षेप से बहुत पहले ही प्रांतों में डचों को परिणाम भुगतने पर मजबूर कर सकता है। ख्वाजा अहमद की मिशन बंगाल के लिए एक बड़ी सफलता थी। पूर्ण व्यावसायिक विनाश के खतरे का सामना करते हुए वीओसी ने अंततः अरकान में अपना लॉज यानी व्यापारिक केंद्र बंद कर दिया। ये दुर्लभ मिशन दिखाता है कि शक्तिशाली दिखने वाले यूरोपीय कंपनियों को मौजूदा एशियाई सत्ता संरचनाओं के साथ आर्थिक और सैन्य रूप से तालमेल बिठाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। बटाविया में ख्वाजा अहमद के आगमन ने साबित कर दिया था कि 17वीं शताब्दी में ओरिएंट की रानी यानी बटाविया को अभी भी भारतीय उपमहाद्वीप के मालिकों को जवाब देना पड़ता था।

मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद, संस्कृति विभाग द्वारा यादे बशीर बद्र कार्यक्रम में अखिल भारतीय मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें शायरों ने अपने कलाम

0: शुक्रिया।
1: मेरी मुराद जो है वो मोहतरमा पूजा भाटिया से है। मोहतरमा पूजा भाटिया,
0: शबे विसाल में अटकी हुई सुई हूँ मैं, शबे विसाल में अटकी हुई सुई हूँ मैं, वो जा चुका है कभी का, यहीं खड़ी हूँ मैं। शबे विसाल में अटकी हुई सुई हूँ मैं, वो जा चुका है कभी का, यहीं खड़ी हूँ मैं। और मैं दश्त दश्त भटकती हूँ तिश्नगी लेकर, मैं दश्त दश्त भटकती हूँ तिश्नगी लेकर, कभी किसी को बताया नहीं नदी हूँ मैं। कभी किसी को बताया नहीं नदी हूँ मैं, और इस एक मोड़ पर अक्सर सभी बिछड़ते हैं, इस एक मोड़ पर अक्सर सभी बिछड़ते हैं। सुना है जब से इसी मोड़ पर रुकी हूँ मैं, सुना है जब से इसी मोड़ पर रुकी हूँ मैं, और यकीन देखते बनता था छोटे बच्चे का, यकीन देखते बनता था छोटे बच्चे का, जब उसको मैंने कहा था कि एक परी हूँ मैं।
1: जब वाह वाह वाह,
0: यकीन देखते बनता था छोटे बच्चे का, जब उसको मैं

0: हमारा। कभी मौसम नहीं बदला हमारा, रहे कोहरे के हम कोहरा हमारा, और कहानी पर थे हम गालिब वगरना, कहानी पर थे हम गालिब वगरना, जरूरी था नहीं मरना हमारा, जरूरी था नहीं मरना हमारा। और ये शेर देखें कि हम अपने दिल की दुनिया में हैं, लेकिन हम अपने दिल की दुनिया में हैं, लेकिन यहाँ भी जी नहीं लगता हमारा। हम अपने बहुत शुक्रिया, हम अपने बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत
0: हम
1: अच्छा
0: अपने दिल की दुनिया में हैं, लेकिन हम अपने खामोशी भी दाद होती है, और मैं आपकी दाद को बहुत एंजॉय कर रही हूँ।
1: क्या कहने हैं?
0: हम अपने दिल की दुनिया में हैं, लेकिन यहाँ भी जी नहीं लगता हमारा। और एक ताजा गजल के चंद अशार, लौट कर मत आ मगर मुड़कर तो देख, लौट कर मत आ मगर मुड़कर तो देख, अब तलक बैठे हैं तेरी आस में, अब तलक बैठे हैं तेरी आस में, और शिकवा है उससे अब न है कोई गिला मुझे, शिकवा है उससे अब न है कोई गिला मुझे, है इश्क एक हादसा गुजरा हुआ मुझे, शिकवा है उससे अब न है कोई गिला मुझे, है इश्क एक हादसा गुजरा हुआ मुझे, और मैंने कहा कि हाशिया मेरे लिए नहीं, मैंने कहा कि हाशिया मेरे लिए नहीं, कितने ही जावियों से फिर सोचा गया मुझे, कितने ही बहुत शुक्रिया, कितने ही जावियों से फिर मैंने कहा कि हाशिया मेरे लिए नहीं, कितने ही जावियों से फिर सोचा गया मुझे, और तरके ताल्लुकात से इतना तो हो गया, तरके ताल्लुकात से इतना तो हो गया, मिलने का अपने आप से मौका मिला मुझे, तरके ताल्लुकात से इतना तो हो गया, मिलने का अपने आप से मौका मिला मुझे, किसी ख्वाहिश पे वारा जा रहा है, किसी ख्वाहिश पे वारा जा रहा है, वो एक गुमनाम तारा जा रहा है, किसी ख्वाहिश पे वारा जा रहा है, वो एक गुमनाम तारा जा रहा है। और ये शेर आखिर कि गले सब मिल रहे हैं उससे हंसकर, गले सब मिल रहे हैं उससे हंसकर, हमारा हक तुम्हारा जा रहा है, हमारा हक, गले सब मिल रहे हैं उससे हंसकर, हमारा हक तुम्हारा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया
2: जनाबे डॉक्टर नदीम शाह।
3: ख्वातीन हजरात, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। एक बिल्कुल ताज़ा मतला है साहब, ये भी सुन लीजिए कि जैसे झील में उतरे जमी से होते हुए,
1: कि जैसे झील से उतरे,
3: कि जैसे झील में उतरे जमी से होते हुए, मैं उसकी आंख तक आया जबी से होते हुए, मैं उसकी आंख तक आया
1: जबी से होते हुए,
3: जबी से होते हुए, ये माँ के पांव नहीं हैं, ये माँ के पांव नहीं हैं, ये सीढ़ियां हैं नदीम। अगला मिसरा देखिएगा साहब, ये माँ के पांव नहीं हैं,
1: ये सीढ़ियां हैं नदीम,
3: ये सीढ़ियां हैं नदीम, मैं आसमां पे गया था यहीं से होते हुए।
1: वाह वाह वाह वाह,
3: ये माँ के पांव नहीं हैं, ये सीढ़ियां हैं नदीम,
1: मैं आसमां पे गया था,
3: मैं आसमां पे गया था
1: यहीं से होते आए हैं,
3: यहीं से होते हुए।
1: बहुत अच्छा शेर।
3: एक मतलब सुन लीजिए, मतलब ये है कि हर कदम पर जो सोचेंगे थक जाएंगे, हर कदम पर जो सोचेंगे थक जाएंगे, जो न सोचेंगे वो दूर तक जाएंगे।
1: वाह,
3: जो न सोचेंगे वो दूर तक जाएंगे, हम समंदर हैं हमको न रास्ते बता, हम समंदर हैं हमको न रास्ते बता, हम मुसाफिर नहीं जो भटक जाएंगे, हम मुसाफिर नहीं जो भटक जाएंगे। एक शेर आपने सुना होगा, एक पुराना शेर है कि जो भी आए हैं वो नजदीक ही बैठे हैं तेरे, हम कहाँ तक तेरे पहलू से सरकते जाएं। अब एक शेर मैंने कहने की कोशिश की है, हाजिर करता हूँ, सुनिए। हम मुसाफिर नहीं जो भटक जाएंगे, दुश्मनी यार किस किस से लेंगे भला, दुश्मनी यार किस किस से लेंगे भला, तेरे पहलू से हम ही सरक जाएंगे।
1: वाह वाह,
3: तेरे पहलू से हम ही सरक जाएंगे, चांद मस्ती में गुम है उसे क्या खबर, चांद मस्ती में गुम है उसे क्या खबर, जंगलों में मुसाफिर भटक जाएंगे।
1: वाह वाह,
3: चांद मस्ती में गुम है उसे क्या खबर, जंगलों में मुसाफिर भटक जाएंगे। और एक मतला सुनाता हूँ, मतला सुन लीजिए ये भी साहब, के मतला ये है, ये वक्त क्यों तेरी तस्वीर पर गंवाते हैं, ये वक्त क्यों
1: तेरी तस्वीर
3: पर गंवाते हैं, जब इनसे बनती नहीं है तो क्यों बनाते हैं।
1: वाह वाह वाह,
3: जब इनसे बनती नहीं है
1: तो क्यों बनाते हैं।
3: और चंद शेर सुनिए, मैं समझ में नहीं आ रहा कैसे सुनाऊं कि आपके हाथ खुले और जरा आप थोड़ा सा मुशायरे के माहौल में आए, इतना तो जोर पड़ा भी नहीं मुशायरे में आज, इतना आप थक गए हैं।
1: क्या क्या,
3: ये भोपाल है और भोपाल में शायरी कैसे सुनी जाती है ये बताने की जरूरत नहीं है। एक मतला और सुन लीजिए, मतला ये है कि साहब देखिए, मतला कि जरा सा सब्र था जो कर गए हम, जरा सा सब्र था
1: जो कर गए हम
3: उसे लगने लगा था मर गए हम।
1: वाह भाई वाह वाह वाह वाह,
3: उसे लगने लगा था मर गए हम। अब ये शेर सुनिए साहब, बतौर खास ये शेर सुनाता हूँ, उसे लगने लगा था मर गए हम, ये नाकदरी हमारी इसलिए है, ये नाकदरी हमारी इसलिए है, तेरा होने में जल्दी कर गए
1: हम। वाह वाह भाई, जोरदार तालियों से नवाजे, क्या कहने, वाह वाह वाह वाह वाह,
3: बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। ऐसे ही बस ऐसे ही सुनिए, तो हाजिर करता हूँ, सुनिए, उसे लगने लगा था मर गए हम, ये नाकदरी हमारी इसलिए है, तेरा होने में जल्दी कर गए हम।
1: वाह,
3: रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है, रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है, तेरी खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती है। और अब शेर फिर से सुनाता हूँ, तेरी खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती है, उसको भुलाकर मुझको ये मालूम हुआ है, उसको भुलाकर
1: मुझको ये मालूम हुआ है
3: आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
3: बहुत शुक्रिया जी, हाजिर करता हूँ, सुनिए, रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है, तेरी खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती है,
1: वाह,
3: उसको भुलाकर मुझको ये मालूम हुआ है, आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती है।
1: क्या कहने।
3: और सुनिए, एक मतलब ये है कि हटाओ हाथ आंखों से ये तुम हो जानता हूं मैं,
1: वाह,
3: हटाओ हाथ आंखों से
1: ये तुम हो जानता हूं मैं,
3: तुम्हें खुशबू नहीं आहट से भी पहचानता हूँ।
1: वाह वाह,
3: तुम्हें खुशबू नहीं, बहुत शुक्रिया, तुम्हें खुशबू नहीं आहट से भी पहचानता हूँ मैं, भटकता फिर रहा था गम लिपट कर मुझसे ये बोला, भटकता फिर रहा था गम लिपट कर मुझसे ये बोला, कहाँ जाऊं तुझी को शहर भर में जानता हूं मैं, कहाँ जाऊं तुझी को शहर भर में जानता हूं। मतलब सुनिए, मतलब ये है कि लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। आइए मैं एक गजल के चंद शेर आपको तरन्नुम से सुना दूं, सिर्फ उससे पहले एक मतला एक शेर और सुन लीजिए। मतला सब कुछ आसान हो सकता है ऐसा लगता है, सब कुछ आसान हो सकता है
1: ऐसा लगता है,
3: ऐसा लगता है कुछ लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है।
1: वाह वाह वाह।
3: कुछ लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है, चाहे सब खो जाए लेकिन उनको मत खोना। चाहे सब खो जाए लेकिन उनको मत खोना, जिनको तेरी आंख का आंसू दरिया लगता है।
1: वाह वाह।
3: जिनको तेरी आंख का आंसू दरिया लगता है, अब उसकी किस्मत है जिसको तू अच्छा समझे। अब उसकी किस्मत है जिसको तू अच्छा समझे। वैसे तो हर रंग ही तुझ पे अच्छा लगता है।
1: वाह वाह।
3: वैसे तो हर रंग ही तुझ पे अच्छा लगता है। एक मतलब आपको सुनाना चाह रहा था, वो सुन लीजिए, उसमें एक शेर अच्छा हो गया तो इसलिए सुना रहा हूँ। मतलब थोड़ा सा जरा बारीक है, हाजिर करता हूँ, सुनिए। मतलब ये है कि तकब्बुर का नतीजा है ये सब जानी नहीं समझे। सुनो भाई
1: जी। अच्छा।
3: तकब्बुर का नतीजा है ये सब जानी नहीं समझे। तुम्हारे घर में क्यों फैली है वीरानी
1: नहीं समझे।
3: नहीं समझे। तुम्हारे घर में क्यों फैली है वीरानी नहीं समझे। अब ये शेर सुनाना है। तुम्हारे घर में क्यों फैली है वीरानी नहीं समझे। उसे कहना पड़ा हमसे सो हम पे इसलिए लानत। भाई
1: उसे कहना पड़ा हमसे।
3: उसे कहना पड़ा हमसे सो हम पे इसलिए लानत। हम उसको देखकर उसकी परेशानी नहीं समझे।
1: क्या कहने।
3: उसे कहना पड़ा हमसे सो हम पे इसलिए लानत। हम उसको देखकर उसकी परेशानी नहीं समझे। ख्वाब जो पूरे करने हो तो जुर्रत करनी पड़ती है, किस्मत भी होती है लेकिन मेहनत करनी पड़ती है।
1: क्या कहने।
3: किस्मत भी होती है लेकिन
1: मेहनत करनी पड़ती है।
3: मेहनत करनी पड़ती है। और साहब ये देखिए, गजल का ये शेर सुनिए और महसूस कीजिएगा उन लोगों के लिए जो अपने वतन से दूर रह रहे हैं रोजी रोटी के लिए या कुछ और मजबूरी है, उनके लिए एक शेर कहा है। शेर सुनिए साहब। घर की कीमत क्या होती है, घर वाले क्या होते हैं।
1: वाह।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: वीर जी वोरा, वो व्यापारी राजकुमार जिसने यूरोपीय कंपनियों को अपने इशारों पर नचाया। 17वीं शताब्दी के व्यस्त सूरत बंदरगाह में अंग्रेजी और डच ईस्ट इंडिया कंपनियां समुद्री प्रभुत्व के सपने लेकर आईं, लेकिन उनका सामना एक ऐसे स्थानीय व्यापारी से हुआ जो वैश्विक बाजार को अपनी इच्छा शक्ति से मोड़ने की ताकत रखता था। उसका नाम था वीरजी वोरा, एक बनिया व्यापारी जिसका प्रभाव इतना व्यापक था कि तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में उसे सभी यूरोपीय वस्तुओं का एकमात्र एकाधिकार बताया गया है। हालांकि वोरा के पास कभी भी कंपनी ब्रोकर का औपचारिक पद नहीं था, फिर भी वो दोनों यूरोपीय शक्तियों के लिए अपरिहार्य बैंकर और मुख्य खरीदार था। सूरत में उसका मोनोपसोनी यानी एकमात्र खरीदार का अधिकार था, जिससे वो छोटे व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा करने से रोकता था और ये सुनिश्चित करता था कि हर बड़े सौदे का समय और कीमत उसके अपने निर्णय के अनुसार रहे। उसकी वित्तीय पहुंच चौंका देने वाली थी। 1622 में डच कंपनी वीओसी ने उससे 36,000 महमूदी उधार लिए थे। 1628 तक वो आगरा जैसे दूर दराज के क्षेत्रों के लिए भी EIC को भारी ऋण पत्र यानी लेटर्स ऑफ क्रेडिट जारी कर रहा था। वोरा की शक्ति अपनी शर्तें मनवाने की उसकी क्षमता में सबसे अच्छी तरह दिखाई देती थी। 1625 में जब अंग्रेजों ने काली मिर्च खरीदने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि वोरा ने पूरी आपूर्ति पर कब्जा कर रखा है। उसने तब तक बेचने से इनकार कर दिया जब तक कि कंपनी ने उसे अपने सबसे अच्छे मूंगे के 25 बक्से उस कीमत पर नहीं सौंप दिए, जिससे अंग्रेजों का मुनाफा काफी कम हो गया। चूंकि कंपनियों के पास अक्सर कपड़ा खरीदने के लिए नगदी सोना चांदी की कमी होती थी, इसलिए वे टिके रहने के लिए वोरा की विशाल तरल पूंजी पर निर्भर थे। उसने इस कमजोरी का बेरहमी से फायदा उठाया। कभी कभी कंपनियों को लंदन या बटाविया की अपनी यात्राओं में देरी करने के लिए मजबूर किया, ताकि उनके जहाज सूरत के स्थानीय व्यापारियों के लिए माल ढोने का काम कर सकें। EIC अधिकारी एडवर्ड नाइप ने 1643 में कंपनी की हताशा को दर्ज किया। उन्होंने शिकायत की कि वोरा कालीकट में कोड़ियों के दाम पर काली मिर्च खरीदता और अंग्रेजों को उसे दोगुनी कीमत पर बेचता। नाइप ने अपने मालिकों को चेतावनी दी थी कि जब तक कंपनी वोरा के कर्ज में इतनी डूबी रहेगी, सूरत में नामात्र या कोई लाभ नहीं कमाया जा सकेगा, क्योंकि वोरा हमें तब तक दबाता है जब तक हम उसके अपने पेट पर नहीं आ जाते। दशकों तक वोरा शहर का सबसे अमीर आदमी और व्यापारिक समुदाय का शिखर बना रहा। हालांकि साल 1664 में तब एक विनाशकारी बदलाव आया जब मराठों ने सूरत पर आक्रमण किया। बताया जाता है कि इस हमले में वोरा को लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, एक ऐसा झटका जो छोटे व्यापारियों को नष्ट कर देता। फिर भी वो एक सक्रिय व्यक्ति बना रहा जो पारस्परिक निर्भरता के रिश्ते को दर्शाता है। जहां शक्तिशाली दिखने वाली यूरोपीय कंपनियां अक्सर भारतीय पूंजी की दया पर थीं, वीरजी वोरा की विरासत एक ऐसे मर्चेंट प्रिंस की है जिसने अंग्रेजों के भारत को जीतने से बहुत पहले उन पर महारत हासिल कर ली थी। उनकी कहानी याद दिलाती है कि कंपनियों का शुरुआती इतिहास तत्काल जीत का नहीं था, बल्कि स्थानीय दिग्गजों के साथ एक नाजुक रणनीतिक गठबंधन का था, जिनका अक्सर बाजार पर अपर हैंड रहता था।
2: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो,

0: प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
1: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। जय हिंद।

आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त है कार्यक्रम परिक्रमा का, आइए सुनते हैं परिक्रमा।

अपनी लेखनी और अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले स्वानंद किरकिरे ने गुरुवार को जनजातीय संग्रहालय को एक्सप्लोर किया। किताबों के पन्ने पलटे तो कल्चरल हिस्ट्री को देखा। उन्होंने बताया, यह एक डिस्प्ले सेंटर नहीं बल्कि सोच के एक नए आयाम दे रहा है। संग्रहालय में पहुंचे कलाकारों ने कला के इन रूपों को अलग अंदाज में देखा। गैलरीज, आर्ट एग्जीबिशन, कलाकृतियों के केंद्र, चिन्हारी, सुवेनियर शॉप और किताबों के अनूठे संसार लिखंदरा लाइब्रेरी में किताबों के पन्ने पलटे। आदिवासी कला को यहाँ नए आयाम दिए गए हैं। चित्रों, स्ट्रक्चर और मॉडल के रूप में यहाँ सहेजा गया है। पूरे प्रदेश की जनजाति कला का यह इतिहास देखा जा सकता है यहाँ पर। किरकिरे और उनकी टीम ने स्थानीय कलाकारों और ग्राउंड स्टाफ से यहाँ मुलाकात भी की।

तबले की थाप और सारंगी के सुर, इन दोनों विधाओं में छोटे उस्ताद माहिर हो गए। ये पद्मश्री लतीफ खां की सातवीं पीढ़ी है जो ग्वालियर घराने के संतूर को राजधानी में आगे बढ़ा रही है। ट्रेडिशनल म्यूजिक के क्रेज के चलते भोपाल से विदेशों में क्लास की शुरुआत हुई है। शास्त्रीय संगीत की विधा संतूर वादन में राजधानी को देशभर में अलग स्थान है। यहाँ के कलाकारों को पद्मश्री मिल चुका है। म्यूजिक का यूरोप अपडेट हुआ है। इसमें ग्वालियर घराने के संगीतकारों ने काम किया। ये लतीफ खां की सातवीं पीढ़ी है जो अभी स्कूल में है। कम हो रहे कलाकारों को देखते हुए विदेशों तक ऑनलाइन सारंगी के सुर पहुंचाए गए हैं।

बादल बयार और बौछारों से दमकती गुरुवार की शाम भोपाल के आसमान पर देशभक्ति का सतरंगी इंद्रधनुष खिला। ये इंद्रधनुष हमारे कल से हमारे भविष्य को जोड़ता नजर आया। कल हैं देश प्रेम से भरे वे गीत जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखे गए। आज हैं वे युवा जो इन गीतों पर सिर्फ नृत्य नाटिका की प्रस्तुति नहीं दे रहे थे, वे उस इतिहास से भी रूबरू हो रहे थे, वे उस समय की मुश्किल परिस्थितियों से भी रूबरू हो रहे थे जो हमारे देश ने अंग्रेजी हुकूमत के दौरान झेली थी। ये मौका था रविंद्र भवन में हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम समकालीन हिंदी पत्रकारिता परंपरा परिवर्तन और भविष्य के उद्घाटन समारोह का। क्षमा मालवीय के निर्देशन में तैयार 1.5 घंटे की नृत्य नाटिका स्वाधीनता के गान करीब 1 महीने की अथक मेहनत के बाद तैयार हुई। इसमें आज़ादी की अलख जगाती 12 कविताएं एक ही कड़ी में पिरोई गईं। मंच पर एक साथ 75 युवा कलाकारों ने प्रस्तुति दी।

वहीं माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में दिलचस्प नजारा देखने को मिला। विश्वविद्यालय के तक्षशिला भवन स्थित लता मंगेशकर सभागृह में एक सुपरस्टार एक माफ कीजिए दोबारा सुने लता मंगेशकर सभागृह में एक सुपर मास्टर क्लास में सीनियर प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष खुद स्टूडेंट्स की बेंच पर बैठकर नोट्स ले रहे हैं और विश्वविद्यालय के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी सबसे पीछे बैक बेंचर की भूमिका में डायरी थामे नजर आए। मौका था फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का। विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के सहयोग से 10 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, जिसका विषय AI फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स है।

अब बात तनाव की, नहीं तनाव मुक्ति की। दफ्तर की फाइलें, डेडलाइंस और रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच मानसिक शांति कैसे पाएं, इसका फॉर्मूला सीखने गुरुवार सुबह एमपी हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय के अधिकारी और कर्मचारी एक साथ जुटे। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सहयोग से प्राणायाम, ध्यान और योग पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। वर्क बैलेंस और मानसिक शांति के बीच तालमेल बिठाने यहाँ टिप्स दिए गए हैं, ये ध्यान के रूप में थे। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य सतर्कता अधिकारी और कर्मचारियों ने, तकरीबन 100 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसमें हिस्सा लिया। आर्ट ऑफ लिविंग की टीम से रुचि तिवारी सरिता चौक से, पहली दास और रुद्राक्ष चौक से शामिल थी। मंडल के अधिकारियों ने कहा कि खुशहाल और तनाव मुक्त टीम ही संगठन की असली ताकत होती है। सभी प्रतिभागियों ने इस सेशन के बेहद लाभकारी और नई ऊर्जा से भरने वाला बताया। स्ट्रेस फ्री रहने की भी इसमें बेहतर तरीके बताए गए, जैसे प्राणायाम, मन को शांत और शरीर को तुरंत रिचार्ज करने वाली श्वास तकनीकें सिखाई, गाइडेड मेडिटेशन, मानसिक स्पष्टता और फोकस बढ़ाने के लिए पर्यावास भवन में सामूहिक ध्यान कराया। वहीं नॉलेज पॉइंट्स यानी जीवन और काम के बीच संतुलन बनाने के सूत्र दिए गए।

इब्बी की ऑनर लिस्ट 2026 में इस बार भारत की चार पुस्तकों को शामिल किया गया है, जिनमें दो हिंदी की हैं। बच्चों के साहित्य की इस प्रतिष्ठित वैश्विक सूची में 59 देशों, 52 भाषा और 191 उत्कृष्ट पुस्तकों के बीच इन दोनों हिंदी किताबों ने जगह बनाई है। खास बात यह है कि दोनों पुस्तकें भोपाल के दो प्रकाशनों से प्रकाशित हुई हैं। इसने शहर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। वहीं भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को समर्पित राष्ट्रीय मासिक सांस्कृतिक श्रृंखला संतवाणी का आयोजन 10 जुलाई को होगा। बाग मुगलिया में होने जा रहे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी के निदेशक शामिल होंगे।

राजधानी के कला प्रेमियों के लिए शुक्रवार की शाम खास होने जा रही है। स्पिक मैक के भोपाल चैप्टर और आरसीबीपी नरोना प्रशासन अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में शाम 6:30 से भव्य ध्रुपद गायन सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें दरभंगा घराने के सुप्रसिद्ध गायक और इसमें प्रस्तुति देंगे। पखावज पर पंडित रविशंकर उपाध्याय संगीति करेंगे। इसमें शहर के कला प्रेमियों के साथ अधिकारी कर्मचारी भी शामिल रहेंगे।

0: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें। ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
1: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।

मैं हूं पवन सिन्हा और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत को प्रणाम।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: नमस्कार श्रोताओं, हम हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम आजाद हिंद की एक और कड़ी, जिसमें हम बात करेंगे।
2: श्रोताओं, मेरा भी नमस्कार स्वीकार कीजिए। क्या बात है तारीख, आज कुछ जल्दी में लग रही हो।
1: अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल आज आजाद हिंद में हम जिन महान देशभक्तों की बात करेंगे ना, उनके कार्य ही ऐसे हैं कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही।
2: अच्छा, ऐसा है क्या? तो जल्दी से बताना शुरू करो, हमारे श्रोतागण और मैं सब लोग बहुत उत्सुक हैं सुनने के लिए।
1: तो श्रोताओं आइए, आज इस कड़ी में हम बात करते हैं अल्लूरी सीताराम राजू की।

0: इनका जन्म विशाखापट्टनम के एक गांव में 4 जुलाई 1897 को हुआ था और लालन पालन एक कलेक्टर के घर में।
1: बचपन से ही राजू पढ़ाई लिखाई में बहुत कुशाग्र थे और उन्होंने स्वयं के प्रयासों से संस्कृत और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया और यहीं से इनके मन में क्रांति के बीज अंकुरित हुए।
0: वैसे तो राजू गांधी जी के सिद्धांतों के हिमायती थे और मंदिरों में धार्मिक उपदेश और भजन कीर्तन किया करते थे, मगर जब उन्हें लगा कि अहिंसक आंदोलन इतना प्रभावी सिद्ध नहीं हो पा रहा तो उन्होंने अपना बैरागी बाना छोड़ दिया और आदिवासी जनता को इकट्ठा करके सेना के रूप में ढालना शुरू किया
1: और इस तरह आरंभ हुआ एक नया क्रांति युग।
2: दुम तकड़ दुम दुम दा, तकड़ दुम दुम दा, दुम तकड़ दुम दुम दा।

कदी करी।

0: लोग राजू की सेना में भर्ती होने लगे और उनकी सेना का आकार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। लोगों को राजू पे बहुत विश्वास था। वो उसे देवता की तरह पूजते थे।
1: अब राजू के लिए सबसे बड़ी समस्या थी हथियार। उनके पास तीर कमान तो थे मगर बंदूकें और आग्नेय हथियार नहीं थे, और उसका हल ये निकाला गया कि पुलिस के हथियारों को लूटा जाए और डकैती डाली जाए। बस राजू और उसके साथी जान हथेली पे लेके अपनी मंजिल की ओर चल पड़े।
0: और श्रोताओं, राजू ने एक के बाद एक थानों को लूटना शुरू कर दिया। वे लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि राजू के नाम से पुलिस वाले थाने छोड़ छोड़ कर भाग जाते थे।
1: इसी क्रम में राजू ने रंपा क्षेत्र के चिंतापल्ली और करबड़ा देवी पैठ में लूटपाट के द्वारा बहुत से हथियार जमा किए। इधर अंग्रेजों को भी अब लगने लगा था कि यदि राजू को रोका नहीं गया तो ये अंग्रेजी राज्य के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकता है।
0: बस फिर क्या था, तुरंत दो अंग्रेज अफसरों स्कॉट और आयर की नियुक्ति कर दी गई और उन्होंने 24 सितंबर 1922 को राजू पर हमला कर दिया। मगर वे राजू की सेना के आगे टिक नहीं पाए और दोनों अफसरों की मौत हो गई।
1: इसके बाद राजू का नाम अंग्रेजों के लिए आतंक का पर्याय बन गया। दरअसल राजू सारी योजनाएं इतनी चतुराई से बनाते थे कि अंग्रेज उसका छोर भी नहीं पा पाते थे और राजू काम करके निकल जाते थे।
0: एक बार की बात है, उन दिनों के एक बहुत प्रसिद्ध क्रांतिकारी बाबा पृथ्वी सिंह को अंडमान जेल से आंध्र प्रदेश की जेल में ले जाया जा रहा था और बाबा चलती ट्रेन से कूदकर भाग निकले, मगर पकड़ लिए गए और फिर से जेल में डाल दिए।

बहुत बड़ा जखीरा प्राप्त कर लिया और अब राजू और उसके सैनिक हथियारों से लैस होकर जोश से भर कर चल पड़े अपनी धरती की गुलामी मिटाने के लिए।

0: अंग्रेजों ने असम राइफल्स नाम की एक पूरी सेना राजू के पीछे लगा दी। 6 मई 1924 को दोनों सेनाओं का मुकाबला हुआ। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध हुआ। बहुत से सैनिक मारे गए, मगर राजू की सेना का नुकसान कुछ ज्यादा हुआ। उसके बहुत खास 12 सैनिक मारे गए और बहुत से घायल हो गए। राजू भी बुरी तरह जख्मी हुआ,
1: मगर उसके साथ ही उसको बचाकर वहां से ले गए। उनकी योजना थी कि फिर से सैनिकों को इकट्ठा कर अंग्रेजों को इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। अगले दिन 7 मई को जब घायल राजू गोदावरी नदी में स्नान कर रहा था, तभी किसी मुखबिर की सूचना पे अंग्रेज सेना वहां आ धमकी।
0: वहां राजू और उसके साथियों ने उनका मुकाबला किया, मगर अंग्रेजों की विशाल सेना के आगे भला मुट्ठी भर लोग कहां टिकते। राजू को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर अंग्रेजों को लगा कि यदि राजू को लेकर कोतवाली गए या जेल में राजू को रखा, तो इसके साथी जो कि जेलों पे हमले करने के आदि हैं, इसको जरूर छुड़ा के ले जाएंगे।
1: बस इसी डर से उन्होंने राजू को एक पेड़ से बांधा और गोलियों से छलनी कर दिया, और एक और महान देशभक्त शहीदों की फहरिस्त में शामिल हो गया और हमेशा हमेशा के लिए भारतवासियों के दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ गया।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: हिप्पुल्स का रहस्य, ग्रीक नाविक और पुरानी नई दुनिया। पश्चिमी दुनिया की इतिहास की किताबों में हिप्पुल्स का नाम अक्सर कोलंबस या मैगेलन जैसी ही श्रद्धा के साथ दर्ज किया जाता है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी के इस ग्रीक नाविक को एक ऐसी खोज का श्रेय दिया जाता है जिसने दुनिया बदल दी, मानसून की हवाओं का रहस्य। लेकिन यदि आप 2000 साल पीछे जा सकें और भारत या अरब के किसी बंदरगाह पर किसी नाविक के कान में उसका नाम फुसफुसाएं, तो वे शायद हंस पड़ेंगे, क्योंकि हिंद महासागर के लोगों के लिए हिप्पुल्स का यह रहस्य पिछली शताब्दियों से एक सामान्य जानकारी थी। लंबे समय तक भूमध्य सागरीय नाविक केवल तट के किनारे चलने वाले थे। वे गहरे खुले समुद्र से डरे हुए थे और हर समय तट रेखा को अपनी आंखों के सामने रखना पसंद करते थे, जिसे वे अरब प्रायद्वीप के किनारों पर धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ते थे। यह यात्रा लंबी, खतरनाक और समुद्री लुटेरों से भरी थी जो खाड़ियों में छिपे रहते थे। लेकिन फिर हिप्पुल्स आया। लगभग 100 ईसा पूर्व में उसने समुद्र की सांस के बारे में कुछ असाधारण महसूस किया। उसने देखा कि दुनिया के इस हिस्से में हवाएं बेतरतीब ढंग से नहीं चलतीं। वे एक पूर्वानुमेय मौसमी मशीन की तरह थीं। नवंबर से जनवरी तक उत्तर पूर्वी मानसून महाद्वीपीय एशिया से पूर्वी अफ्रीका की ओर शुष्क हवाएं चलाता है। अप्रैल से अगस्त तक यह प्रक्रिया उलट जाती है, क्योंकि दक्षिण पश्चिमी मानसून तेज हवाओं को वापस उत्तर की ओर धकेलता है। हिप्पुल्स की इस खोज ने ग्रीको रोमन जहाजों को तट से चिपके रहने के बजाय सीधे खुले अरब सागर के पार जाने की अनुमति दी। दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ अपने प्रस्थान का समय निर्धारित करके वे अपने जहाजों को लाल सागर से सीधे भारत के मसालों से समृद्ध बंदरगाहों जैसे मुजिरिस या बैरीगाजा तक पहुंचा सकते थे। इसने बैरेनिका बंदरगाह को एक फलते फूलते मरुस्थलीय एम्पोरियम में बदल दिया, जहां भारतीय काली मिर्च और रेशम के बदले रोमन सिक्कों का व्यापार होता था। इस समुद्री क्रांति को पहली शताब्दी ईस्वी के एक प्रसिद्ध दस्तावेज में दर्ज किया गया है, जिसे पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी कहा जाता है। एक अज्ञात यूनानी द्वारा लिखित ये दस्तावेज इस नए मार्ग के लिए एक व्यावहारिक नियमावली के रूप में कार्य करता है, जिसमें बंदरगाहों, सामानों और हवाओं के महत्वपूर्ण समय का विवरण दिया गया है। हिप्पुल्स का असली रहस्य परिप्रेक्ष्य का एक सबक है, जहां यूनानी इतिहासकारों ने उन्हें एक अग्रणी के रूप में सराहा, वहीं स्रोत बताते हैं कि हिंद महासागर के नाविकों ने यूनानियों के आने से कम 800 साल पहले ही इन मौसमी पैटर्नों में महारत हासिल कर ली थी। स्थानीय लोगों के लिए मानसून कोई खोज नहीं थी, वे ईश्वर की सांस थे जो जीवन, खेती और व्यापार की लय तय करते थे। हिप्पुल्स ने मानसून की खोज नहीं की, उसने बस उन लोगों की बात को अंततः सुना और समझा जो सहस्त्राब्दियों से उनका उपयोग कर रहे थे। उनकी कहानी उस क्षण का प्रतिनिधित्व करती है जब भूमध्य सागरीय दुनिया को आखिरकार एक विशाल, प्राचीन और अत्यधिक परिष्कृत एफ्रो एशियाई नेटवर्क को स्वीकार करने और उसमें शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो रोम के एक शहर बनने से बहुत पहले से फल फूल रहा था।
2: यह है रेडियो आजाद हिंद, 90.8 देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। मैं हूं आपका रेडियो मित्र विजयकांत नायक।
3: और मैं हूं आपकी रेडियो मित्र डॉक्टर गौसिया।
2: श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खान की।

0: कला कललिनी में बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जो एक साज का ही पर्याय बन गया, एक ऐसा कलाकार जिसने एक वाद्य को शादियों के मंडप से निकालकर शास्त्रीयता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया।
1: सुना आपने श्रोताओं, ये सिर्फ संगीत नहीं है, ये बनारस की सुबह की पहली अंगड़ाई है। ये उस शख्स की फूंक है जिसने पत्थर के बुतों में भी जान डाल दी। आज हम किसी इंसान की नहीं, जैसे एक इबादत की बात कर रहे हैं। आज जिक्र है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का।
0: श्रोताओं, भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाश में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र हैं जिनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ सकती। उन्होंने एक ऐसे वाद्य यंत्र को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया जिसे कभी केवल मांगलिक कार्यों या शादियों तक सीमित समझा जाता था। शहनाई, जो कभी महलों की द्योड़ी पर बजने वाला एक मामूली सा साज हुआ करता था, उस्ताद की जादुई फूंक से वह शास्त्रीय संगीत की रानी बन गया।
1: जी हाँ, बिस्मिल्लाह खान महज एक संगीतकार नहीं थे, वे भारत की उस मिली जुली संस्कृति गंगा जमुनी तहजीब के सबसे बड़े प्रतीक थे, जहां मजहब की दीवारें संगीत के स्वरों में विलीन हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि पहले शहनाई सिर्फ शादियों में या महलों के गलियारों में ही बजती थी, लेकिन इस जादूगर ने उसे महलों की ड्योढ़ी से उठाकर सात समंदर पार ओपेरा हाउस तक पहुंचा दिया।
0: तो चलिए आज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन के उन पन्नों को पलटते हैं जिन पर सुरों की स्याही बिखरी है। बात करते हैं उस फकीर की जिसकी फूंक में खुदा का नूर था, एक ऐसा कलाकार जिसने शहनाई को शादियों के शोर से निकालकर दुनिया के सबसे बड़े कॉन्सर्ट हॉल की इबादत बना दिया।
1: आज हम सिर्फ एक संगीतकार की बात नहीं कर रहे, आज हम भारत की उस साझी तहजीब की बात कर रहे हैं जिसे दुनिया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से जानती है। एक ऐसा शख्स जिसने नमाज भी पढ़ी और माँ सरस्वती की आराधना भी की।
0: श्रोताओं, अक्सर लोग उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को बनारस का समझते हैं, हालांकि बनारस में उनकी रूह जैसे बस्ती थी, पर उनकी जड़ें बिहार के डुमराव की मिट्टी में हैं। 21 मार्च 1916 के दिन पैगंबर बख्श खान के घर खुशियां आईं। जन्म हुआ एक असाधारण प्रतिभा का।
1: हाँ, और नाम का किस्सा तो इतना मशहूर है कि आज भी लोग उसे चाव से सुनते हैं। उनका नाम तो कमरुद्दीन रखा गया था, लेकिन जब उनके दादा रसूल बख्श खान ने उस मासूम को देखा तो उनके कानों में जैसे कुदरत ने कुछ कहा। उन्होंने बच्चे को गोद में लिया और उनके मुंह से निकला बिस्मिल्लाह,
0: और बस वो लफ्ज उनके नाम के साथ ऐसा जुड़ा कि आज दुनिया उन्हें उसी नाम से जानती है। श्रोताओं, मानती भी है और पूछती भी है। उनके पूर्वज भोजपुर की रियासत के दरबारी संगीतकार थे, यानी शहनाई उनके पालने में ही रख दी गई थी। संगीत उनके लिए कोई शौक नहीं बल्कि विरासत था। उनकी माँ मिठन बाई ने उन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला। उनके पिता पैगंबर बख्श खान और दादा रसूल बख्श खान दोनों ही डुमराव रियासत के महाराजा केशव प्रसाद सिंह के दरबारी संगीतकार थे, तो उनके दादा और पिता ने उनका परिचय संगीत के स्वरों से कराया और बिस्मिल्लाह हुआ जैसे एक महानता के सफर का।
1: लेकिन वो विरासत, वो तालीम निखरी बनारस के घाटों में और मंदिरों में, और जहां वो महज 6 साल

0: में भी वे सभी बारीकियां और जटिलताएं पैदा की जा सकती हैं जो सितार या सरोद में होती हैं। उन्होंने राग रागनियों को शहनाई पर उतारा और उसे एक नया गौरव प्रदान किया।
1: आइए अब हम उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब के जीवन के उन गहरे पहलुओं को विस्तार देते हैं जो उन्हें एक कलाकार से ऊपर उठाकर एक युग पुरुष बनाते हैं। यहाँ जानते हैं उनके रागों की विशेषता, उनके प्रमुख शिष्यों और उनके जीवन के अनछुए बनारसी रंगों को। खान साहब की शहनाई में जो बात सबसे अलग थी वह थी उनकी मीड़, एक सुर से दूसरे सुर तक बिना टूटे पहुंचना और गमक। शास्त्रीय संगीत में शहनाई को एक कठोर वाद्य माना जाता था, लेकिन खान साहब ने उसे मानव कंठ जैसी कोमलता दी।
0: वे हर राग में निपुण थे, लेकिन राग भैरवी उनका प्राण था। कहा जाता है कि जब वे भैरवी बजाते थे तो सुनने वालों की आंखों से आंसू छलक आते थे। इसके अलावा राग बागेश्वरी, राग केदार, राग यमन और राग दरबारी पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी।
1: खान साहब ने केवल शुद्ध शास्त्रीय संगीत ही नहीं बल्कि बनारस की लोक गायकी, ठुमरी, कजरी और चेता को भी शहनाई पर उतारा। उनके द्वारा बजाई गई चेता सुनकर ऐसा लगता था जैसे बनारस के किसी घाट पर साक्षात वसंत उतर आया हो। इसके साथ ही खान साहब को सर्कुलर ब्रीदिंग में महारत हासिल थी।
0: ये एक ऐसी तकनीक थी जिसमें वे नाक से सांस लेते थे और मुंह से शहनाई में फूंक मारते थे। इससे संगीत का प्रवाह कभी टूटता नहीं था। वे बिना रुके कई मिनटों तक एक ही तान खींच सकते थे, जो फेफड़ों की अद्भुत क्षमता का प्रमाण था।
1: जी हाँ, तभी तो वो रच पाए इतिहास, आजाद भारत की पहली आवाज बनने का। दोस्तों, इतिहास का वो पन्ना कोई कैसे भूल सकता है जब 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर तिरंगा फहराया जाने वाला था। पंडित नेहरू ने खास तौर पर खान साहब को दिल्ली बुलाया।
0: बिस्मिल्ला खान साहब द्वारा लाल किले पर शहनाई वादन भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भावनात्मक घटना थी। तब लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक भाषण से पहले उस्ताद बिस्मिल्ला खान ने अपनी शहनाई से राग काफी बजाकर आजादी का स्वागत किया था। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद ये इच्छा जताई थी कि बिस्मिल्ला खान इस शुभ अवसर पर अपनी शहनाई बजाएं।
1: और इसके लिए बिस्मिल्ला खान साहब को विशेष रूप से मुंबई से दिल्ली बुलाया गया था। उन्हें भारतीय वायुसेना के विमान से लाया गया। बिस्मिल्ला खान ऐसे पहले भारतीय कलाकार थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत में अपनी कला का प्रदर्शन किया। यह घटना न केवल उनके संगीत करियर के लिए बल्कि भारत के स्वतंत्रता दिवस के जश्न के लिए भी एक मील का पत्थर मानी जाती है, जिसने शहनाई को राष्ट्र की आवाज बना दिया।
0: बिल्कुल, आजाद भारत की सुबह का स्वागत किसी भाषण से नहीं बल्कि खान साहब की शहनाई से हुआ था। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से राग काफी छेड़ा था। उस दिन पूरी दुनिया ने माना कि भारत की आजादी की गूंज शहनाई में बसी है। तब से ये परंपरा बन गई कि हर स्वतंत्रता दिवस पर उनकी शहनाई दूरदर्शन पर गूंजती रहती है।
1: श्रोताओं, जब उनकी शोहरत बढ़ी तो फिल्मों के दरवाजे भी खुले। 1959 में फिल्म आई गूंज उठी शहनाई। निर्देशक विजय भट्ट तो उनके इतने दीवाने थे कि उन्होंने फिल्म का पूरा प्लॉट ही शहनाई के इर्द गिर्द बुना। उनका बजाया गाना दिल का खिलौना हाय टूट गया आज भी लोगों को रुला देता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी कामयाबी के बाद भी खान साहब ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। उन्होंने सिर्फ दो फिल्में की, जिनमें से एक दक्षिण भारत की थी, कन्नड़ फिल्म सनदी अपन्ना। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बड़ी सादगी से कहा, मुझे फिल्मों की बनावटी दुनिया पसंद नहीं, वहां संगीत बिकता है और यहां संगीत जिया जाता है। उन्हें स्टूडियो की बंद दीवारों से ज्यादा गंगा का किनारा और खुला आसमान पसंद था। उनके लिए संगीत व्यापार नहीं बल्कि खुदा की इबादत थी। उन्होंने करोड़ों के ऑफर ठुकरा दिए सिर्फ अपनी सादगी और सुकून के लिए। तभी तो वो शहनाई के शहंशाह कहलाए।
0: उनकी सादगी का एक मशहूर किस्सा है कि वे अक्सर फटी हुई लुंगी पहन लेते थे। जब उनके शिष्यों ने कहा कि बाबा, आप इतने बड़े कलाकार हैं, भारत रत्न हैं, आपको ऐसे नहीं रहना चाहिए, तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, पगलो, मालिक से सुर मांगो, कपड़े नहीं। ये लुंगी तो रफू हो जाएगी, लेकिन अगर सुर फट गया तो उसे कोई रफू नहीं कर पाएगा। यह उनकी महानता का परिचायक था।
1: और श्रोताओं, अब बात करते हैं उनके बनारसी मिजाज की। उस्ताद का व्यक्तित्व पूरी तरह से बनारसी था। उनके जीवन में दिखावा नाम मात्र को भी नहीं था।
0: उन्हें बनारस की कचौरी, जलेबी और खास तौर पर मलाई और बनारस की खास मिठाई बहुत पसंद थी। वे अक्सर अपने घर के पास वाली दुकान से खुद नाश्ता मंगाते थे। उनकी दिनचर्या बड़ी दिलचस्प थी। वे सुबह गंगा में स्नान करते थे, सरस्वती मंदिर में माथा टेकते थे और फिर मस्जिद जाकर नमाज अदा करते थे। वे कहते थे, सुर ही मेरा अल्लाह है और सुर ही मेरी सरस्वती।
1: और श्रोताओं, बहुत कम लोग जानते हैं कि युवा अवस्था में खान साहब को कुश्ती का भी बहुत शौक था। वे पहलवानों का बहुत सम्मान करते थे और अक्सर अखाड़ों में जाकर उनकी हौसला अफजाई करते थे। खान साहब शुरू में विदेश जाने से बहुत डरते थे। उन्हें हवाई जहाज से डर लगता था। 1966 में जब भारत सरकार ने उन्हें एडिनबर्ग इंटरनेशनल फेस्टिवल के लिए कहा तो उन्होंने कई बहाने बनाए। फिर उन्होंने शर्त रख दी कि मैं तभी जाऊंगा जब मुझे और मेरी पूरी टीम को सरकारी खर्चे पर हज की यात्रा करवाई जाएगी। सरकार ने शर्त मान ली और जब वो एडिनबर्ग पहुंचे तो वहां के अखबारों ने लिखा, ये संगीत नहीं खुदा की आवाज है।
0: और फिर इसके बाद तो वो रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने मॉन्ट्रियल वर्ल्ड एक्सपो 1967, कांस आर्ट फेस्टिवल 1969 और ओसाका ट्रेड फेयर 1970 जैसे बड़े मंचों पर भारत का नाम रोशन किया। अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल में तो आज भी उनकी यादें बसी हुई हैं। लेकिन इतनी शोहरत और धन मिलने के बावजूद उनकी सादगी कभी कम नहीं हुई। वे ताउम्र बनारस की तंग गलियों में एक साधारण से मकान में रहे। खान साहब शायद भारत में अकेले ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने चारों शीर्ष नागरिक सम्मान प्राप्त किए। 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्म भूषण, 1980 में पद्म विभूषण और अंत में 2001 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्राप्त किया।
1: लेकिन इतने पुरस्कारों के बाद भी उनकी सादगी नहीं बदली। वो अक्सर बनारस में साइकिल रिक्शा पर घूमते हुए मिल जाते थे। एक बार एक विदेशी फैन ने उनसे कहा, खान साहब आप अमेरिका चलिए, मैं आपके लिए वहाँ पूरा बनारस बना दूंगा। और खान साहब ने बड़ी मासूमियत से पूछा, साहब सब तो ले आओगे पर मेरी गंगा मैया को वहाँ कैसे लाओगे? उनके लिए गंगा का पानी और बनारस की मिट्टी किसी स्वर्ग से बढ़कर थी।
0: अक्सर कहा जाता है श्रोताओं की एक कलाकार की असली पहचान वो नहीं जो वो खुद कहे, बल्कि वो है जो उसके समकालीन दिग्गज उसके बारे में कहें। और खान साहब के चाहने वाले तो पूरी दुनिया में फैले थे। सितार सरताज पंडित रविशंकर ने एक बार बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था, शहनाई को शादियों के पंडाल से निकालकर क्लासिकल म्यूजिक के स्टेज तक लाने का पूरा श्रेय सिर्फ बिस्मिल्ला खान को जाता है। उन्होंने इस साज को एक नई इज्जत बख्शी है।
1: और सिर्फ संगीतकार ही नहीं, सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर जी तो उन्हें बाबा कहकर बुलाती थी। उन्होंने एक बार कहा था, खान साहब की शहनाई में जो दर्द और मिठास है वो किसी इंसान की फूंक नहीं बल्कि खुदा का नूर लगता है। और आपको पता है सरोद सम्राट उस्ताद अमजद अली खान साहब ने उनके बारे में क्या कहा है? वे कहते हैं, खान साहब का संगीत व्याकरण नहीं बल्कि कविता है, वे सुरों से चित्र बना देते हैं।
0: जी हाँ, पश्चिमी दुनिया के मशहूर गिटारिस्ट एरिक क्लैप्टन उनकी मुरीद हुआ करते थे। उन्होंने एक बार जिक्र किया था कि वे अपने गिटार से वैसी ही कशिश पैदा करने की कोशिश करते हैं जैसी खान साहब की शहनाई में होती थी। यही उनकी महानता थी। चाहे वो पंडित नेहरू हों या बनारस की गलियों का कोई आम रिक्शे वाला, खान साहब सबके लिए एक समान थे। वे अक्सर कहते थे, सुर सबको जोड़ता है तोड़ता नहीं। उस्ताद बिस्मिल्ला खान सच्चे अर्थों में धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक थे। वे एक सच्चे मुसलमान थे जो पांचों वक्त की नमाज अदा करते थे, लेकिन साथ ही वे माँ सरस्वती के परम भक्त भी थे। काशी विश्वनाथ मंदिर की देवड़ी पर बैठकर शहनाई बजाना उनकी रोज की इबादत हुआ करती थी। वे कहते थे कि संगीत का कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने अपने जीवन से ये संदेश दिया और सुर और ताल किसी सीमा या मजहब में नहीं बंधे होते ये भी बताया।
1: उस्ताद साहब के रिलीज संगीत एल्बम्स की अगर हम बात करें तो द मैजिक शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान 1962, बिस्मिल्ला खान पंडित वी जी जोग के साथ 1962, राग बागेश्वरी राग सोहनी 1963, शहनाई रिसाइटल 1963, उस्ताद बिस्मिल्ला खान वेरियस रागास 1987 और मेघ मल्हार वॉल्यूम 1 1991 शामिल हैं।
0: इसके साथ ही उनके लोकप्रिय संग्रह द ग्रेटेस्ट हिट्स ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, प्लेटिनम वॉल्यूम 1 कजरी, द रेन राग 2016, शादी की शहनाई वॉल्यूम 1 एंड 2 1995, रूबरू वॉल्यूम 1 एंड 2 2004, इबादत रागिनी यामिनी लाइव एट द बारबिकन सेंटर 1994। इसके साथ ही उनके द्वारा बजाए गए रागों में श्याम कल्याण और शंकरा बेहद शांत और आध्यात्मिक माने जाते हैं। उस्ताद के पास करोड़ों की संपत्ति हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अपना सारा पैसा गरीबों, रिश्तेदारों और ज़रूरतमंदों की मदद में खर्च कर दिया। उनके घर में अक्सर 40 से 50 लोग एक साथ खाना खाया करते थे। वे एक संयुक्त परिवार के स्तंभ थे।
1: 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की आयु में इस महान संगीत साधक ने अपनी अंतिम सांस ली। उनके निधन पर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ बनारस में सुपुर्द खाक किया गया। उनकी आखिरी इच्छा के अनुसार उनकी प्रिय शहनाई को भी उनके साथ ही दफनाया गया। उनकी मृत्यु के बाद भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था, जो आमतौर पर केवल बड़े राजनेताओं के लिए होता है। यह इस बात का प्रमाण था वे एक संगीतकार नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा का हिस्सा थे।
0: बिस्मिल्लाह खान साहब ने हमें सिखाया कि सच्ची कला बाजार में नहीं बिकती, वे साधना की कोख से जन्म लेती है। उनके शहनाई की गूंज आज भी हर भारतीय शादी की सुबह, हर मंदिर की आरती और हर मस्जिद की अजान के बीच कहीं ना कहीं महसूस की जा सकती है। श्रोताओं, वे शून्य से शिखर तक पहुंचने की एक ऐसी दास्तां है जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी।
1: शहनाई को अपनी बेगम कहने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आज हमारे बीच सशरीर नहीं है, लेकिन उनकी शहनाई की तान आज भी हवाओं में तैरती हुई महसूस होती है। उन्होंने हमें सिखाया है कि ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़े कैसे रहा जाता है। उन्होंने संगीत को इबादत बनाया और इबादत को संगीत। उनकी विरासत हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी कि कला महज प्रदर्शन की वस्तु नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब तक गंगा की लहरें काशी के घाटों से टकराती रहेंगी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई भी गूंजती रहेगी।

0: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम कला कल्लोलिनी, जो आज केंद्रित था उस्ताद बिस्मिल्ला खान पर। कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाठक, आलेख संदीप शर्मा का था, वाचन स्वर विजयकांत नायक
1: और मैं डॉक्टर गौसिया।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद अमेरिका और भारत में भी अपने शिष्यों से सदा वार्तालाप किया करते थे। उन वार्तालापों को लिपिबद्ध किया गया है। इससे हमें विभिन्न विषयों पर स्वामी जी द्वारा दिए गए व्याख्यान तथा विचारों के बारे में मालूम पड़ता है।
1: उनके शिष्य सभी विषयों पर उनसे प्रश्न पूछते और स्वामी जी भी बिना थके उन प्रश्नों का उत्तर देते। उनके उत्तरों से पता चलता है कि हर विषय पर वे गहन चिंतन मनन करते थे।
2: तुम दूसरों को मनुष्य बनने का उपदेश देते हो, पर उन्हें अच्छा भोजन नहीं दे सकते। मैं पिछले 4 वर्षों से इस समस्या पर विचार कर रहा हूं। क्या गेहूं से पिटे हुए चावल, चिवड़ा जैसी कोई चीज बनाई जा सकती है? मैं इस पर प्रयोग करना चाहता हूं, तब हम प्रतिदिन एक भिन्न प्रकार का भोजन प्राप्त कर सकती हैं। पीने के जल के संबंध में मैंने एक छन्नी की खोज की जो हमारे देश के लिए उपयुक्त हो सके। मुझे एक कड़ाही जैसा चीनी मिट्टी का बर्तन मिला जिसमें पानी निकाला गया और सभी कीटाणु चीनी मिट्टी की कढ़ाई में रह गए, किंतु क्रमशः छन्नी स्वयं सभी प्रकार के कीटाणुओं का जमघट बन जाएगी। सभी प्रकार की छन्नियों में यह खतरा रहता है। निरंतर खोज करने के बाद एक उपाय विदित हुआ जिससे पानी का अभिस्रावण किया गया और उसमें ऑक्सीजन लाई गई। इसके बाद जल इतना शुद्ध हो गया कि इसके प्रयोग के फलस्वरूप स्वास्थ्य में सुधार सुनिश्चित है।
3: हम ईश्वर के पास कैसे पहुंच सकते हैं?
2: जब धाय बच्चे को बगीचे में ले जाती है और उसे खिलाती है, माँ उसे भीतर आने के लिए कहती है। बच्चा खेल में मग्न है और कहता है, मैं नहीं आऊंगा, खाने की मेरी इच्छा नहीं है। थोड़ी ही देर में बच्चा अपने खेल से थक जाता है और कहता है, मैं माँ के पास जाऊंगा। धाय कहती है, ये लो नई गुड़िया। पर बच्चा कहता है, अब मुझे गुड़ियों की तनिक भी इच्छा नहीं है, मैं तो माँ के पास जाऊंगा। जब तक वो चला नहीं जाता रोता रहता है। हम सभी बच्चे हैं, ईश्वर माँ है। हम लोग धन संपत्ति और इन सभी चीजों की खोज में डूबे हुए हैं, किंतु एक समय ऐसा आएगा जब हम जाग उठेंगे और ये प्रकृति हमें और खिलाने का प्रयत्न करेगी। तब हम कहेंगे, नहीं, मैंने बहुत पाया, अब मैं ईश्वर के पास जाऊंगा।
3: यदि हम ईश्वर से अभिन्न हैं और सदैव एक हैं, तो क्या हमारा कोई व्यक्तित्व नहीं है?
2: हाँ, है, वो ईश्वर है। हमारा व्यक्तित्व परमात्मा है। तुम्हारा ये इस समय का व्यक्तित्व वास्तविक नहीं है, तुम सच्चे व्यक्तित्व की ओर अग्रसर हो रहे हो। व्यक्तित्व का अर्थ है अविभाज्यता। जिस दशा में हम हैं उस दशा को तुम व्यक्तित्व कैसे कह सकते हो? 1 घंटे भर तुम एक ढंग से सोचते हो और दूसरे घंटे में दूसरे ढंग से और 2 घंटे पश्चात अन्य ढंग से। व्यक्तित्व तो वो है जो बदलता नहीं है। यदि वर्तमान दशा शाश्वत काल तक बनी रहे तो ये बड़ी भयावह स्थिति होगी। तब तो चोर सदैव चोर ही बना रहेगा और अधर्मी अधर्मी ही। यदि शिशु मरेगा तो वो शिशु ही बना रहेगा। वास्तविक व्यक्तित्व तो वो है जो कभी परिवर्तित नहीं होता है और ना कभी परिवर्तित होगा ही। वो हमारे अंतर में निवास करने वाला ईश्वर है।
3: स्वामी जी, किस कला को आप श्रेष्ठ मानते हैं, पूरब की या पश्चिमी कला?
2: यूनानी कला का रहस्य है प्रकृति के सूक्ष्मतम ब्योरों तक का अनुकरण करना, पर भारतीय कला का स्वरूप है आदर्श की अभिव्यक्ति करना। यूनानी चित्रकार की समस्त शक्ति कदाचित मांस के एक टुकड़े को चित्रित करने में ही व्यय हो जाती है, और वो उसमें इतना सफल होता है कि यदि कुत्ता उसे देख ले तो उसे सचमुच का मांस समझकर खाने दौड़ाए। किंतु इस प्रकार प्रकृति के अनुकरण में क्या गौरव है? कुत्ते के सामने यथार्थ मांस का एक टुकड़ा ही क्यों ना डाल दिया जाए? दूसरी ओर आदर्श की अतींद्रिय अवस्था को अभिव्यक्त करने की भारतीय प्रवृत्ति भद्दे और कुरूप के चित्रण में विकृत हो गई है। वास्तविक कला की उपमा दी जा सकती है जो कि पृथ्वी से उत्पन्न होती है, उसी से अपना खाद्य पदार्थ ग्रहण करती है, उसके संस्पर्श में रहती है, किंतु फिर भी उससे ऊपर ही उठी रहती है। इसी प्रकार कला का भी प्रकृति से संपर्क होना चाहिए, क्योंकि ये संपर्क न रहने पर कला का अधःपतन हो जाता है। पर साथ ही कला का प्रकृति से ऊंचा उठा रहना भी आवश्यक है। कला सौंदर्य की अभिव्यक्ति है, प्रत्येक वस्तु कलापूर्ण होनी चाहिए।
1: स्वामी जी सभी कलाओं में नाट्य कला को श्रेष्ठ मानते थे। वे कहते हैं,
2: कला ध्यान प्रधान वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। नाटक सब कलाओं में कठिनतम है, उनमें दो चीजों को संतुष्ट करना पड़ता है, पहले कान, दूसरे आंखें। दृश्य का चित्रण करने में यदि एक ही चीज का अंकन हो जाए तो काफी है, परंतु अनेक विषयों का चित्रांकन करके भी केंद्रीय रस अक्षुण्य रख पाना बहुत कठिन है। दूसरी मुश्किल चीज है मंच व्यवस्था, यानी विविध वस्तुओं को इस प्रकार सजाना कि केंद्रीय रस अक्षुण्य रहे।
3: स्वामी जी, हम तो मनुष्य हैं, हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? कब हम ईश्वर के साथ एकाकार हो पाएंगे?
2: मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनो, तब तुम देखोगे कि वे सब बाकी चीजें स्वयं तुम्हारा अनुसरण करेंगी। परस्पर के घृणित द्वेष भाव को छोड़ो और सदेश, सदुपाय, सत्साहस और सद्वीर्य का अवलंबन करो। तुमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो अपनी कीर्ति यहीं छोड़ जाओ। तुलसी आयो जगत में, जगत हसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो आप हसे जग रोए। एक बात विचार कर देखो, मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्यों को बनाते हैं? मनुष्य रुपया पैदा करता है या रुपया मनुष्यों को पैदा करता है? मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है या कीर्ति और नाम मनुष्य पैदा करते हैं? अगर ऐसा कर सको तब तो तुम मनुष्य हो, अन्यथा तुम मनुष्य किस बात के?
0: स्वामी जी अमेरिका के ब्रुकलिन शहर में श्रोताओं के सम्मुख बोल रहे थे। भारत की नारी विषय पर उन्होंने कहा था,
2: नारीत्व का आदर्श भारत की उस आर्य जाति में केंद्रित है जो संसार के इतिहास में प्राचीनतम है। उस जाति में नर और नारी पुरोहित थे, अथवा जैसा वेद उन्हें कहते हैं वे सहधर्मी थे। प्रत्येक परिवार का अपना अग्निकुंड अथवा वेदी थी, जिस पर विवाह के समय विवाह की अग्नि प्रज्वलित की जाती थी और उसे उस समय तक जीवित रखा जाता था जब तक कि पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु नहीं हो जाती थी, और तब उसकी चिंगारी से चिता को अग्नि दी जाती थी। यहां पति और पत्नी एक साथ यज्ञ में बलि चढ़ाते थे, और ये भावना यहां तक पहुंच गई थी कि पुरुष अकेला पूजा भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये माना जाता था कि केवल ये अधूरा है और इसी कारण कोई अविवाहित मनुष्य पुरोहित नहीं बन सकता था। ये बात प्राचीन रोम और यूनान के बारे में भी सत्य है।
1: कालांतर में नारी के पतन का कारण समझाते हुए उन्होंने कहा था,
2: पर एक पृथक और विशिष्ट पुरोहित वर्ग के उदय हो जाने से इन सब देशों में नारी का सह पौरोहित्य पीछे पड़ जाता है। पहले ये सेमिटिक रक्त वाली असीरियन जाति थी जिसने इस सिद्धांत की घोषणा की थी कि लड़कियों को विवाहित होने पर भी न कोई हक और न कोई अधिकार है। ईरानियों ने बेबीलोनिया के इस विचार को विशेष गहराई के साथ हृदयंगम किया और उनके द्वारा ये रोम में और यूनान में पहुंचाया गया और नारी की स्थिति का सभी स्थानों पर पतन हुआ।
1: समाज में परिवर्तन आया और स्त्री पुरुष समीकरण भी बदल गया। स्वामी जी ने समझाया,
2: ऐसा होने का एक दूसरा कारण था, विवाह की प्रणाली में परिवर्तन। प्राचीनतम प्रणाली मात्र केंद्रित थी, अर्थात उसमें केंद्र मां थी और जिसमें लड़कियां उसके पद पर प्रतिष्ठित होती थी। इससे बहुपतित्व की एक विचित्र प्रथा उत्पन्न हुई जिसमें प्रायः 5 या 6 भाई एक पत्नी से विवाह करते थे। वेदों में भी इस प्रकार के संकेत मिलते हैं कि जब कोई पुरुष निसंतान मर जाता था तो उसकी विधवा को उस समय तक दूसरे पुरुष के साथ रहने की अनुमति थी जब तक कि वो मां न बन जाए। होने वाले बच्चे अपने पिता के नहीं वरन उसके मृत पति के होते थे। आगे चलकर विधवा को पुनः विवाह करने की अनुमति हो गई थी, जिसका आधुनिक विचार निषेध करता है।
0: जौहर प्रथा पर स्वामी जी ने कहा,
2: पर इन उद्भावनाओं के साथ साथ राष्ट्र में वैयक्तिक पवित्रता का एक अति तीव्र विचार उदय हुआ। वेद प्रत्येक पृष्ठ पर वैयक्तिक पवित्रता की शिक्षा देते हैं। इस विषय में नियम अत्यंत कठोर है। प्रत्येक लड़का और लड़की विश्वविद्यालय भेजा जाता था, जहां वे अपने 20वें अथवा 30वें वर्ष तक अध्ययन करते थे। यहां तनिक सी भी अपवित्रता का दंड भी प्रायः निर्दयता पूर्वक दिया जाता था। वैयक्तिक पवित्रता के इस विचार

0: लपटों में जल गई। ये शानदार उदाहरण भारत में आज तक चला आया है। जब किसी पत्र पर 74,500 लिखा होता है तो उसका अर्थ यह होता है कि कोई अनाधिकृत रूप से पत्र को पढ़ेगा वो उस अपराध के समान विशाल अपराध का दोषी होगा जिसने चित्तौड़ की उन पवित्र नारियों को मौत के मुंह में भेजा था।
1: नारी की स्थिति धीरे धीरे और बिगड़ती गई। हर गुनाह का दोष उस पर मढ़ा जाने लगा।
0: इसके बाद भिक्षुओं सन्यासियों का युग आता है। ये बौद्ध धर्म के उदय के साथ आया। ये धर्म कहता है कि केवल भिक्षु ही निर्वाण प्राप्त कर सकता है, जो हेवन के समान कोई वस्तु है। फल ये हुआ कि संपूर्ण भारत एक अत्यंत विशाल मठ बन गया। केवल एक उद्देश्य था, एक सतत संघर्ष था, पवित्र रहना। सब दोष नारी के सिर मढ़ा गया। लोकोक्तियां भी उनके विरुद्ध चेतावनी देने लगी। उनमें से एक थी, नरक का द्वार क्या है? पर इसका उत्तर था नारी। दूसरी थी, वो जंजीर क्या है जो हमें मिट्टी से बांधती है? नारी। एक और थी, अंधों में सबसे अधिक अंधा कौन है? वो जो नारी द्वारा ठगा जाता है।
2: स्वामी जी पूरब और पश्चिम की तुलना करते हैं। वे कहते हैं पश्चिम के मठों में भी ऐसे ही विचार पाए जाते हैं। सब मठ व्यवस्थाओं के विकास का अर्थ सदा नारियों की अवहेलना रहा है।
0: पर अंततः नारीत्व की एक दूसरी कल्पना का उदय हुआ। पश्चिम में उसे अपना आदर्श पत्नी में और भारत में मां में मिला। पर यह ना सोचो कि यह परिवर्तन पुरोहितों के द्वारा हुआ। मैं जानता हूं कि वे सारे संसार की प्रत्येक वस्तु पर सदा अपना दावा रखते हैं, और मैं ये कहता हूं यद्यपि मैं स्वयं एक पुरोहित हूं, मैं प्रत्येक धर्म और देश के मसीहा के सामने नत जानू हूं, पर निष्पक्षता मुझे यह कहने को बाध्य करती है कि यहां पश्चिम में नारी का उत्थान जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे लोगों और क्रांतिकारी फ्रांसीसी दार्शनिकों के द्वारा किया गया। धर्म ने निसंदेह कुछ किया है, पर सब नहीं।
2: स्वामी शुद्धानंद स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रतिष्ठित बेलूर मठ के एक सन्यासी थे। उन्होंने अपने संस्मरण में स्वामी जी के व्यक्तित्व का एक नया पक्ष उजागर किया है।
3: एक दिन अपराह्न काल में स्वामी जी मठ के बरामदे में हम लोगों को लेकर वेदांत पढ़ाने बैठे। संध्या होने ही वाली थी। स्वामी रामकृष्णानंद को इससे कुछ दिन पहले स्वामी जी ने प्रचार कार्य के लिए मद्रास भेजा था, इसलिए उस समय मठ में पूजा आरती आदि उनके एक दूसरे गुरु भ्राता संभालते थे। आरती में जो लोग उनकी सहायता करते थे उन्हें भी लेकर स्वामी जी वेदांत पढ़ाने बैठे थे। उसी समय उक्त गुरु भ्राता आकर नवीन सन्यासी ब्रह्मचारियों से कहने लगे, चलो जी चलो, आरती करनी होगी, चलो। उस समय एक ओर स्वामी जी के आदर्श से सभी वेदांत पढ़ने में लगे हुए थे और दूसरी ओर इनके आदेश से ठाकुर जी की आरती में सहयोग देना चाहिए। अतः नवीन साधु लोग कुछ समय असमंजस में पड़ गए। तब स्वामी जी ने अपने गुरु भ्राता को संबोधित कर उत्तेजित होकर कहने लगे, ये जो वेदांत पढ़ा जा रहा था ये क्या ठाकुर की पूजा नहीं है? केवल एक चित्र के सामने जलती हुई बत्ती घुमाना और झांझ पीटना, मालूम होता है इसी को तुम भगवान की आराधना समझते हो। तुम्हारी बुद्धि बड़ी ओछी है। इस तरह कहते कहते जरा और भी अधिक उत्तेजित हो। इस प्रकार वेदांत पाठ में बाधा उपस्थित करने के कारण कुछ और भी अधिक कड़े वाक्य कहने लगे। फल यह हुआ कि वेदांत पाठ बंद हो गया। कुछ देर बाद आरती भी समाप्त हो गई, किंतु आरती के बाद उक्त गुरु भ्राता चुपके से कहीं चले गए। तब तो स्वामी जी भी अत्यंत व्याकुल होकर बारंबार, वो कहां गया? क्या वो मेरी काली खाकर गंगा में तो नहीं डूब गया?
1: सब लोग डर गए, सभी उस युवा सन्यासी को ढूंढने लगे,
3: इस तरह कहने लगे और सभी लोगों को उन्हें ढूंढने के लिए चारों ओर भेजा। बहुत देर बाद मठ की छत पर चिंतित भाव से उन्हें बैठे हुए देखकर एक व्यक्ति उन्हें स्वामी जी के पास ले आए। उस समय स्वामी जी का भाव एकदम परिवर्तित हो गया। उन्होंने उनका कितना दुलार किया।

0: इतनी मधुर वाणी में उनसे बातें करने लगे। हम लोग स्वामी जी का गुरु भाई के प्रति अपूर्व प्रेम देखकर मुग्ध हो गए। तब हम लोगों को मालूम हुआ कि गुरु भाइयों के ऊपर स्वामी जी का अगाध विश्वास और प्रेम है। उनकी आंतरिक चेष्टा यही रहती थी कि वे लोग अपनी निष्ठा को सुरक्षित रखकर अधिकाधिक उन्नत एवं उदार बन सके। बाद में स्वामी जी के श्रीमुख से अनेक बार सुना है कि स्वामी जी जिनकी भर्त्सना करते थे वे ही उनके विशेष प्रीति पात्र थे।
1: इस घटना के बारे में जानकारी हमें बेलूर मठ में रखी डायरी से मिली। शुद्धानंद कहते हैं,
0: एक दिन बरामदे में टहलते टहलते उन्होंने मुझसे कहा, देखो मठ की एक डायरी रखना और प्रत्येक सप्ताह मठ की रिपोर्ट भेजना। स्वामी जी के इस आदेश का मैंने और बाद में अन्य व्यक्तियों ने भी पालन किया था। अभी भी मठ की वो आंशिक छोटी डायरी मठ में सुरक्षित है। उससे अभी भी मठ के क्रम विकास और स्वामी जी के संबंध में बहुत से तथ्य संग्रह किए जा सकते हैं।
2: बेलूर मठ की डायरी से हमें कुछ और प्रश्नोत्तर मिले हैं, आइए सुने।
3: हमारे चरित्र का सर्वोच्च आदर्श क्या होना चाहिए?
4: त्याग।
3: बौद्ध धर्म ने अपने दाय के रूप में भ्रष्टाचार कैसे छोड़ा?
4: बौद्धों ने प्रत्येक भारतवासी को भिक्षु या भिक्षुणी बनाने का प्रयत्न किया था, परंतु सब लोग तो वैसे नहीं हो सकते। इस तरह किसी भी व्यक्ति के साधु बन जाने से भिक्षु भिक्षुणियों में क्रमशः शिथिलता आती गई। और भी एक कारण था, धर्म के नाम पर तिब्बत तथा अन्यान्य देशों के बर्बर आचारों का अनुकरण करना। वे इन स्थानों में धर्म प्रचार के हेतु गए और इस प्रकार उनके भीतर उन लोगों के दूषित आचार प्रवेश कर गए। अंत में उन्होंने भारत में इन सब आचारों को प्रचलित कर दिया।
3: ईश्वर की सेवा करने की क्या आवश्यकता है?
4: यदि तुम एक बार ईश्वर के अस्तित्व को मान लेते हो तो उनकी सेवा करने के यथेष्ट कारण पाओगे। सभी शास्त्रों के मतानुसार भगवत सेवा का अर्थ है स्मरण। यदि तुम ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हो तो तुम्हारे जीवन में पग पग पर उनको स्मरण करने का हेतु सामने आएगा।
5: क्या माया अद्वैतवाद से भिन्न है?
4: नहीं, दोनों एक ही हैं। मायावाद को छोड़ अद्वैतवाद की और कोई भी व्याख्या संभव नहीं।
3: कभी कभी जब से थकान मालूम होने लगती है तब क्या उसकी जगह स्वाध्याय करना चाहिए या उसी पर आरूढ़ रहना चाहिए?
4: दो कारणों से जब मैं थकान मालूम होती है, कभी कभी मस्तिष्क थक जाता है और कभी कभी आलस्य के परिणाम स्वरूप ऐसा होता है। यदि प्रथम कारण है तो उस समय कुछ क्षण तक जप छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हठ पूर्वक जप में लगे रहने से विभ्रम या विक्षिप्तावस्था आ जाती है। परंतु यदि द्वितीय कारण है तो मन को बलात् जप में लगाना चाहिए।
3: कभी कभी जप करते समय पहले आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन तब आनंद के कारण जप में मन नहीं लगता। ऐसी स्थिति में क्या जप जारी रखना चाहिए?
4: हाँ, वो आनंद आध्यात्मिक साधना में बाधक है, उसे रसास्वादन कहते हैं, उससे ऊपर उठना चाहिए।
5: यदि मन इधर उधर भागता रहे तब भी क्या देर तक जप करते रहना ठीक है?
4: हाँ, उसी प्रकार जैसे अगर किसी बदमाश घोड़े की पीठ पर कोई अपना आसन जमाए रखे तो वो उसे वश में कर लेता है।
2: भगिनी निवेदिता भी अक्सर स्वामी जी से अपनी शंका दूर करने के लिए प्रश्न पूछा करती थी। उन्हीं की डायरी से ये प्रसंग मिला है।
6: पृथ्वीराज एवं चंद जिस समय कन्नौज में स्वयंवर के लिए जाने को प्रस्तुत हुए उस समय उन्होंने किसका छद्म वेश धारण किया था? मुझे याद नहीं आ रहा है।
4: दोनों ही भाट का वेश धारण करके गए थे।
6: क्या पृथ्वीराज ने संयुक्ता के साथ इसीलिए विवाह करना चाहा था कि वह अलौकिक रूपवती थी तथा उसके प्रतिद्वंदी की पुत्री थी? संयुक्ता की परिचारिका होने के लिए क्या उन्होंने अपनी एक दासी को सिखा पढ़ा कर वहां भेजा था? और क्या इसी वृद्धा धात्री ने राजकुमारी के हृदय में पृथ्वीराज के प्रति प्रेम का बीज अंकुरित किया था?
4: दोनों ही परस्पर के रूप गुणों का वर्णन सुनकर तथा चित्र अवलोकन कर एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हुए थे। चित्र दर्शन के द्वारा नायक नायिका के हृदय में प्रेम का संचार भारत की एक प्राचीन रीति है।
6: गोप बालकों के बीच में कृष्ण का प्रतिपालन कैसे हुआ?
0: ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि कृष्ण कंस को सिंहासन से विच्युत करेंगे, इस भय से कि जन्म लेने के बाद कृष्ण कहीं गुप्त रूप से प्रतिपालित हो, दुराचारी कंस ने कृष्ण के माता पिता को कैद में डाल रखा था। यद्यपि वे कंस की बहन और बहनोई थे तथा इस प्रकार का आदेश दिया कि उस वर्ष से राज्य में जितने बालक पैदा होंगे उन सब की हत्या की जाएगी। अत्याचारी कंस के हाथ से रक्षा करने के लिए कृष्ण के पिता ने उन्हें गुप्त रूप से यमुना पार पहुंचाया था।
6: उनके जीवन के इस अध्याय की परिसमाप्ति किस प्रकार हुई थी?
0: अत्याचारी कंस के द्वारा आमंत्रित होकर वे अपने भाई बलदेव तथा अपने पालक पिता नंद के साथ राजसभा में पधारे। अत्याचारी ने उनकी हत्या करने का षड्यंत्र रचा था, पर उन्होंने अत्याचारी का वध किया, किंतु स्वयं राजा न बनकर कंस के निकटतम उत्तराधिकारी को उन्होंने राज सिंहासन पर बिठाया। उन्होंने कभी कर्म के फल को स्वयं नहीं भोगा।
6: इस समय की किसी नाटकीय घटना का उल्लेख क्या आप कर सकते हैं?
0: इस समय का जीवन अलौकिक घटनाओं से परिपूर्ण था। बाल्यावस्था में वे अत्यंत ही चंचल थे। चंचलता के कारण उनकी गोपिका माता ने एक दिन उन्हें दधि मंथन की रस्सी से बांधना चाहा, किंतु अनेक रस्सियों को जोड़कर भी वे उन्हें बांधने में समर्थ न हुई। तब उनकी दृष्टि खुली और उन्होंने देखा कि जिनको वे बांधने जा रही हैं उनके शरीर में समग्र ब्रह्मांड अधिष्ठित है। डरकर कांपती हुई वे उनकी स्तुति करने लगी। तब भगवान ने उन्हें पुनः माया से आवृत किया और एकमात्र वही बालक उन्हें दृष्टिगोचर हुआ।
1: स्वामी जी ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा,
0: देव श्रेष्ठ ब्रह्मा को यह विश्वास न हुआ कि परम ब्रह्म ने ही गोप बालक का रूप धारण किया है। इसलिए परीक्षा के निमित्त एक दिन उन्होंने समस्त गायों को तथा गोप बालकों को चुराकर एक गुफा में निद्रित कर रखा, किंतु वहां से लौटकर उन्होंने देखा कि वे ही गाय तथा गोप बालक कृष्ण के चारों ओर विद्यमान है। वे फिर उनको भी चुरा कर ले गए और उन्हें भी छिपा कर रखा, किंतु लौटने पर उन्हें फिर वे ज्यों के त्यों दिखाई देने लगे। तब उनके ज्ञान नेत्र खुले, उन्होंने देखा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड तथा सहस्त्र सहस्त्र ब्रह्मा कृष्ण की देह में विराजमान है।
2: स्वामी जी कहानी सुनाते सुनाते उसकी व्याख्या भी करते रहते थे ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।
0: कालिया नाग ने यमुना के जल को विषाक्त कर डाला था, इसलिए उन्होंने उसके फन पर नृत्य किया था। उनके द्वारा इंद्र की पूजा बंद किए जाने के फलस्वरूप कुपित होकर इंद्र ने जब इस प्रकार प्रबल वेग से जल बरसाना प्रारंभ किया कि समस्त ब्रजवासी मानो उसमें डूब कर मर जाएंगे, तब कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया। कृष्ण ने एक अंगुली से छत्र की तरह गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठाकर धारण किया और उसके नीचे सभी ने आश्रय लिया। बाल्यकाल से ही वे नाग पूजा तथा इंद्र पूजा के विरोधी थे। इंद्र पूजा एक वैदिक अनुष्ठान है। गीता में सर्वत्र यह स्पष्ट है कि वे वैदिक अनुष्ठानों के पक्षपाती नहीं थे। अपने जीवन में इसी समय उन्होंने गोपियों के साथ लीला की थी। उस समय उनकी आयु 11 वर्ष की थी।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। उस समय के दरबारियों के लिए राजकुमारी का दहेज वस्तुओं का एक अजीब संग्रह था। चाय का एक संदूक और साथ चट्टानी मच्छरों से भरे द्वीपों का एक समूह जिसे बंबई के नाम से जाना जाता था। लंदन के सबसे प्रसिद्ध डायरी लेखक और गपशप के शौकीन सैमुअल पेपिस इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने बंबई को एक बेचारा छोटा सा द्वीप कहकर खारिज कर दिया और कड़वाहट के साथ भविष्यवाणी की कि यह राजा के लिए दुख के सिवा कुछ नहीं लाएगा। उस समय इन द्वीपों की कीमत इतनी कम आंकी गई थी कि क्राउन ने अंततः इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड प्रति वर्ष के मामूली किराए पर पट्टे पर दे दिया। हालांकि यही बेचारा छोटा सा द्वीप ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक रणनीतिक केंद्र बना। इसने डच और पुर्तगाली प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए एक आदर्श आधार प्रदान किया और अंततः अफीम और चाय के व्यापार के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य किया, जिसने औद्योगिक क्रांति को गति दी। इस बीच चाय के उस एक संदूक ने एक सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत कर दी। कैथरीन से पहले चाय एक रहस्यमयी चीनी पेय थी जो केवल विशेष कॉफी हाउसों में बेची जाती थी। उनके आने के बाद यह एक राष्ट्रीय जुनून बन गई। 1666 तक 1 पाउंड चाय की कीमत बंबई के पूरे वार्षिक किराए के बराबर हो गई थी। इतिहास ने साबित किया कि पेप्स गलत थे, जिसे उन्होंने एक बोझ समझा था। वे वास्तव में एक वैश्विक महाशक्ति का जन्म था। इस शाही दहेज के बिना लंदन में शायद कभी चाय का स्वाद विकसित नहीं होता और बंबई के वे मछली पकड़ने वाले गांव कभी ब्रिटिश राज के मुकुट का रत्न नहीं बन पाते।
1: तो अभी आपने सुने हमारी सुबह की सभा के कार्यक्रम। अब ये सभा यहीं समाप्त होती है, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आपका अपना रेडियो FM 90.8 मेगाहर्ट्ज़, रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत भारती। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गायन सुनंदा शर्मा का और उसके बाद प्रस्तुति दी जाएगी सितार वादन की अलीफ लैला द्वारा। तो आइए पहले आपको सुनवाते हैं गायन सुनंदा शर्मा का।
3: थोड़ी सी 2-3 लाइंस में ये बताना चाहूंगी। बचपन हिमाचल में था, पिताजी से शिक्षा ली और पंजाब के गुणियों से मैंने बचपन से सीखा। कुछ बंदिशें थी जो मैंने बचपन से उनसे सीखी थी। जब मैं बनारस में अप्पा जी के पास, श्रीमती गिरजा देवी की जी के पास गई, तो वो जब शिक्षा शुरू हुई तो उन्होंने बोला, बेटा एक बंदिश है, उसके बोल थोड़े पंजाबी के हैं लेकिन अपभ्रंश हो गया है। तो उन्होंने वो बंदिश मुझे सिखानी शुरू की। मैंने कहा, अप्पा जी ये तो मैंने बचपन में सीखी है, तो कैसे बंदिशें ट्रैवल करती हैं? वो पंजाब की बंदिश थी और बनारस में गाई जाती थी। उन्होंने बोला, हमारे गुरु जी बहुत पुराने टाइम में कहीं से सीखे थे। तो क्यों अप्पा जी के पास बहुत रेयर चीज़ें थी जिसमें ख्याल और क्लासिकल और सेमी क्लासिकल, जिसमें ख्याल, टप्पा, टप ख्याल, गुल, बैंत, नक्श, रुबाई, कॉल, कलवाना, ये सब कितनी रेयर चीज़ें जो एक एक एक एक गीत, धरू, एक एक एक एक चीज़ें थी जो अप्पा जी के पास थी और प्रसाद स्वरूप मुझे उनसे मिली हैं। तो मैं वो बंदिश से शुरू करूँगी जो मेरे लिए बड़ा अचरज का विषय था कि कहाँ मैं पंजाब में ये सीख रही थी और फिर मैं इसको गा भी नहीं रही थी। फिर अप्पा जी के पास ये थोड़ा सीखा जाकर, तो फिर अप्पा जी ने बोला, अच्छा अच्छा तो इसके बोल ये हैं। और उनका बड़प्पन देखिए, कुछ भी शब्द होते थे, अरे पंजाबी है तो इसका सही क्या होगा, तो पूछती थी सबसे। तो इतना गुरु होने के बावजूद भी कई बार बोलती थी, जाओ अपने नाना जी से पंजाबी के पुराने शब्द पूछ के लाओ या पंजाब के लोगों से। तो ये खोजी प्रकृति उनकी थी। तो मैं उसी एक बंदिश से शुरू करूँगी और उसके बोल भी मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस एक बार फिर, तबले पर जो मेरे साथ संगत करेंगे वो वैसे तो डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर, पंजाब घराने के बहुत गुणी कलाकार, डॉक्टर जयशंकर, एक बार स्वागत करें। और भोपाल के ही हमारे माजिद भाई मेरे साथ संगत करेंगे, माजिद खान साहब, हारमोनियम पर। भोपाल की ही दो बच्चियां मेरे साथ तानपुरे पे संगत करेंगी, अंतरा, तो मेरे साथ पहले भी बैठी हैं अंतरा, और आप अश्लेषा। और मैं सुनंदा शर्मा, आपका बड़ों का आशीष और छोटों से स्नेह चाहते हुए मैं इस सफ़र को शुरू करती हूँ। इसमें मैंने पहला राग जो चुना है, जो मैंने कहा ना मेरे अचरज का विषय था, राग भीम पलासी की ये बंदिश, जिसके बोल हैं, साडे मन भावदियाँ दिलबर यार सजन दिया रमजा, हमारे दिल को मेरा दिलबर और जो यार है, मेरा रब, मेरा ईश्वर, मेरा प्रेमी, मेरा मुर्शिद, उसकी हर बात मेरे दिल को अच्छी लगती है। त्रिंजन एक फेस्टिवल होता है नॉर्थ में, त्रिंजना दे विच नचन सहेलियां, एक रोवन एक गावंदियां। त्रिंजनों में सहेलियां नाच रही हैं, कोई कढ़ाई कर रही है, कोई गा रही है, और कोई नाचते हुए, कोई रोते हुए उसको याद कर रही है। तो सब लोग अपने पिया को याद करते, उस ईश्वर को याद कर रहे हैं। साडे मन भाव दियाँ, हमारे दिल को बहुत भाता है ये उस दिल भर यार की सारी बातें। और उसी में इसी कड़ी में मैं फिर बनारस घराने की एक बहुत ही पुरानी बंदिश जो मैंने कभी नहीं गाई, बोलन लागी कोयलिया अमुआ की डारी, बहुत ही रेयर कंपोजिशन है, आपको सुन के मालूम पड़ेगा। तो मैं इसी राग में दो बंदिशें पहले आपको सुनाती हूँ, राग भीम पलासी में थोड़ा सा आलाप और ये बंदिशें। थैंक यू।

ते पहले मैं ठुमरी सुनाती हूँ। राग मिश्र खमाज की ये ठुमरी बहुत पुरानी ठुमरी है बनारस की। राग मिश्र खमाज।

गगरिया में घरे धरे आऊं, गगरी में धरे आऊं, चुनरी पहरी आऊं, कर आऊं सोला श्रृंगार, ठाड़े रहो बांके शाम। राधा जी कह रही हैं, तुम मेरी प्रतीक्षा करो, मैं घर आके श्रृंगार करके आती हूँ, तब मैं आपके साथ चलूंगी।

तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत भारती में गायन सुनंदा शर्मा का और सितार वादन का आनंद लिया, जिसकी प्रस्तुति दी अलीफ लैला ने। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: श्रोताओं, भागती दौड़ती जिंदगी में कुछ पल हंसने हंसाने के लिए, मुस्कुराने के लिए, गुदगुदाने के लिए मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे तप तपाती गर्मी में कोई ठंडी हवा का झोंका आया और मन को सुकून दे गया। और हमारा भी यही प्रयास रहता है कि हम अपने कार्यक्रमों के द्वारा आपको वो सुकून दे सकें कि आप मन ही मन गुदगुदाएं और मुस्कुराए बिना ना रह सकें। तो प्रस्तुत है हमारा हास्य नाटक LPG का 7वां सिलेंडर। श्रोताओं, दुनिया में 7 अजूबे हैं, धरती पर 7 समंदर हैं। शादी के समय 7 फेरे लिए जाते हैं, पति और पत्नी एक दूसरे को 7 वचन देते हैं, सरगम के सुर भी 7 होते हैं, यहां तक कि इंद्रधनुष के रोशनी के रंग भी 7 हैं। और तो और, हमारा भोपाल भी 7 पहाड़ियों पर बसा है। पर हमें समझ में नहीं आता कि सब्सिडी वाले रसोई गैस के सिलेंडरों की संख्या 6 क्यों है। सरकार को न जाने क्या सूझी कि उसने किचन के सिलेंडरों का कोटा साल भर में 6 फिक्स कर दिया। अरे ज्यादा नहीं, कम से कम 7 के आंकड़े का तो ख्याल रखा होता। तो लीजिए, हाजिर है सिलेंडरों की इसी कश्मकश से गुजरते हुए एक परिवार की राम कहानी।
2: ओफो यार, ये जूते कहाँ रख दिए? ये जूते मिल जाए तो फिर चश्मे का। अरे सुनती हो का? क्या यार, ये लोग फोन मोबाइल कहाँ रखा है मेरा यार?
3: सुनिए जी, अरे सुन रहे हैं? आज ऑफिस के टिफिन में आपको ब्रेड बटर दे रही हूँ, कहिए तो थोड़ा सा सॉस भी रख दूं।
2: क्या कह रही हो, ब्रेड बटर?
3: हाँ।
2: अरे यार, तुम तो जानती हो कि ब्रेड मेरे पेट में चिपकती है, गोंद की बाप है ये चिपकोपन में। सुबह फ्रेश होना मुश्किल हो जाता है, चाय पर चाय पीते जाओ पर जोड़ है कि टूटता ही नहीं।
4: अरे मम्मी, पापा को भुने चने दे दीजिए लहसुन मिर्ची की चटनी के साथ, पापा कहते हैं भुना चना पेट साफ रखता है।
2: क्या बकवास किए जा रहे हो तुम लोग, कुछ ढंग का टिफिन नहीं दे सकते तुम मुझे? ब्रेड बटर भुना चना, मानो अग्नि देव हड़ताल पर चले गए हो।
3: चले गए नहीं है, पर जाने की धमकी जरूर दे रहे हैं।
2: क्या मतलब
3: भाई? 5 महीने बाकी हैं अभी साल पूरा होने में,
2: और नोटिस दे दिए हैं कि अब काम पे नहीं आएंगे वो, यही कहना है ना तुम्हें?
3: हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए बस। पिछले 7 महीनों में हमने 4 सिलेंडर चट कर दिए हैं, अब बचे हैं कोटे के खाली 2 सिलेंडर।
2: क्या?
3: और महीने बचे हैं 5, यानी 1 सिलेंडर अब हमें 2.5 महीने चलाना है, जबकि जिस हिसाब से चल रहे हैं ना हम, हमारा 1 सिलेंडर 2 महीने भी तो चलता नहीं, अब कुकिंग में कटौती भी करनी पड़ेगी।
2: कटौती माई फट, अब क्या पेट पर पट्टी बांध कर नौकरी करूंगा मैं? हार तोड़ खटो ऑफिस में और इसके बाद खाना भी नहीं मांगो? कमाल है भाई, कमाल है, है? एक सुबह गरम पराठा ना दो तो तुम्हारी बाई भी भाग जाए काम छोड़कर, और मैं?
3: ए, देखो देखो जी, बाई से अपनी बराबरी मत करो, कह देती हूँ मैं। हाँ भाई, तुम मुंह फुला लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा मेरा, मगर बाई, बाप रे बाप, दूसरा पति तो मिल जाएगा।
2: क्या?
3: पर दूसरी बाई नहीं मिलने वाली भाई, उसके नाश्ते में कटौती का तो सवाल ही नहीं उठता, बाकी चाहे जो हो। अरे देख तो मंजू, लगता है कांता बाई आ गई। क्यों रे कांता, ये कोई टाइम है आने का? पहले तो तू कभी कभार ऐसा करती थी, पर अब तो तेरा रोज रोज।
5: अरे क्या करूं भाई साहब, सरकार ने सिलेंडरों में आग लगा के रखी है ना, अब जलते सिलेंडर से आग तो लग सकती है, पर खाना बनने से रहा। सुबह सवेरे सवेरे लकड़ी बीनने ना जाऊं ना तो लकड़ी भी ना मिले, एक अनार 100 बीमार वाला हाल है। एक टाइम लकड़ी के टुकड़ों पर खाना पकता है और एक टाइम गैस सिलेंडर पर, अब देर तो होगी ना भाई, आखिर नौकरी भी तो पापी पेट की खातिर ही कर रही हूँ ना।
2: हाँ, हाँ, तू ही कर रही है अपने पापी पेट की खातिर, और हम तो ऐसे ही कर रहे हैं।
3: अरे सुनिए तो, टिफिन तो ले जाइए, अरे कुछ एकदम खाली पेट रहेंगे क्या?
5: ओफ, साहब नाराज हो गए क्या भाई साहब?
3: अब छोड़ ना, तू नाश्ता कर ले।
5: भाई साहब नाश्ता तो कर लूंगी, पर आज है ना वो ना पराठे के साथ है ना, चाय भी मिल जाती तो थोड़ा सा क्या है ठंडे ना।
3: अच्छा बनाती हूँ।
5: हाँ हाँ, तो कई दिन भी हो गए सुबह की चाय नहीं मिली ना भाई साहब। पहले तो ठेले पर वो 2 रुपए कट मिल जाती थी, पर अब अरे अब तो उनके भी रेट सिलेंडर की तरह भबक रहे ना।
3: ये ले चाय, अब मेरा माथा खराब ना कर कांता। देखा ना तूने कैसे लड़कर गए हैं अभी। तू चाय पी, तुझे तो गरम पराठे दे रही हूँ और वे भुने चने लेकर चले गए। तुझे क्या मालूम कि वो कैसे कैसे।
5: मालूम है भाई साहब, रो मत, रो नको, मालूम है मेरे को, सब मालूम है। अरे आग की जरूरत तो मेरी रसोई में भी पड़ती है ना। वो चाय वाले भी बोलते कि सरकारी रेट 2 गुना होता है ना, तो ब्लैक वालों का रेट 4 गुना हो जाता है। हाँ
3: मैं क्या करूँ, सरकार तो कुछ भी बोल देती है बस, अब मैं कैसे घर चलाती हूँ ना, मैं ही जाती हूँ।
5: रो,
3: हो गई ना तेरी चाय, अब जा बाकी काम कर।
5: हाँ,
3: झाड़ू पोछा पड़ा है सुबह से।
5: हाँ,

0: मंजू।
1: हाँ मम्मी।
0: जरा टीवी की आवाज कम कर दे बेटा।
1: हाँ मम्मी करती हूँ।
2: सुनो ना, सॉरी सुबह मेरी वजह से आपका मूड ऑफ हो गया, पर मैं क्या करूं बताओ। मेरे हाथ में तनख्वाह देखकर तो तुम निश्चिंत हो जाते हो, घर तो मुझे चलाना पड़ता है ना।
3: नहीं रचना, गलती मेरी भी है। अरे यार, मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, बॉस तक की बीवी ने राशनिंग का हुक्म सुना दिया है।
1: क्या?
3: बेचारा सुबह का नाश्ता अंकुरित चने से करता है। दांत साथ नहीं देते उस उम्र में, पर करे क्या, किसी तरह टेबलेट समझ कर कटक लेते हैं।
2: अच्छा सुनो, क्यों ना हम एक काम करें।
3: हाँ बोलो।
2: एक सोलर कुकर खरीद लें, दाल चावल तो उबल ही जाएगा ना उसमें। हाँ, हाँ, हाँ। सूरज भगवान की सब्सिडी और सरकारी सब्सिडी, इन दोनों को मिलाकर हमारा काम किसी तरह चल ही जाएगा।
3: क्या बात है भाई, क्या बात है, हमारी मेहमान साहब तो बहुत समझदार हो गई है। अब जाके हमें समझ में आया कि वैदिक काल में लोग अग्नि की इतनी पूजा क्यों करते थे। सच सच, ज्ञान पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान आता है भोगने से।
2: अब देखिए जी, 5 महीने हमें 2 सिलेंडरों के सहारे निकालने हैं।
3: बिल्कुल।
2: ओके, तो अब सोलर कुकर ने 1/3 लोड भी ले लिया।
3: हाँ, हाँ।
2: तो गाड़ी धक ही जाएगी किसी तरह। फिर हाँ। आपको भी टिफिन में ब्रेड चने नहीं खाने होंगे। हाँ। हॉट केस में रखे गरम गरम दाल चावल की खुशबू से आप ऑफिस में अपना करवा चौथ खोलिएगा।
1: और मम्मी, फिर मैं भी गर्मा गर्म पोहे खाऊंगी रोज सुबह।
2: हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं भाई, अब तो सोलर कुकर देव का ही सहारा है, वे ही इस संकट से छुटकारा दिला सकते हैं अब।
3: वाह वाह, संकट मोचक।
2: सोलर कुकर देव की जय।
3: अरे यार रचना, ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे, कहाँ मेरा लंच बॉक्स है, ला।
2: माफ करना जी,
3: क्या
2: लगता है दोपहर के पहले नहीं पकने वाला है ये दाल चावल, ये सोलर कुकर में डाला है ना। और आज सूर्यदेव भी नरम पड़े हुए, लगता है उन्होंने भी सब्सिडी घटाने का मन बना लिया है।
3: ए भगवान, दुबले को दो आषाढ़। यार एक काम करो, अतपका ही भर दो तुम टिफिन में यार, है? पेट की आग से ही पक जाएगा अब तो खाना। आखिर आदि मानव भी तो कच्चा मांस ही खाता था, और कितना आटा कट्टा होता था।
2: ओहो, मुझे क्यों सुना रहे हो, अब सूरज देव ठंडे पड़ते जा रहे, तो मैं क्या कर लूं?
3: क्या करूं?
2: उनके आगे मोर्चा तो लेकर नहीं जा सकती ना। सारी मुसीबत मेरी, जैसी सरकार वैसे ही भगवान, आम आदमी के तो सबके सब दुश्मन है।
3: यार, अरे हर रचना, एक आइडिया आया है दिमाग।
2: हटो जी,
3: एकदम सुपर हिट है। एक काम करो, एक काम करो, जिस हाल में भी है दाल चावल तो उठा लाओ उसे, जल्दी लाओ, लाओ तो।
2: अरे अरे अरे अरे, क्या हो गया जी आपको, क्या आप सचमुच ही आदि मानव तो नहीं है? हे भगवान, सिलेंडरों की समस्या ने अब आपके दिमाग पर कोई असर तो नहीं डाल दिया?
3: अरे चुप रहे भाई, चुप रहे, मैं तुझे पागल दिखता हूँ? अरे लेके आओ यार सही अपना कच्चा पक्का खाना, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या करना है। लाओ लाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ।
2: ये लीजिए।
3: हाँ,
2: ये बताइए अब क्या करूँ इस कच्चे पक्के खाने का?
3: अरे करना क्या है यार, ये सोलर कुकर के डब्बों को अब असली कुकर में डाल दो और उसको फिर गैस पर चढ़ा दो।
2: हाँ, अब फिर क्या फायदा हुआ?
3: ओफो, यही तो फर्क है तुम्हारी और हमारी अकल में। अरे अब खाना पकाने में आधा गैस खर्च होगा कि नहीं होगा, है? आधा गैस।
2: वाओ, मान गए आपको, वो क्या कहते हैं ना जी, दिनेश, मतलब दिनेश।
3: हाँ, मतलब हम दिनेश।
4: रचना और दिनेश ने न जाने क्या क्या तरीके अपनाए, पर सिलेंडर देव की आयु 2.25 महीने के ऊपर न जा सकी। एक बार फिर घर की दीवारों पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। 7वें सिलेंडर की कल्पना ही डरावनी है। भारत में आम आदमी का कलेजा अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वह 1000 रुपए का सिलेंडर खरीद करके अपना रसोई का चूल्हा जला सके। पति पत्नी की 2 सदस्यीय कमेटी इस कठिन समस्या का हल तलाशने के लिए बैठ गई।
2: आ, आ, आ, सुनो जी, एक काम करते हैं, घर में आलू आज से पूरी तरह बंद।
3: उससे क्या होगा? क्या बाकी सब्जियां कच्ची खाई जाएंगी?
2: अरे नहीं जी, सब्जियों का बिहेवियर आप क्या जानोगे दिनेश बाबू, ये तो हम गृह स्वामिनियां ही समझ सकती है।
3: क्या मतलब?
2: मतलब ये देखो, अब हमें पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए, हाफ फ्राइड, पोषक तत्व भी भरपूर और गैस की बचत भी। वो डॉक्टर्स कहते हैं ना कि सब्जियों को ज्यादा पकाने से उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, नष्ट नष्ट नष्ट,
3: और मेरा वेट भी कंट्रोल में रहेगा, है ना?
2: वाव, क्या बात कही है आपने, तो मेरे मुंह की बात छीन ली, वेट कंट्रोल, तो समझिए सब बीमारियां कंट्रोल।
3: अरे भाड़ में जाए तुम्हारे पोषक तत्व और वेट कंट्रोल, जान ही दे देते हैं ना बाबा अपनी, है? न रहेगा वेट और न रहेगा कंट्रोल, और न करना होगा ऐसे कंट्रोल में, गैस सिलेंडर की जरूरत भी खत्म।
2: अरे क्यों नाराज होते हैं जी मेरे भोले पतिदेव, भाई आपकी तनख्वाह से तो काम चल नहीं रहा है, आपकी पेंशन से कैसे काम चलेगा?
3: क्या
2: हमारा गोलू अभी छोटा है, अभी उसे बाप की जरूरत है जी।
3: जरूरत है तो नहीं होगा आलू बंद, मेरा पेट ही नहीं भरता आलू के बिना। अरे आने दो सातवां सिलेंडर 1000 रुपए में, पर आलू पर कैंची कभी नहीं चलेगी।
2: ये भी आ गए सातवें सिलेंडर के दूध बनकर, गरीबी में आटा गीला, गैस का 6 दिन का कोटा अब 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। पहले का जमाना ही अच्छा था, जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ, मजे से चूल्हा जलाओ, कम से कम मेहमानों से डर तो नहीं लगता था।
3: क्या भुनर भुनर कर रही हो जी तुम, हैं? तुम औरतों की यही आदत मुझे बुरी लगती है, खुलकर नहीं बोलती, ऐसा लगता है जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। क्या हुआ?
2: घर में मेहमान है, गैस का हिसाब किताब तो पहले ही गड़बड़ाया हुआ था, पर अब तो पूरा गड़बड़ छाला हो चुका है। कोई प्रधानमंत्री राहत कोष भी तो नहीं होता ऐसे मामलों के लिए?
3: अरे ठीक कहती हो तुम, एक प्रधानमंत्री गैस कोष जरूर होना चाहिए, जिससे उन लोगों की मदद हो सके जिनके यहाँ मेहमान वगैरह आ जाएं। इन लोगों ने सिलेंडर का कोटा फिक्स करते हुए ये नहीं सोचा कि मेहमान भी आएंगे घर में। अरे कभी ठंडे खाने को गर्म भी करना पड़ेगा, कभी त्योहार भी पड़ेंगे, बस फ्लैट ऑर्डर पास कर दिया कि साल भर में 6 सिलेंडर। त्योहारों को गुड बाई बोल दो, मेहमानों को पहचानने से इनकार कर दो, खाना ठंडा हो जाए तो उसे वैसे ही निगल लो। पता चला बाहर की गैस बचाने के चक्कर में पेट के भीतर गैस भंडार बन गया।
2: सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो, क्या खूब बात कही है,
3: क्या
2: बातों ही बातों में समस्या का अच्छा समाधान बता दिया।
3: अच्छा
2: अगर कोई टेक्नोलॉजी इजाद हो सके कि इस गैस भंडार को सिलेंडरों में पैक कर ली जाए,
3: क्या
2: तो सारी समस्या ही खत्म। तब तो गैस कंपनियां कहेंगी जो साल में 6 से ज्यादा सिलेंडर इस्तेमाल करेगा उसे 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा।
3: और फिर भी कोई खरीदार नहीं मिलेगा, आखिर मुफ्त की चीज कोई डिस्काउंट में भी क्यों खरीदे।

0: वाह वाह वाह वाह
1: यार, खाने में कुछ मजा नहीं आ रहा आजकल।
0: हाँ, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हो यार आलोक भाई?
1: क्या बताएं यार,
0: क्या हुआ
1: यार दिनेश? सरकार इतनी बेरहम कैसे हो सकती है भैये?
0: क्या हो गया? क्या
1: अरे मतलब? यही सिलेंडरों का कोटा।
0: हाँ,
1: कहते हैं साल में 6 से ज्यादा नहीं देंगे।
0: हाँ,
1: अरे भैया जब हम छोटे थे 60 रुपए का आने वाला सिलेंडर अब 500 रुपए का हो चुका है। कोटा करण अलग से, ऊपर से तुर्रा ये कि देश की आर्थिक तरक्की हो रही है। वाह,
0: सही कह रहा है यार तू आलोक। आर्थिक तरक्की तो तभी होगी ना जब हम लोग आधा पेट खाएंगे।
1: सही कहते हो, सही
0: पेट भर खाना खा लेंगे तो देश की तरक्की के लिए पैसा ही नहीं बचेगा।
1: हाँ, ये भी तुमने ठीक कहा। और करनी और कर्मगत ऐसे भैया के घर में जो हमारे कुकिंग मिनिस्टर बैठी है ना, अब वो खाने का कोटा फिक्स कर रही है। कहती है सुबह 1 से ज्यादा चाय नहीं मिल सकती।
0: जी, जी, जी, जी।
1: टिफिन भी खाना है तो कच्चा माल खाओ, शाम की चाय बाजार में जाकर पियाओ। और कभी कभी तो ये कहती है कच्चा खाना खा करके जलते तवे पर बैठ।
0: अरे भाई क्या क्या बात कही है आपने, मेरे घर में भी यही सब चल रहा है। छठा सिलेंडर खुल चुका है। हाँ, और मेहमानों को भी इसी वक्त आना था। बड़ी मुश्किल से विदा हुए हैं, लगता है उनके घर में भी सिलेंडरों का कोटा खत्म हो रहा था। सोचा कुछ दिन दिनेश भाई के यहाँ चलो।
1: भैया दिनेश, मुझे तो अब मेहमानों से डर लगने लगा है। सोचता हूँ घर में आए मेहमान तो उन्हें होटल अलाउंस दे दूं बिल्कुल कैश, और कहूँ भैया ये लो पकड़ो और होटल में जाकर खाना खा पी लो बस।
0: हाँ बॉस, हमारी संस्कृति में कहते हैं अतिथि देवो भव। लेकिन सरकार की वजह से अब मेहमान भगवान नहीं जानी दुश्मन लगते हैं, जो आधे सिलेंडर गैस अपने संग उड़ा ले जाते हैं।
1: यार दिनेश, एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में।
0: वो क्या आ रहा है भाई, सुनाओ।
1: देख, क्यों ना हम सब मिलकर एक सिलेंडर इमरजेंसी फंड बनाए। किसी के घर में अगर छठा सिलेंडर समय से पहले खत्म हो जाए तो इस फंड से उसकी मदद की जा सके।
0: हाँ यार, मगर इस फंड में सिलेंडर आएंगे कहाँ से?
1: देख, हमारे यहाँ कई बार लोग छुट्टी पर बाहर जाते हैं ना।
0: जी, जी।
1: कभी कोई काम से बाहर चला गया, कोई अपने गांव चला गया, या अन्य किसी वजह से अगर किसी का कोटे वाला एकाध सिलेंडर बच जाए तो वो इसे हमारे फंड में दान कर दे।
0: वाह,
1: बदले में हम उसका सम्मान समारोह करेंगे, अखबारों में फोटो सहित न्यूज छपवाएंगे और लोगों को बताएंगे कि भैया आज के वक्त में ये है सिलेंडर दानी, यानी सिलेंडर दान महादान।
0: वाह यार, आइडिया तो धांसु है। चल जाए तो सुपर हिट। कम से कम बिना तड़के की दाल खाने से तो छुटकारा मिलेगा।
1: क्यों भैये? तुम्हें सिलेंडर दान नहीं करना है क्या?
0: है?
1: अरे दान त्याग मांगता है त्याग, भोग के बूते पर भी कभी कोई दान होता है।
0: जी अरे भाई, हमारी गिनती तो दान लेने वालों में ही रखो यार, तुम्हें देने वालों में तो तुम अपना नाम भले लिखवा लो।
1: देखो भैया दिनेश, सिलेंडर दान महादान।
2: दिनेश और रचना की सारी हिकमतें मिलकर भी छठे सिलेंडर की आयु को दीर्घायु न कर सकी। अभी साल पूरा होने में 1 महीना बाकी था, पर अचानक एक रात गैस का बर्नर भभक कर बुझ गया। समझ गए वे दोनों कि पंछी उड़ चुका है। सिलेंडर के भीतर रहने वाली गैस रूपी आत्मा महाप्रायण कर चुकी है। अब यह जो लाल रंग का लोहा बचा है, यह तो नश्वर शरीर है।
3: ओफो, अब क्या करूं? सब्जी अभी कच्ची है, गोलू का दूध भी गर्म नहीं हुआ, सुबह की ओफो, क्या मुसीबत है। अजी सुन रहे हो? सुनना जरा।
0: हाँ, हाँ,
3: देखो ना, गैस खत्म हो गई, पूरा काम पड़ा हुआ है, अब मैं क्या करूं बताओ। इसी बात का डर।
0: एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। सुनो, लुढ़का कर देखते हैं सिलेंडर को, शायद थोड़ी सांसें बची हो अभी, 5-10 मिनट और जी जाए किसी तरह।
3: संभाल के।
0: अब जलाओ।
3: जल गया। जल जल जल गया। ये देखो, ये देखो लौ निकल रही है बर्नर से। हे भगवान, तू सचमुच कितना दयालु है भगवान, भक्तों का संकट दूर करने वाला। काम चला दो किसी तरह शारदा माता, हम सब परिवार मैहर दर्शन को आएंगे माता।
0: अरे क्या पागल हुई हो, कितने घाटे की डीलिंग है ये तुम्हारी, तुम्हें होश भी है? दर्शन करने का खर्चा कितना बैठेगा तुमने सोचा है कभी? अरे ये तो गज बचाने के चक्कर में थान हारने वाली बात है।
3: चुप रहो जी, कहीं माता रानी नाराज हो गई ना तो थान तो क्या, दुकान ही हार जाओगे तुम। एक एक सिलेंडर को तरसोगे, साल भर गाय की तरह कच्चा सानी खाते रहना, होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे।
2: लड़ाई के मैदान में जिस तरह कोई बहादुर सैनिक मरते मरते भी दो चार दुश्मनों को लुड़का देता है, वैसे ही दम तोड़ते सिलेंडर ने भी रात का खाना पका दिया है। पर सुबह क्या होगा, यह चिंता पति पत्नी को इस खाने का आनंद नहीं लेने दे रही। हर गौर के साथ चिंता की दो फांके निगल रहे थे वे दोनों। सुबह चाय कैसे बनेगी, दूध कैसे गर्म होगा, नाश्ता कैसे बनेगा, अनगिनत सवाल पति पत्नी के बीच राहु की तरह पंख फड़फड़ा रहे थे।
0: ये क्या कर रही हो रचना, आज रद्दी वाले को बुलाया क्या तुमने?
3: रद्दी वाले को नहीं बुलाया है, ये तो चाय बनाने का इंतजाम चल रहा है पति देव जी।
0: यानी अब रद्दी के कागजों से रसोई पकेगी?
3: नहीं, ये केवल सुबह का इंतजाम है। इसके बाद अगर कोई रसोई जलानी है तो जाकर कबाड़ी के यहाँ से एक आध क्विंटल रद्दी कागज खरीद कर ले आओ।
0: एक क्विंटल रद्दी कागज?
3: हाँ,
0: यानी 1000 रुपए का बिल। लग रहा है गैस खत्म नहीं हुई है रचना, बल्कि तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है। इतने में तो बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर ही आ जाएगा।
3: वही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ।
0: क्या
3: अब सब्सिडी का मोह छोड़िए, क्या पता कल को इन 6 सिलेंडरों पर भी सब्सिडी खत्म हो जाए। तो अभी से हमें आदत डालते रहना चाहिए, वही अच्छा है।
0: पर रचना, हमारे बजट का क्या होगा तब? ये एक्स्ट्रा खर्च कहाँ से आएगा भाई, किसकी जेब काट कर हम अपना घर चलाएंगे है? अब तो कर्मचारी संगठनों को सरकार से कुकिंग अलाउंस भी मांगना चाहिए भाई। खाना खाए बगैर तो कर्मचारी काम कर ही नहीं सकता। तनख्वाह से अनाज तो खरीद सकते हैं पर पका नहीं सकते उसे। पकाने के लिए अलाउंस का हक तो बनता है।
3: चिंता न करिए पति देव जी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ तो आपकी चिंताएं भी साझा करूंगी। अब सोच लिया है मैंने कि बजट को कैसे बैलेंस करना है।
0: कैसे बैलेंस करना है?
3: तो लीजिए, पेश है। कल से दूध का 1 पैकेट कम आएगा घर में
0: जी?
3: साल भर
0: है?
3: भविष्य के लिए अपने आप को तैयार रखना है। आज नहीं तो कल सब्सिडी वाले सिलेंडर बंद होने ही है। पूरा दूध कच्चा पीने से अच्छा है कि आधा दूध उबाल कर पियो, पका खाना बोनस होगा।
0: पर काम कैसे चलेगा, 2 पैकेट में तो पूरा पड़ता नहीं है, 1 पैकेट में क्या होगा?
3: अरे पढ़ने का क्या है, 4 में भी ना पड़े और छोटी थैली में भी काम चल जाए। आखिर हमें उतने ही पांव पसारने चाहिए जी जितनी हमारी चादर है। कर्ज लेकर घी पीने की फिलॉसफी तो सही नहीं है ना। चाय में दूध थोड़ा कम पड़ेगा, फुल के बजाय कट चाय पी जाएगी
0: जी।
3: गोलू के दूध में भी थोड़ी राशनिंग हो जाएगी, इससे चीनी भी बचेगा और डायबिटीज का खतरा भी खत्म।
0: वाह वाह,
3: बीमार होने का रिस्क कम, यानी दवा दारू का खर्च भी बचा।
0: बहुत खूब,
3: बस हो गया बजट बैलेंस। बजट क्या, सरप्लस कहिए साहब, सरप्लस।
0: क्या बात है।
2: अब घर में 7वां सिलेंडर आ चुका है, पैसे जरूर दुगने से ज्यादा लग गए पर रसोई तो गर्म हो गई, कुकर की सीटी बज उठी है, चाय उबल रही है, जीवन की ऊष्मा सोंधी सोंधी महक रही है।
3: ये क्या है जी आपके हाथ में?
0: बूझो तो जानू।
3: अब बूझना क्या है, ये तो गैस का चूल्हा है, साफ समझ में आ रहा है। अब ये क्या फितूर सूझी आपको, एक नया खर्च बेवजह। भाई हमारा चूल्हा अच्छा भला तो काम कर रहा है अभी।
0: अच्छा भला नहीं काम कर रहा है धर्म पत्नी जी। अपना चूल्हा कभी ध्यान से देखा है आपने? पुरानी टेक्नोलॉजी का है तुम्हारी तरह ये चूल्हा।
3: तो क्या हुआ, मेरी तरह जलता भी तो है ये चूल्हा।
0: मगर गैस जरूरत से ज्यादा खाता है। पुरानी फिएट कार की तरह ये जो चलती कम और धुआं ज्यादा देती है। तुमने ध्यान से देखा है कभी इसे? देखा है कभी इसे?
3: क्या
0: बर्तन की पेंदी कितनी काली हो जाती है इससे है?
3: और इस नए चूल्हे में
0: तुम खुद ही खोल कर देखो इसे, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें।
3: अरे इसमें तो लिखा है हाई थर्मल एफिशिएंसी अप टू 75%।
0: और तुम्हारे पुराने चूल्हे में क्या लिखा है ये भी देख लो लगे हाथ।
3: अब इसमें तो कुछ भी लिखा नजर नहीं आ रहा जी।
0: नहीं आ रहा ना?
3: नहीं
0: आएगा भी नहीं।
3: क्यों?
0: क्योंकि कुछ लिखने लायक होगा तब ना लिखा जाएगा।
3: अरे
0: मुझे भी नहीं मालूम था। वो तो जब से सिलेंडरों की राशनिंग हुई है चारों ओर रिसर्च शुरू हो गई है कि गैस कैसे बचाई जाए। कंपनियां भी अब स्टार रेटेड चूल्हे बाजार में ला रही हैं जो कम गैस खाते हैं। कई बुकलेट पब्लिश हुए हैं जिनमें बताया जा रहा है कि खाना कैसे पकाया जाए जिससे गैस की बचत हो। एक फ्री बुकलेट इस चूल्हे के साथ भी है, देख लो।
3: यही है ना बुकलेट?
0: यही है। क्या लिखा है?
3: लिखा है हाउ टू सेव कुकिंग गैस इन किचन।
0: हाँ, अब इसे जरा पूरा खोल कर पढ़ो तो।
3: देखो ना, गैस बचाने के टिप्स
0: जी।
3: नंबर एक, गैस का चूल्हा ऑन करने के पहले पकाने की सामग्री अपने पास रख लें
0: जी।
3: इससे चीजें ढूंढने के दौरान आपकी गैस फालतू बर्बाद नहीं होगी
0: जी।
3: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा नंबर दो, सेपरेटर की मदद से एक ही प्रेशर कुकर में अनेक चीजें एक बार में ही पकाएं।
0: आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
3: नंबर तीन, चीजें कम पानी में पकाएं, ज्यादा पानी को भाप में बदलने के लिए ज्यादा गैस की बापरे। नंबर चार, बर्तन में रखा पदार्थ जैसे ही उबलना शुरू करे आँच धीमी कर दो।
0: जी जी,
3: सिंपल। ओके, एक और है, एक और। दाल चावल को पकाने के पहले थोड़ी देर भिगो कर रखे।
0: मुझे दो, मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे दो।
3: अच्छा अच्छा, चलो पढ़ो पढ़ो। सिक्स्थ वाला,
0: जहाँ तक हो सके छोटा बर्नर इस्तेमाल करें।
3: अच्छा,
0: और बर्नर की समय समय पर यानी वक्त वक्त पर सफाई करें, खास करके तब जब बर्नर की लौ पीली नारंगी व एक जैसी ना हो।
3: अच्छा,
0: समझी?
3: हाँ,
0: अच्छी लौ की एक पहचान ये है कि इसे नीली चमकदार व एक जैसी होना चाहिए।
3: अच्छा,
0: वो नीली। और फ्रिज से निकाली गई चीजों को गैस पर चढ़ाने के पहले कमरे के ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ जाने दें।
3: हाँ,
0: इससे गैस की बचत होगी।
3: वाह।
0: और अगर इन सभी नियमों का पालन करोगे तो आपका गैस सिलेंडर दीर्घायु होगा, दीर्घायु।
3: नहीं, मजाक नहीं। अरे इनमें से आधी बातें तो हम पहले से ही जानते हैं।
0: हाँ।
3: पर हम इन्हें करते क्यों नहीं हैं?
0: हाँ, लेकिन अब करना है धर्म पत्नी।
3: हाँ,
0: जी
3: जरूर।
0: नहीं तो पता चला अभी दूध आधा हुआ है।
3: हाँ।
0: और चाय आधी हुई है, आगे चलकर कौन भरोसा कि रोटी भी आधी हो जाए।
3: नहीं नहीं।
0: हाँ, आगे चलकर कौन भरोसा कि रोटी भी आधी हो जाए।
3: नहीं नहीं।
0: मेहमानों को आने से पहले सैंक्शन लेनी पड़े, संख्या बतानी पड़े कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने दिन के लिए आ रहे हैं, कितने दिन बाद जाएंगे। पहले वीजा लें, फिर टेक ऑफ करें, नहीं तो घर में लैंड करने की
3: इजाजत नहीं मिलेगी।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एलपीजी का सातवां सिलेंडर। इस हास्य नाटिका में भाग लेने वाले कलाकार थे राकेश जमनी, स्वास्तिका चक्रवर्ती, रंजना तिवारी और इरफान सौरभ। लेखक श्रीमती पूनम जायसवाल। ध्वनांकन एवं संपादन अमित कुंदानी और अंकित सक्सेना का। परिकल्पना और सूत्रधार प्रमोद शर्मा। निर्देशन जवाहरलाल शाह। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं सितार वादन काजल जोशी का, और उसके बाद प्रस्तुति होगी अजय टिपानिया के गायन की। अंतिम प्रस्तुति दी जाएगी अजय प्रसन्ना के बांसुरी वादन की। तो लीजिए पेश है सबसे पहले सितार वादन काजल जोशी का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सितार वादन, जिसे पेश किया काजल जोशी ने। अब बारी है गायन की अजय टिपानिया द्वारा, जिसे प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस तरह से प्रेम की प्यास जब लगती है तो हम उस अमी का पान करें। एक भजन में सद्गुरु कबीर इस तरह से कहते हैं,

गगन में इस तरह की झड़ी लगती है तो फिर उससे प्रीत होती है, इसी बात को साहेब कबीर ने एक भजन में इस तरह से कहा है।

तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारा हास्य नाटक फीस। चतुर सेन ग्रेजुएट है मगर बेरोजगार है। आज से 5 साल पहले उसने शहर के एक नामी कॉलेज से बीए पास किया था। मन में ख्याल आया लगे हाथों एमए भी कर लिया जाए, पर सोचा क्या फायदा पैसा और वक्त जाया करने में। आईएएस बनना चाहता था, उसके लिए बीए पास क्वालिफिकेशन काफी थी। मगर पहले ही प्रयास में उसे पता चल गया कि बीए पास आदमी आईएएस नहीं बन सकता। फिर सोचा चलो डिप्टी कलेक्टर ही सही, ये पोस्ट भी बुरी नहीं है, 20-22 साल में आईएएस की प्रमोशन मिल ही जाएगी। पर हाय रे किस्मत, यूपीएससी से लेकर के पीएससी तक सब ने उसके खिलाफ जैसे मोर्चाबंदी कर रखी थी। यहां तक कि एसएससी और व्यापम ने तो उसे कोई तवज्जो ही नहीं दी। हार कर विचार करने बैठ गया कि आखिर गड़बड़ कहां है, क्यों नौकरी के सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं। काफी चिंतन मनन के बाद जवाब मिला कि चतुरसेन कमी तुझ में नहीं, तेरे कॉलेज में है। उसने तुझे प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं दी, फीस तो पूरी ली पर पढ़ाया कुछ नहीं। तभी तो नौकरी के हर इम्तहान में तू केवल और केवल फेल होता रहा। तेरे कॉलेज ने सेवा में कमी की है, इसलिए मुआवजे का मामला बनता है उन पर। चल उठ चतुरसेन और ठोक दे दावा कॉलेज पर। पहले नोटिस दे, अगर मान गए तो ठीक, अगर नहीं माने तो उन्हें खींच ले कंज्यूमर फोरम में। आजकल तो कंज्यूमर फोरम का जमाना है ना।
2: May I come in, sir?
3: Yes, come in. फरमाइए।
2: सर, ये नोटिस है, रिसीव कर लीजिए।
3: नोटिस? मगर किस बात का?
2: कंपनसेशन का सर।
3: कंपनसेशन? मगर वो कैसा?
2: सर, आपके कॉलेज ने सर्विस में कमी की है।
3: कॉलेज ने सर्विस में कमी की है? आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? अरे ये कॉलेज है, कोई दुकान या कंपनी नहीं। जो
2: कैसे नहीं है दुकान या कंपनी? अजी बिल्कुल है,
3: है?
2: पैसे लेकर शिक्षा बेचती है, आखिर और क्या होती है, दुकान ही होती है। कमोडिटीज ना सही, सर्विस ही सही, मगर कुछ तो बेचती है ना। बदले में फीस भी अनाप शनाप लेती है, और एजुकेशन, एजुकेशन ऐसी कि चपरासी की भी नौकरी ना मिले।
3: एक मिनट, ठीक से बताइए आप कि आप कहना क्या चाहते हैं।
2: सर, आज से 5 साल पहले मैंने आपके कॉलेज से बीए पास किया था। मुझे एश्योरेंस दिया गया था कि यहाँ की पढ़ाई इतनी अच्छी है कि यहाँ का पढ़ा लिखा लड़का आईएएस तक बन सकता है। लीगल टर्म में कहें तो आपके कॉलेज नाम की कंपनी ने एक प्रकार से गारंटी दी थी अपने कंज्यूमर को, मगर ये देखिए आपकी गारंटी फेल हो चुकी है। जहां जहां भी नौकरी के लिए अप्लाई किया है मैंने, जवाब केवल केवल ना में मिला है सर।
3: तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, आप में काबिलियत ही नहीं होगी।
2: वही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ सर।
3: क्या?
2: आपके कॉलेज ने मुझे इस काबिल बनाया ही नहीं कि मैं किसी नौकरी के लिए सिलेक्ट हो सकूं, जबकि ये जिम्मेदारी थी उसकी। इस तरह जो सर्विस देनी चाहिए थी उसे, वो नहीं दी उसने, और इसीलिए मुझे पूरा हक है कि जो फीस चुकाई है मैंने यहाँ, वो वापस पा सकूं, और वो भी ब्याज व हर्जे खर्चे के साथ।
3: लुक मिस्टर, ये कॉलेज है, कोई फैक्ट्री नहीं जहां प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक ना हुई तो पैसा वापस।
2: सर्विसेज भी तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के दायरे में आती हैं सर।
3: अच्छा,
2: आपको विश्वास ना हो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का सेक्शन 2 देख लीजिए।
3: क्या कह रहे हो?
2: आप खुद समझ जाएंगे कि मेरी डिमांड जायज है या ना जायज।
3: अरे जब कानून की इतनी गहरी समझ है आपको तो फिर कैसे कह सकते हैं कि इस कॉलेज ने आपको ठीक तालीम नहीं दी।
2: माफ कीजिएगा सर, मैंने LLB नहीं किया है आपके कॉलेज से, अरे BA किया है। BA जो प्रोडक्ट आपका है ही नहीं, उसकी क्वालिटी पर कैसे इतरा सकते हैं आप? फीस तो आपको लौटानी होगी सर।
3: और अगर हम ना बोल दें तो?
2: आपका मुंह, जो चाहे सो बोलिए, पर तब मैं कंज्यूमर कोर्ट चला जाऊंगा और हर्जाना भी तब 10 गुना होगा।
3: ओह नो।
2: ओह यस, बोलिए सर। कोर्ट कचहरी के लफड़े में फंस गए ना तो मिट्टी पलीत हो जाएगी आपकी।
3: ठीक है मगर इसके लिए हमें अपने मैनेजमेंट से कंसल्ट करना होगा।
2: शौक से करिए, एक हफ्ते का टाइम मैंने दिया है नोटिस में, इसके भीतर मुझे जवाब मिल जाना चाहिए, नहीं तो मुझे दोष मत दीजिएगा सर। मैंने एक हफ्ते का टाइम दे रखा है, शौक से कीजिए, शौक से।

0: और भाई मिश्रा जी, कैसी चल रही है आपकी हिंदी टीचिंग?
1: अरे कहाँ प्रिंसिपल साहब, आजकल तो मेरा विषय बिल्कुल उपेक्षित हो गया है। आपने मुझे योग की कक्षा लेने के लिए कह दिया,
0: अच्छा, खूब याद दिलाया आपने। योगा टीचर बामदेव की पत्नी को बच्चा होने वाला था ना, कुछ खबर है उनकी?
1: बच्चा नहीं श्रीमान, बच्चे कहिए, बच्चे। अरे उनके यहाँ तो बच्चे बहुवचन में आविर्भूत हुए हैं
0: भूत
1: श्रीमान।
0: हुए हैं? क्या मतलब?
1: अरे श्रीमान, तात्पर्य यह है कि वामदेव जी की भार्या के उदर से युगल संतानें उत्पन्न हुई
0: ओ,
1: है।
0: अरे भाई, इतनी शुद्ध हिंदी का प्रयोग क्यों करते हैं आप? लगता है फारसी में बात कर रहे हैं। जरा आम भाषा में बताइए ना कि।
1: अरे सर वो
0: सर,
1: मैं बताता हूं मैं।
0: आइए आइए, गणिताचार्य कृष्ण गोपाल श्री वास्तव जी।
1: धन्यवाद सर, मैं बताता हूं सर आपको। बामदेव जी की वाइफ को जुड़वा बच्चे हुए हैं
0: मगर कब, कितने दिन हो गए?
1: सर। दोनों बच्चों को मिलाकर 2 दिन 12 घंटे और 16 मिनट, प्रति बच्चे एवरेज आया 1 दिन 6 घंटे और 8 मिनट।
0: ओहो, ये कोई गणित का सवाल है जो एवरेज निकाल रहे हो?
1: और श्रीमान, बामदेव जी ने तो उनका नामकरण भी कर दिया है।
0: इतनी जल्दी? अभी तो
1: जी
0: नामकरण संस्कार का समय नहीं आया।
1: अरे श्रीमान, वो बामदेव हैं, कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व किए गए कर्म श्रेष्ठ होते हैं।
0: स्मार्ट गाई, स्मार्ट गाई, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। नाम क्या रखा है उनका?
1: अरे सर, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम श्रीमान, योगा शिक्षक है ना, तो इससे उत्तम नाम भला और क्या पाते वो।
0: अनुलोम विलोम, बहुत
1: अरे
0: सही, बहुत सही। ये तो अच्छा हुआ कि वे भूगोल के अध्यापक नहीं थे, नहीं तो उनके नाम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव रख दिए होते। खैर, उनकी धर्म पत्नी कैसी है? स्वस्थ तो है ना?
1: कपाल भारती जी, अरे
0: हाँ,
1: वो तो शवासन में है अभी सर।
0: शवासन
1: जी
0: मतलब वो
1: ना ना ना
0: गई।
1: ना ना ना सर, मिश्रा जी भी ना, योगा पढ़ाते पढ़ाते अब योगा की भाषा बोलने लगे हैं। कपाल भारती जी टोटल बेड रेस्ट पर हैं सर।
0: ओ, तो यूं कहिए ना मिश्रा जी, आप भी और आपकी हिंदी भी। अच्छा, और उनकी माता जी? वैसे वे तो आई होंगी ना अपनी बहू की देखभाल करने।
1: कहाँ श्रीमान, उनका तो कब का प्राणायाम हो चुका है।
0: मुझे ठीक से बताइए ना मिश्रा जी, आप बार बार मुझे परेशानी में क्यों डाल देते हैं?
1: क्षमा करें श्रीमान, वो क्या है ना कि हिंदी व योग की शब्दावली जरा मिश्रित तो हो गई है। वस्तुतः मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि उनकी माता जी का प्राणांत हो चुका
2: है। मतलब ये कि अब नहीं रही सर वो।
0: ओ भाई, बड़े ही होनहार अध्यापक हैं हमारे।
3: गुड मॉर्निंग सर।
0: आ गए आप मिस्टर चतुर सेन।

0: यहां तक कि कंज्यूमर कोर्ट के जज साहब भी यहीं के पढ़े स्टूडेंट हैं। आखिर इन लोगों को भी तो वही तालीम दी गई थी ना जो आपको दी गई।
1: फिर यानी कि तैयारी नहीं हुए वो लोग।
0: अरे छोड़िए जी उनकी बातें, वे ठहरे व्यापारी लोग, बेरोजगारों का दर्द क्या समझें, अपने स्टूडेंट की तकलीफ तो हम समझते हैं
1: सर। वो हाँ बिल्कुल, मतलब हमारा काम हो जाएगा ना सर।
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने भी खूब पानी पिलाया उन लोगों, बोल दिया कि कंज्यूमर कोर्ट का जज आपके कॉलेज का पड़ा है तो क्या कर लेंगे आप लोग। अरे जज किसी का सगा नहीं होता, वो कानून से फैसला करता है और कानून चतुर सेन के पक्ष में है। हम लोगों ने सेवा में कमी की है, ये बात इसी बात से साबित हो चुकी है कि चतुर सेन को अब तक कोई नौकरी नहीं मिली।
1: तो मतलब हमारा चेक रेडी है ना सर।
0: अरे रेडी ही समझिए जी, बस जरा सी फॉर्मेलिटी रह गई है, 2-3 घंटों में वो भी पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपका चेक आपके हाथ में।
1: अरे सर फॉर्मेलिटी, अब वो क्या सर।
0: दरअसल मैनेजमेंट इस बात का सर्टिफिकेट चाहता है कि इस कॉलेज ने आपको घटिया शिक्षा दी है रिकॉर्ड में लगाने के लिए। अरे भाई कॉलेज की बैलेंस शीट का भी तो ऑडिट होता है ना, सो ऑडिटर के ऑब्जेक्शन से बचने के लिए ऐसा करना जरूरी है।
1: ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आजकल किसी की मनमानी थोड़ी ही चलती है, अब पेमेंट होगा तो ऑडिटर तो देखेगा ही उसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप तो सब समझते हैं।
1: पर इसके लिए मुझे क्या करना होगा सर।
0: कुछ नहीं, बस एक फॉर्मल टेस्ट होगा, 2-3 लोगों की पैनल बैठ जाएगी, उसमें वो ये देखेगी कि आपका नॉलेज कैसा है।
1: ऐसा क्यों सर।
0: अगर उस टेस्ट में आप फेल हो गए तो कॉलेज आपकी पूरी फीस मय ब्याज खर्चे के साथ वापस कर देगी और फेल रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लगा देगी।
1: और अगर मैं सर फेल ना हो पाया तो।
0: भाई तब तो मजबूरी है, मैनेजमेंट इतना तो देखेगा ही ना कि कॉलेज ने आपको ठीक से नॉलेज दिया है कि नहीं, आखिर कॉलेज की भी चूक दिखनी तो चाहिए ना।
1: ओके ठीक है सर, मैं तैयार हूँ।
0: सिट डाउन मिस्टर चतुरसेन।
1: जी सर।
0: मैं पैनल से आपका परिचय करा दूं।
1: जी।
0: ये है प्रोफेसर मिश्रा।
1: जी।
0: हिंदी के अध्यापक हैं। और ये है मिस्टर श्रीवास्तव।
2: हेलो।
0: गणित पढ़ाते हैं।
1: जी नमस्ते सर।
0: ये दोनों लोग हमारे पैनल के 2 मेंबर हैं और तीसरा मेंबर और चेयरमैन मैं खुद हूँ।
1: आपको भी नमस्ते सर।
0: नमस्ते, वेरी क्लेवर। मैं आपसे जनरल नॉलेज और दीगर विषयों के सवाल पूछूंगा, इन सवालों के जो भी जवाब आपको आते हैं उन्हें ठीक ठीक देना है, कोई चीटिंग वगैरह नहीं करनी है, बिल्कुल ऑनेस्टली। और हाँ, तीनों मेंबर्स के 100-100 मार्क्स हैं, यानी कुल मिलाकर 300 मार्क्स, पास होने के लिए आपको पाने होंगे 40%, यानी कुल मिलाकर 300 में से 120 नंबर। तो तैयार हैं आप।
1: यस सर।
0: मिश्रा जी शुरुआत आप कीजिए।
2: हाँ तो चतुरसेन, मेरा पहला प्रश्न हिंदी व्याकरण से है और आपको ये बताना है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से दोहराता हूँ, हिंदी में वचन कितने होते हैं।
1: सर 7।
2: सोच कर उत्तर दीजिए, सोच कर। मेरा प्रश्न है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। एक क्लू देता हूँ आपको, वचन को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेजी में नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। आपको बताना इस तरह है कि हिंदी में कुल कितने नंबर यानी कि वचन होते हैं।
1: कह दिया ना सर, 7 वचन, फाइनल आंसर।
2: हाँ, वो कैसे पैनल को समझाएंगे आप।
1: बिल्कुल सर, हमारे यहाँ शादी के समय वर और वधु एक दूसरे को 7 वचन देते हैं।
2: हाँ।
1: तो फिर हिंदी में कितने वचन हुए, साथ ही ना।
2: चलिए छोड़िए, गोली मारिए वचन वचन को। हम आपसे दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि हिंदी भाषा के वे कौन से कवि हुए हैं जो दोनों आंखों से अंधे थे?
1: अंधे कवि?
2: हाँ,
1: अंधे कवि सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है।
2: एक क्लू देता हूँ आपको।
1: हाँ।
2: वो एक भक्त भी थे और उनके नाम के अंत में दास आता है।
1: सर याद आ गया।
2: हाँ।
1: तुलसीदास।
2: हाँ, तुलसीदास। मगर वो कैसे?
1: सर तुलसीदास ही थे ना।
2: हाँ।
1: जो भरी बरसात में अपनी वाइफ से मिलने के लिए सांप को रस्सी समझकर छत पर चढ़ गए थे। अब ये काम तो कोई अंधा ही कर सकता है ना सर।
2: ठीक ठीक। अब अपना तीसरा प्रश्न आप ध्यान से सुनिए।
1: जी।
2: मैं एक कविता की पहली पंक्ति आपको सुना रहा हूँ। आपको बताना यह है कि इस कविता के रचयिता कौन है। हाँ, तो कविता की पंक्ति है, मानुष हो तो वही रसखान, बसे ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन।
1: सर ये कविता तो हमने कभी सुनी ही नहीं सर।
2: अरे नहीं भाई, ये तो बहुत ही सामान्य कविता है और हिंदी की कक्षा में पढ़ाई ही जाती है। चलिए मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ।
1: जी।
2: जिससे आपको संपूर्ण प्रसंग याद आ जाए। कवि रसखान कहते हैं कि हे प्रभु, अगले जन्म में यदि आप मुझे मनुष्य बनाना तो उस गांव का ग्वाला बनाना जो ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में रहता है। चलिए चलिए, अब बताइए इसके रचयिता का नाम क्या है, बता सकते हैं ना आप?
1: जी सर, गोविंदा।
2: गोविंदा?
1: लॉक कर दीजिए सर, यही है।
2: अरे गोविंदा, अरे भाई वो कब से कविता लिखने लगा?
1: सर मैं शर्त लगा सकता हूँ आपसे, गोविंदा को छोड़कर कोई और ऐसी कविता लिखी ही नहीं सकता।
2: अरे
1: अरे, ग्वालों के संग गोविंदा नहीं रहना चाहेगा तो भला और कौन रहना चाहेगा सर।
2: ठीक है चतुरसेन, आपका अगला प्रश्न है कि हाँ हाँ, विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या है?
1: विद्या शब्द का पर्यायवाची?
2: हाँ।
1: सर मुझे नहीं मालूम।
2: अरे भाई ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कॉलेज आने वाले सभी विद्यार्थी इसे पाना चाहते हैं और हमारी संस्कृति में इन्हें देवी भी कहा जाता है। नृत्य संगीत जैसी कलाएं इन्हीं के दम पर हैं। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या है।
1: जी जी सर, बिल्कुल अच्छे से समझ गया मैं।
2: बताइए।
1: श्री देवी।
2: श्री देवी? अरे मगर वो कैसे भाई?
1: देखिए सर, वो एक देवी भी है और एक जमाने में कॉलेज स्टूडेंट्स में इनकी दीवानगी भी काफी थी। और नृत्य संगीत, ओ हो, वो तो पूछिए ही नहीं सर। नगीना फिल्म देख लीजिए ना आप, आपको खुद जवाब मिल जाएगा सर।
2: अरे श्रीमान प्रिंसिपल महोदय, मेरा तो सर दर्द होने लगा, मैं कुछ समय का विश्राम चाहता हूँ।
0: ठीक है मिश्रा जी, विश्राम कीजिए, अब बारी श्रीवास्तव जी की है। आइए श्रीवास्तव जी।
3: धन्यवाद जी। चतुरसेन जी, मेरा सवाल बहुत ही आसान है। आप मुझे ये बताइए कि एक आदमी अगर किसी काम को दो दिन में पूरा करता है तो दो आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? सवाल एक बार फिर से दोहराता हूँ मैं।
1: जी जी सर।
3: एक आदमी अगर किसी काम को दो दिन में पूरा करता है तो दो आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे?
1: सर 2 × 2 = 4। सर 4 दिनों में।
3: थोड़ा सोच कर चतुरसेन, ये गणित का सवाल है, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। अरे भाई जब आदमी बढ़ेंगे तो दिन तो कम लगने ही है ना।
1: सर मैंने सोचकर ही उत्तर दिया है और मेरा उत्तर बिल्कुल सही है।
3: मगर कैसे, समझाएंगे आप हमें?
1: देखिए सर, जब एक आदमी काम करेगा तब तो वो केवल काम करेगा और काम को 2 दिनों में निपटा देगा। लेकिन जब 2 आदमी काम करेंगे तब वो काम कम बातें ज्यादा करेंगे, तो 2 दिन से ज्यादा तो लगेंगे ही ना।
3: बहुत सही, क्या गणित है। अच्छा फिर अगर चार आदमी कर दिए जाएं तो?
1: फिर तो काम ही नहीं खत्म होगा सर।
3: वो कैसे?
1: अरे सर फिर तो वहां गुटबंदी शुरू हो जाएगी, दो दो लोगों के दो गुट बन जाएंगे और ये दोनों गुट आपस में लड़ पड़ेंगे, फिर क्या सिर्फ फुटबॉल हो जाएगी और चार के चारों हवालात पहुंच जाएंगे। अब आप ही बताइए ना, क्या ऐसे में काम खत्म हो सकता है?
3: अरे बाप रे, इतनी गहरी पढ़ाई तो हमने भी कभी नहीं की। अच्छा गोली मारी आदमी आदमी को, मैं एक बहुत ही आसान सवाल पूछता हूँ आपसे। एक पेंसिल का दाम एक रुपए है तो 12 पेंसिलों का दाम क्या होगा?
1: 12 पेंसिलों का, 12 पेंसिलों का सर 10 रुपया।
3: 10 रुपया? मगर वो कैसे?
1: सर 10 पेंसिलें लेने पर 2 पेंसिलें फ्री में मिल जाएंगी, बस हो गया। 12 पेंसिलें और 10 रुपए, हमारे मोहल्ले में स्टेशनरी वाला देता है सर।
3: अच्छा अच्छा, तो अब ये बताइए कि एक कार निर्माता कंपनी का दावा है कि उसकी बनाई कार 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर का सफर करती है, तो 5 लीटर पेट्रोल में वो कितने किलोमीटर का सफर करेगी?
1: सर 50 किलोमीटर का।
3: मगर कैसे?
1: सर देखिए, कंपनियों के दावे 50% से ज्यादा सही होते ही नहीं है। ऐसे में वो कार 5 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर से ज्यादा जा ही नहीं सकती। हाँ कम जरूर जा सकती है।
0: ठीक है चतुर्सेन, अब आप हमारे सवालों के जवाब दीजिए।
1: जी,
0: अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है?
1: अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम, वो तो दुनिया जानती है सर, ओसामा बिन लादेन।
0: मगर ये तो गलत जवाब है भाई, वो ओसामा नहीं बल्कि ओबामा है।
1: हाँ तो ओबामा बिन लादेन कर दीजिए ना सर, आखिर बा और सा का फर्क ही है ना, बोलचाल में इतना तो चलता है।
0: अरे बा और सा का ही फर्क नहीं, बिन लादेन का भी फर्क है। अरे भाई अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम में बिन लादेन नहीं आता।
1: आपको कैसे मालूम कि नहीं आता? हमने तो जब जब अमेरिका पढ़ा तब तब बिन लादेन पढ़ा, यहाँ तक कि इस बार का इलेक्शन भी अमेरिका में बिन लादेन का हल्ला पीट कर किया गया सर, और जीता भी गया। माफ कीजिएगा सर, मेरा जनरल नॉलेज आपसे अच्छा है।
0: अच्छा, अब आप ये बताइए कि ताज किसने बनवाया था?
1: बहन छायावती ने।
0: मगर वो कैसे?
1: सर यही तो है, आप अखबार बिल्कुल नहीं पढ़ते। ताज कॉरिडोर का मामला कितना उछलता रहा पेपरों में, याद कीजिए, बेचारी छायावती ने जैसे गुनाह कर दिया जो ताज बनवा दिया, बड़ी मुश्किल से पिंड छूटा उसका, वो भी कोर्ट में जाकर।
0: चलिए अब एक सवाल अर्थशास्त्र पर, इकोनॉमिक्स। प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर होता है?
1: सर जो कर आंखों के सामने वसूल किया जाए वो प्रत्यक्ष कर, और जो आंखों में धूल झोंक कर वसूल किया जाए वो अप्रत्यक्ष कर होता है।
0: वेरी गुड। एक उदाहरण देंगे इन करों का?
1: बिल्कुल सर, लूट प्रत्यक्ष कर है और जेबकटी अप्रत्यक्ष कर।
0: अच्छा अब एक आखिरी सवाल।
1: जी,
0: एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और किसी जगह पहुंचने में उसे 2 घंटे लगते हैं, तो बताइए मेरी उम्र कितनी है?
1: सर जोड़ने दीजिए, 18 + 18 = 36। हाँ सर 36 साल।
0: करेक्ट आंसर। मगर कैसे निकाला आपने भाई?
1: सर मेरा एक भाई है जो आधा पागल है और उसकी उम्र 18 साल है। अब आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए, आपकी उम्र हुई 18 + 18 मतलब 36 साल।
0: ठीक है चतुर्सेन, ठीक है, आप थोड़ी देर बाहर इंतजार करें, तब तक हम आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं।
1: जी बेहतर सर।
0: अरे क्या किया जाए भाई, ये चतुर लड़का तो बड़ा कन्हैया है, जानबूझकर सारे सवालों के जवाब गलत दे रहा है।
3: जी सर।
0: इस आधार पर तो हमें इसकी फीस लौटानी ही होगी।
3: सर हमारे पास एक आइडिया है।
0: वो क्या?
3: सुनिए सर,
0: अरे वाह वाह वाह वाह वाह, फिर बुलाइए बुलाइए उसे बुलाइए बुलाइए। चतुर्सेन जी, आप इस परीक्षा में उच्च अंकों से अनुत्तीर्ण हुए, बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। आपको उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए थे 40%, लेकिन आपने महज 0% अर्जित करके अनुत्तीर्ण होने का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है। हम आपका क्लेम स्वीकार करते हैं।
1: जी सर,
0: हमने मान लिया कि हम आपको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे सके, इसीलिए मैं ब्याज फीस वापसी का आपका हक बनता है।
1: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
0: अरे इतना मच मचाइए नहीं, ये लीजिए 17,542 रुपए का आपका चेक।
1: 17,542, मगर ये तो गलत है सर। 3 सालों की पढ़ाई के दौरान कुल मिलाकर मैंने 36,000 तो केवल फीस के दिए हैं। इसके बाद 2,000 योगा के नाम पर, 7,000 कंप्यूटर के नाम पर, 4,000 स्पोर्ट्स के नाम पर लिए गए हैं। कुल मिलाकर हुए 49,000 रुपए। इस राशि पर अगर आप केवल 10% का भी ब्याज लगा लीजिए तो ब्याज हो गया 4,900, यानी कुल मिलाकर 53,900 रुपए। और इसकी जगह आप केवल 17,542 देना चाहते हैं मुझे, ये बेईमानी है सर, दिस इज चीटिंग।
0: चतुर्सेन, आपने बिल्कुल सही हिसाब लगाया। इस कॉलेज ने आपको बिल्कुल सही तालीम दी है, प्रॉपर एजुकेशन। यह आपका अंतिम टेस्ट था जो 300 नंबरों का था, इसमें आपको मिले हैं 300 में से 300 नंबर। इस तरह कुल मिलाकर 600 में से आपको मिले 300 नंबर। 50% मार्क्स के साथ आप टेस्ट में उत्तीर्ण घोषित किए जाते हैं और फीस वापसी का आपका क्लेम रिजेक्ट किया जाता है। अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं।
1: नहीं नहीं सर, ये चीटिंग है सर, आपने तो बताया ही नहीं था सर, ये टेस्ट का हिस्सा है।
2: हाँ, और आप क्या कह रहे थे चतुर्सेन?
0: बताइए बताइए,
2: क्या कर रहे थे आप? जानबूझकर प्रश्नों के गलत जवाब दे रहे थे।
0: अभी हमारे है
2: वो क्या था आखिर? वो पुरानी कहावत भूल गए आप, जैसे को तैसा।
1: सर सर सर, ऐसा ना करिए सर, मैं 17,542 पर ही कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूँ सर। लाइए सर लाइए, ये चेक मुझे दे दीजिए।
0: बिल्कुल नहीं भुंजी, भांग भी नहीं मिलेगी तुमको। गेट आउट
1: सर,
0: आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर।

तो श्रोताओं, ये था हमारे हास्य नाटक फीस। इसका आलेख तैयार किया था प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: देशभक्ति को समर्पित पहला रेडियो स्टेशन
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। शाम के 5 बजे हैं, सांध्यकालीन सभा में आप सभी का स्वागत है। शुभ संध्या। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 164 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं विश्वेदेवा, वाक आप, धूम सोम, अग्नि सूर्य, वायु सरस्वती, साध्य पर्जन्य अग्नि और सरस्वान। छंद है त्रिष्टुप, जगति, प्रस्तार पंक्ति और अनुष्टुप।
1: गायत्रेण प्रतिमीमीते अर्कमर्केण साम त्रैष्टुभेन वाकम्, वाकेन वाकम् द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्तवाणी ही। परमात्मा ने गायत्री छंद से प्राण की रचना की, ऋचाओं के समूह से सामवेद को बनाया, त्रिष्टुप छंद से यजुर्वाक्यों की रचना की तथा दो पदों एवं चार पदों वाले अक्षरों से सातों छंदमय वाणियों को प्रादुर्भूत प्रकट किया। जगता सिंधुम दिव्यस्त भायद्र थंतरे सूर्यम पर्यपश्यत गायत्रस्य समिधस्ति स्र आहुस्ततो महना प्र रिरिचे महित्वा। गतिमान सूर्यदेव द्वारा प्रजापति ने द्युलोक में जलों को स्थापित किया। वृष्टि के माध्यम से जल, सूर्यदेव और पृथ्वी संयुक्त होते हैं। तब सूर्य और द्युलोक में सन्निहित प्राण जल वृष्टि के द्वारा इस पृथ्वी पर प्रकट होता है। गायत्री के तीन पाद अग्नि, विद्युत और सूर्य, पृथ्वी, द्यु और अंतरिक्ष हैं। उस प्रजापति की तेजस्विता से ही ये तीनों पाद बलशाली होते हैं, ऐसा कहा गया है। उपहवये सुदुघाम धेनुमेताम सुहस्तो गोधु गुत गोहदेनाम श्रेष्ठम सवम सविता साविषण्णो भीद्धो घर्मस्तुदु सुप्रवोचम। दुग्ध सुख प्रदान करने वाली गौ को हम आवाहन करते हैं। इस गौ के दुग्ध का दोहन कुशल साधक ही कर पाते हैं। सविता देव हमें दुग्ध प्रदान करें। तपस्वी एवं तेजस्वी ही इसको ग्रहण कर सकता है, ऐसा कथन है। हिं कृणवती वसुपत्नी वसूनाम वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात दुहामश्विभ्याम पयो अघन्येयम् सा वर्धताम महते सौभगाय। कभी भी वध न करने योग्य गौ मनुष्यों के लिए अन्न, दुग्ध, घृत आदि ऐश्वर्य प्रदान करने की कामना से अपने बछड़े को मन से प्यार करती हुई, रंभाती हुई बछड़े के पास आ जाती है। वह गौ मानव समुदाय के महान सौभाग्य को बढ़ाती हुई प्रचुर मात्रा में दुग्ध प्रदान करती है। गौरमी मेदनु वत्सम मिशंतम मूर्धानम हिंकृणोन मातवा उ सृक्वाणम घर्ममभि वावशाना मिमाति मायुम पतये पयोभिः। गौ स्नेह से आंखें मीचे हुए बछड़े के समीप जाकर रंभाती है। बछड़े के सिर को चाटने के लिए वात्सल्यपूर्ण शब्द करती है। उसके मुंह के पास अपने दूध से भरे थन को ले जाती हुई शब्द करती है। वह दूध पिलाते हुए शब्द करते हुए बछड़े को संतुष्ट भी करती है। अयम स शिंगते येन गौरभीव्रता मिमाति मायुम ध्वसनावधिश्रिता सा चित्तिभिर्नि हिचकार मर्त्यम विद्युद्भवन्ति प्रति वव्री मौहत। वत्स गौ के चारों ओर बिना शब्द के अभिव्यक्ति करता है। गौ रंभाती हुई अपनी भाव भरी चेष्टाओं से मनुष्यों को लज्जित करती है। उज्ज्वल दूध उत्पन्न कर अपने भावों को प्रकाशित करती है। अनच्छये तुरगातु जीव मेजद ध्रुवम मध्य आ पस्त्यानम जीवो मृतस्य चरति स्वधा भिरमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः। श्वसन प्रक्रिया द्वारा अस्तित्व में रहने वाला जीव जब शरीर से चला जाता है तब यह शरीर घर में निश्चल पड़ा रहता है। मरण धर्मा शरीरों के साथ रहने वाली आत्मा अविनाशी है, अतएव अविनाशी आत्मा अपनी धारण करने की शक्तियों से संपन्न होकर सर्वत्र निर्बाध विचरण करती है।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 164 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम पुत्रपाठी।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: मैं हूँ मितुल प्रदीप। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया। उनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनते रहे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति संगीत। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम भक्ति संगीत में। प्रभु से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि और सकारात्मकता बनी रहे, आपका हर दिन मंगलमय हो और हर संध्या भक्तिमय हो। आइए सुनते हैं ये भक्ति रचना।

श्रोता, दिन भर की व्यस्तताओं के बाद ये समय है मन को शांत करने का, आत्मा को सुकून देने का और प्रभु के चरणों में अपने भाव अर्पित करने का। जब संध्या की आरती की ध्वनि वातावरण में गूंजती है, दीपक की लौ जगमगाती है और मंदिरों की घंटियां श्रद्धा का संदेश देती हैं, तब ऐसा लगता है मानो पूरा वातावरण ईश्वरमय हो गया है।

श्रोताओं, कुछ पल संसार की चिंताओं से दूर होकर प्रभु के श्री चरणों में बैठते हैं और भक्ति संगीत की मधुर स्वर लहरियों के साथ अपने मन को आनंदित और शांति से भर लेते हैं। लीजिए सुनिए ये भक्ति रचना।

श्रेष्ठ विचार ही श्रेष्ठ जीवन का निर्माण करते हैं। मन में जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही व्यक्तित्व विकसित होता है। इसलिए प्रतिदिन अपने मन में सद्भाव, सत्य और करुणा का बीजारोपण कीजिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: और इसी के साथ हमारा आज का एक कार्यक्रम भक्ति संगीत अब यहीं समाप्त होता है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
2: नमस्कार आदाब, मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
3: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: यह है रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और आप ध्रुव संगारी बिलाल चिश्ती को इस पर सुन रहे हैं। रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग। आज का कार्यक्रम केंद्रित है बिहारी ठाकुर की पुण्यतिथि पर।

भोजपुरी अंचल के मन की मिट्टी को नम करने वाले ऐसे अनगिनत गीत भारतीय संस्कृति की धरोहर हैं। आज भी इसे गाते या सुनते हुए यहाँ के लोगों की आंखें भर आती हैं। लोक नाट्य की परंपरा से उभरे ये गीत यहाँ के लोगों की संवेदनाओं से बहुत गहरे तक जुड़े हुए हैं। भोजपुरी के अमर लोक नाट्य कलाकार भिखारी ठाकुर की ये थाती है, जो एक साथ एक कवि, गीतकार, नाटककार, लोक गायक और संगीतकार, नाट्य निर्देशक और अभिनेता थे। चूंकि उनकी मातृभाषा भोजपुरी थी, इसलिए अपने काव्य और नाट्य के लिए उन्होंने भोजपुरी को ही परंपरा से ग्रहण किया। बिहार में नाच विधा के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं भिखारी ठाकुर, 20वीं शताब्दी के महान लोक नाट्य कलाकार, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भिखारी ठाकुर ने सन 1917 में अपनी नाच मंडली की स्थापना की और विदेशिया, गबर घिचोर, बेटी बेचवा, भाई विरोध, गंगा स्नान जैसे अनेक नाटकों, सामाजिक धार्मिक प्रसंग गाथाओं और गीतों की रचना की। अपने नाटकों और गीत नृत्यों के माध्यम से उन्होंने भोजपुरी समाज की तत्कालीन विसंगतियों और कुरीतियों को नाच के मंच पर बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उनके नाच में किया जाने वाला उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है विदेशिया। उनकी लोकप्रियता का ये आलम था कि उनकी नाच मंडली असम, बंगाल और नेपाल के अनेक शहरों में जाकर टिकट पर नाच दिखाती थी, ठीक वैसे ही जैसे फिल्में दिखाई जाती थीं। विदेशिया की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि इस पर फिल्म भी बनी। लेकिन जो बात भिखारी ठाकुर की प्रस्तुति में थी, वो बात फिल्म में नहीं बन पाई। भिखारी ठाकुर के जीवन को देखें तो लगता है कि बेशक कलाएं सीखी सिखाई जाती रही हैं, तराशी जाती रही हैं, रियाज से परिष्कृत होती रही हैं, लेकिन कुछ कलाकारों को ईश्वर स्वयं गढ़ रचकर धरती पर भेजता है और वो अपने हिस्से की सृजना करके चले जाते हैं। भिखारी ठाकुर एक ऐसे ही महान लोक कलाकार थे। भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को बिहार के सारण जिले के कुतुबपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम दल सिंगार ठाकुर और माताजी का नाम शिवकली देवी था। ये परिवार गांव में पेशे के रूप में हजामत बनाना, चिट्ठी नेवतना, शादी ब्याह, जन्म श्राद्ध और अन्य अनुष्ठानों और संस्कारों के काम किया करता था। भिखारी ठाकुर ने 9 वर्ष की उम्र में स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता था। 1 साल पढ़ाई के बाद भी उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं हुआ। अब वो घर की गाय चराने का काम करने लगे। माटी से जुड़े लोकगीत उन्हें पुकारते और वो गुनगुनाते हुए उनके पीछे चल पड़ते हैं।

एक साल पढ़ाई के बाद भी भिखारी ठाकुर को जब अक्षर ज्ञान नहीं हुआ, तब उन्होंने अपने पारिवारिक पेशे को ही अपनाया और गांव में काम करने लगे। काम के बीच ही उन्हें दोबारा पढ़ने की इच्छा हुई और गांव के ही एक मित्र ने उन्हें पढ़ाया। इसी दौरान उनकी शादी भी हुई। अपने विषय में भिखारी ठाकुर ने स्वयं लिखा है, अल्पकाल में लिखे लगली तेकरा बाद खड़गपुर भगली, ललसा रहे जिबहरा जाई छुरा चलाकर दाम कमाई, गईली मेदनीपुर के जिला ओहिजे कुछ देखनी रमलीला, घर पे आके लगनी रहे गीत कवित कतहू केहू कहे, अर्थ पूछी पूछी के सीखी दोहा छंद निज अक्षर लिखी। इस तरह शादी के बाद रोजी रोटी की तलाश में वो खड़गपुर और मेदिनीपुर गए। यहां उन्होंने रामलीला देखी। बंगाल से जब वो वापस लौटे तो गीत कवित सुनने लगे, लोगों से उसका अर्थ पूछकर उसे समझने लगे और धीरे धीरे अपना गीत कवित दोहा छंद लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा कर रामलीला का मंचन भी किया। वो स्वयं लिखते हैं, निजपुर में करके रामलीला नाच के तब बनहली सिलसिला, 30 बरिस के उमिर भइल बेधलस खूब कलिकाल के मईल, नाच मंडली के धरि साथ लेक्चर दिही जय कहीं रघुनाथ, बरजत रहलन बाप महतारी नाच में तू मत रह भिखारी, चुप्पे भाग के नाच में जाई बात बना के दाम कमाई। इस तरह उनके इस जीवनी गीत से मालूम होता है कि 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी नाच मंडली बना ली थी। उनके माता पिता उन्हें नाच में जाने से मना करते थे, लेकिन वो छुपकर नाच में जाते और वहां कलाकारी दिखाकर पैसे कमाते थे। इससे ये भी मालूम होता है कि भिखारी ठाकुर नाच विधा के कलाकार थे और उनसे पूर्व भी नाच विधा का प्रचलन था और 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी नाच मंडली बना ली थी। यानी सन 1917 में उनकी रंगमंचीय यात्रा आरंभ होती है। भिखारी ठाकुर ने राम सुहाग सिंह को एक साक्षात्कार के दौरान बताया था कि मैं कुछ कुछ गाना बजाना जानता था। मेरे एक साथी राम सेवक ठाकुर ने मेरे गाने की तारीफ की और कवित्त छंद आदि में मात्रा की गिनती के विषय में जानकारी दी। इसके साथ ही बाबू हरिनंदन सिंह ने मुझे सबसे पहले राम गीत का पाठ पढ़ाया। इस तरह हम पाते हैं कि भिखारी ठाकुर का आरंभिक जीवन एक सामान्य ग्रामीण युवक की तरह ही बीता। यानी एक युवक जो अपने पारिवारिक पेशे को अपनाता है, ब्याह करता है, कमाई के लिए बाहर जाता है, अपने आसपास रामलीला और नाच देखता है, इन कलाओं से इतना प्रभावित होता है कि धीरे धीरे लिखना और गाना शुरू कर देता है। जो लोग आसपास हैं, उन्हीं से कुछ सीखता सिखाता है और फिर अपनी नैसर्गिक प्रतिभा से एक महान कलाकार बन जाता है। एक सामान्य ग्रामीण युवक की तरह जीते हुए भी भिखारी ठाकुर के भीतर कुछ खास बातें थीं, और वो बातें थीं उनकी संवेदनशीलता, मानवीय करुणा से भरा हुआ उनका हृदय और सामाजिक सरोकार। समाज की कुरीतियों पर उनकी पैनी नजर थी। अपने आसपास जो कुछ भी वो घटित होते देखते या सुनते थे, उससे उनकी गहरी संलग्नता थी और अपने समाज में प्रचलित गीत नृत्य और नाट्य विधाओं में वो उसे ढालकर कहने लगते थे। कहा जा सकता है कि भारत की दुर्दशा पर जैसा चीतकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की कलम से निकला था, अपने आसपास की सामाजिक विसंगतियों को देखकर भिखारी ठाकुर की आत्मा भी कुछ वैसा ही विलाप कर उठती थी।

भिखारी ठाकुर का युग भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का युग था। ये वो समय था जब समाज सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन का प्रचार प्रसार पूरे देश में चल रहा था। गांव में उथल पुथल थी। भारत की सामंती संस्कृति में पहली बार पूंजीवादी संस्कृति हस्तक्षेप कर रही थी। वर्ण व्यवस्था रखने की कोशिशें जारी थीं। गृह उद्योग नष्ट हो रहे थे। लकदक करती विदेशी वस्तुएं गांव के हाट में प्रवेश करने लगी थीं और ग्रामीण नौजवान शहर की ओर रुख कर रहे थे। ये पलायन वृत्ति उस समय की बड़ी समस्या थी। इसी को केंद्र में रखकर भिखारी ठाकुर ने विदेशिया नाटक की रचना की, जो उनका सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक साबित हुआ। इस नाटक में संवाद और गीत संगीत ही इसे प्रभावी बनाते हैं। नायिका सुंदरी के वियोग में डूबे स्वर जैसे देखने वालों को भी अपने साथ डुबो लेते हैं, जब वो कहती है, करी के गवनवा भवनवा में छोड़कर अपने परैलन पुरबवा बलमुआ, अखियां से दिन भर गिरे लोर ढर ढर, बटिया जोहत दिन बीतेला बलमुआ। भाई विरोध नाटक में उन्होंने भाई भाई के झगड़े को मुख्य रूप से दिखाया है, जिसकी जड़ में एक महिला है। समाज में विधवाओं की स्थिति को दर्शाते हुए उन्होंने विधवा विलाप नाटक की रचना की। इसी तरह पिया निसैल में उन्होंने समाज में व्याप्त नशाखोरी की समस्या की चर्चा की है। नाटक गबर घिचोर विस्थापन की समस्या के साथ ही स्त्री के अपने बेटे पर अधिकार की चर्चा करता है, तो वहीं नाटक गंगा स्नान में बुजुर्गों की उपेक्षा को दिखाया गया है। बेटी बेचवा उनका एक बहुत मार्मिक नाटक है, जिसमें एक निर्धन पिता मजबूरी में एक बूढ़े व्यक्ति से अपनी छोटी सी बेटी की शादी करके पैसे ले लेता है। इस बेमेल विवाह से लड़की का दर्द छलक पड़ता है और वो कहती है, रुपिया गिनाई लेहला पगहा धराई देहला, चेरिया से छेरिया बनवला हूँ बाबूजी, केई ऐसन जादू कैल पागल तोहार मती भइल, नेटी काटी बेटी भसियवला हूँ बाबूजी। बेटी बेचवा गीत आज भी भोजपुरी अंचल में आंसुओं की धार के साथ गाया और सुना जाता है। भिखारी ठाकुर ने अपने नाटकों में सामाजिक विसंगतियों से जुड़े पक्षों का एक ऐसा समा बांधा कि आज अभिव्यक्ति की उनकी एक अपनी विशिष्ट शैली है। उन्होंने नाटकों के अलावा भगवान शंकर, भगवान श्रीराम, श्री कृष्ण की लीलाओं पर भक्तिपद और गाथा गायन भी लिखा। इसके साथ ही उन्होंने अनेक देवी देवताओं की आरतियां भी लिखीं। सन 1938 से 1962 के बीच उनकी 3 दर्जन के लगभग पुस्तकें छपीं। अपने समय में वो नाच विधा के स्टार कलाकार बन गए थे। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर और अनगढ़ हीरा कहा था। जगदीश चंद्र माथुर ने उन्हें भरत मुनि की परंपरा का प्रथम लोक नाट्य कलाकार कहा, तो वहीं समालोचक महेश्वराचार्य ने उन्हें जन कवि कहकर संबोधित किया। 10 जुलाई सन 1971 को उन्होंने अंतिम सांस ली और अपने पीछे लोक नाट्य कला की अथाह विरासत छोड़ गए। उनकी सर्जना से प्रस्फुटित होती माटी की सूंधी महक आज भी जन मन को डुबो लेती है। ऐसे विलक्षण कलाकार को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो शहीद

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: हेलो पप्पू पेजर बोल रहा हूँ, ए झंटू ले झटक दादा ना मटक और मेरी बात गले में सटक।
2: नमस्कार, मैं हूँ सतीश कौशिक, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आमने सामने। इसके अंतर्गत आज सुनिए एलपीजी की बचत और उसका संरक्षण कैसे करें, इस विषय पर विषय विशेषज्ञ आशा पाठक से मोहम्मद दानिश की खास बातचीत।
2: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। मैं हूं दानिश। कार्यक्रम आमने सामने में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हर घर से जुड़ा है, एलपीजी गैस का सही इस्तेमाल और उसका संरक्षण। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में तरल पेट्रोलियम गैस कहते हैं। यह हमारे घरों में सबसे जरूरी चीजों में से एक है। इसका मुख्य उपयोग खाना बनाने में होता है। यह गैस कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल को साफ करने की प्रक्रिया से निकलता है। भारी दबाव डालकर इसे तरल रूप में बदला जाता है ताकि सिलेंडरों में भरा जा सके और आसानी से कहीं भी ले जाया जा सके। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं विषय विशेषज्ञ आशा पाठक जी। नमस्कार मैम।
4: नमस्ते, आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
3: मैम, सबसे पहले हम इस विषय पर आपसे ये जानना चाहते हैं और हमारे श्रोता भी, कि एलपीजी गैस का सही इस्तेमाल और उसका संरक्षण किस तरह से किया जाए।
4: बहुत ही आवश्यक एक प्रश्न है, क्योंकि एलपीजी हर घर में भोजन तो बना ही रहा है और साथ में लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रदान कर रहा है। कहीं अगर रात में कोई मेहमान आ जाए और चूल्हा जलाना पड़ता तो आप समझ सकते हैं कि उस महिला का मानसिक स्थिति जो है वो क्या होती है, उस समय लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो एक प्रकार से एलपीजी जो है परिवार में खुशियां लाता है और ये सबसे ज्यादा बोलना सुविधाजनक ईंधन है और साथ में सुरक्षित ईंधन है। तो एलपीजी का उपयोग जो है वो घर घर में तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ ही आज जो है एलपीजी से चलने वाली गाड़ियां भी हैं और एलपीजी इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होता है। तो एलपीजी एक प्रकार से इसीलिए ये इस्तेमाल होता है इतना ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ही सुविधाजनक ईंधन है। इसको एक तो कन्वीनियंट है कि इसको हम स्टोर कर सकते हैं या तो फिर हम उसको पाइपलाइंस के जरिए हम भी ले सकते हैं। ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईंधन है।
3: तो क्या एलपीजी एक सीमित संसाधन है और इसे बचाना क्यों जरूरी है?
4: जी हाँ, देखिए क्या होता है, क्योंकि एलपीजी आपने बताया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, पेट्रोलियम मींस वही जो पेट्रोलियम से निकला क्रूड ऑयल जिसको हम कच्चा तेल बोलते हैं, तो ये कच्चे तेल का ही एक मतलब उसमें से फ्रैक्शन है। दो तरीके से वैसे तो बनाया जाता है ये, थोड़ा इसीलिए इसका उत्पादन पेट्रोल के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसको हम जो कई बार जो कुएं होते हैं तेल के उसके ऊपरी सतह पर एक गैस हमको मिलती है, उसे आप बाय प्रोडक्ट बोल सकते हैं पेट्रोलियम कच्चे तेल का, उसे हम प्राकृतिक गैस बोलते हैं। या तो फिर कई कुएं ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ गैस होती है, प्राकृतिक गैस होती है, तो उससे भी इसको बनाया जाता है। और साथ में क्रूड ऑयल के जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसको हम कहते हैं, तो उसमें सबसे ऊपरी सतह के ऊपर जो है हमें एक गैस मिलती है, तो यही गैस जो है उसको फिर हम लिक्विफाइड रूप में लाते हैं, मतलब तरल बनाते हैं, उसको इतना प्रेशर देते हैं कि वो, इसका एक गुण है ये कि अगर इसको प्रेशराइज किया जाएगा तो ये एक तरल रूप में बन जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा गुण है इसका, उसके कारण ही हम इसे सिलेंडर में भर पाते हैं, नहीं तो 200 ग्राम गैस भी पूरे सिलेंडर को भर लेती, तो हम इसमें 14.2 किलोग्राम गैस भर पाते हैं। मतलब ये मैं किसके बारे में बता रही हूँ, जो घरेलू हम लाल वाला जो सिलेंडर होता है, फिर उसके बाद कमर्शियल सिलेंडर है या अलग अलग, फिर वो उनके मतलब वॉल्यूम्स होते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो एलपीजी जो है इसकी अपने कोई गंध या कोई मतलब कलरलेस है ये, कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, तो अगर ये लीक होगा तो कैसे पता चलेगा आपको। तो इसीलिए इसके अंदर एक मतलब इसे तरल किया जाता है और इसके अंदर एक रसायन मिलाया जाता है जिसे मरकैप्टन भी बोलते हैं, ये इसी की गंध होती, ये जो आपको जब एलपीजी लीक होती है तो आपको समझ में आता है, जो कि एक संकेत होता है कि आप इसको अटेंड करिए, तो हाँ गंध जो है वो ये हमें बताती है। तो ये इस तरीके से एलपीजी जो है इसका संरक्षण हमें इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि पेट्रोलियम से बना है, तो पेट्रोलियम तो एक प्राकृतिक ईंधन प्राकृतिक रिसोर्स है और इसको बनने में लगभग 250-300 करोड़ साल लग जाते हैं, तो इतना लंबा समय इसको बनने में लग रहा है, फिर आप खर्च करने में तो कुछ सेकंड्स में खर्च कर देते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो चाहे एलपीजी हो, हमने तो बहुत इस्तेमाल कर लिया पिछले 50 साल से ही, समझ लीजिए हम इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन आगे के बच्चों का क्या होगा, आगे के जनरेशंस का क्या होगा, जो आगे हमारी बहुएं आएंगी उनका क्या होगा, खाना तो सबको हमेशा रोज ही चाहिए, दोनों टाइम चाहिए, तो इसीलिए इसको संरक्षित करके न केवल हम अपना पैसा बचा रहे हैं बल्कि साथ ही जो भविष्य में जो हमारी जनरेशन आ रही है उनके लिए हम कुछ
3: उनकी भी जरूरतें पूरी हो,
4: तो इसीलिए हमें इसका संरक्षण करना जरूरी है क्योंकि अब ये बहुत कम बचा हुआ है पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी में अंदर से निकाला जाता है किसी फैक्ट्री में तो आप बना नहीं सकते, तो ये एक कारण है कि इसका संरक्षण हमें अवश्य करना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है।
3: घर में एलपीजी की खपत कम करने के आसान तरीके क्या है?
4: बहुत ही आसान से तरीके हैं और ये कोई तरीके ऐसे नहीं है कि एलपीजी में ही इस्तेमाल, एलपीजी में कुछ विशेष अलग भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये वही सब हैं जो कि शायद मेरी दादी भी जब चूल्हा जलाती थी गाँव में तो वो इस्तेमाल करती थी कि वो जो है लकड़ी कम इस्तेमाल हो या सिगड़ी में कोयला कम इस्तेमाल हो, कहीं ना कहीं वही उसका एक थोड़ा दूसरा रूप एलपीजी में आता है, तो ऐसा कुछ नया नहीं है या कुछ टेक्निकल नहीं है इसके अंदर कि कोई नहीं कर सकता इसको। तो पहला तो क्योंकि हम सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिलेंडर के नीचे अगर आप एक लकड़ी का पटा रख दें है ना, लोग आजकल वो एक मतलब स्टैंड टाइप रखते हैं, तो हम ये कहेंगे कि उसकी जगह अगर आप लकड़ी का पटा रख दें, लकड़ी क्या होती है, ये एक कुचालक है ऊष्मा की, तो आपके जो फर्श होता है वो ठंडा है और खासकर ठंड के दिनों में तो और ठंडा हो जाता है, तो अगर वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है सिलेंडर के तो हमारी जो गैस जो है वो थोड़ी नीचे जम जाती है, तो हम ये सोचते हैं कि गैस खत्म हो गई है, लेकिन हो सकता है कि एक दिन की कुछ समय कुछ घंटे तक आप उसको और इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वेस्ट चला जाएगा आपका, तो नीचे आप लकड़ी का पटा रख लीजिए तो ज्यादा कन्वीनियंट आपके लिए, मतलब बचत के हिसाब से हो जाएगा। हाँ, कुछ घंटों का उतना भी, अगर हम ऐसे 1000 सिलेंडर देखें 100 सिलेंडर देखें तो थोड़ा थोड़ा भी बहुत हो जाता है। और जो दूसरे उपाय मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ इनका अगर आप उपयोग कर लें तो 23% तक आपका ईंधन बच जाएगा, मतलब 23% मतलब लगभग एक हफ्ता हो गया,
3: बिल्कुल
4: एक हफ्ते का सिलेंडर अगर आप गैस की बचत कर रहे हैं तो ऐसे आप सोचिए कितने घर, हमारे प्रधानमंत्री जी की भी योजना जो घर घर तक एलपीजी पहुंचाने की थी, तो एलपीजी हम पहुंचा तो रहे हैं लेकिन अगर कमी हो जाएगी तो क्या करेंगे, 23% हम इसी तरीके से बचा सकते हैं। पहला तो आप देखेंगे कि दो आपके बर्नर होते हैं, छोटा एक बड़ा है, कई बार चार बर्नर भी होते हैं, तो आप ये देखिए कि अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप छोटे बर्नर्स का इस्तेमाल करें, छोटे बर्नर या तो फिर बड़ा बर्नर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप फिर उसको एक बार कोई भी, जैसे अगर प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने देखा स्टीम हो गई है उसके अंदर, काफ़ी स्टीम आ गई है, तो फिर आप जो है उसको धीमी आँच पे कर दें। हम लोग क्या करते हैं, मतलब ये एक वाकई सोचने वाला विषय है कि जब हम रसोई का काम करते हैं तो उसको हम सेकेंडरी मान के साथ साथ दूसरे काम भी करते हैं, तो हमारा प्रेशर कुकर वो करीब 8 बार विसल दे चुका होता है, अगर आप अटेंड करें रसोई को अटेंड करें अपन, तो ये हमें पता चल जाएगा कि अब स्टीम बन गई है, तो आप उसको धीमा कर सकते हैं और धीमा करके फिर थोड़ी देर में तेज कर दें, और फिर ऐसा करके आप 3 बार विसल ले लीजिए तो आपका खाना, बल्कि 2 ही बार में आपका खाना बन जाएगा, तो जो है आपका काफी ज्यादा ईंधन बच जाएगा। पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा बर्तन का साइज क्या है, मतलब एज पर जो रिकमेंडेशन है वो ये बोला जाता है कि 25 सेंटीमीटर व्यास का जो बर्तन होता है वो परफेक्ट होता है। तो आप कैसे देखेंगे ये कि अगर जो लॉ जो है वो बर्तन के ऊपर चढ़ रही है, तले के अलावा ऊपर भी चढ़ रही है, तो वो बर्बादी है,
3: छोटे बर्तन
4: तो वो बर्बादी है, तो उसको या तो धीमा कर दीजिए आप, और छोटे छोटे तले के बर्तन इस्तेमाल करेंगे तो नीचे ही सिर्फ उसकी लॉ लगेगी,
3: तली को जो है कवर,
4: तली को कवर करेगा,
3: लॉ जो है कवर करेगा,
4: जी हाँ। तो ये बर्तनों का है, बर्तन पे ही अगर हम बात करें तो आजकल कॉपर प्लेटेड बर्तन आते हैं जो नीचे तली पे रहता है, तो आप पता है कॉपर जो है बहुत अच्छा कंडक्टर है, सुचालक है, हाँ हीट का मतलब, तो वो आप इस्तेमाल करें। उसके अलावा बर्तनों पे ही हम आए तो लिड का इस्तेमाल करें, उस पर ढकना है हमको, आजकल तो बर्तन बहुत अच्छे आ गए हैं, साथ में आपके ढक्कन आते हैं, तो उसी तरह के बर्तन अगर आप इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें, लेकिन एक घर में शायद तीन तीन चार चार प्रेशर कुकर हैं, वो क्यों हैं? एक बार दाल, एक बार चावल, एक में एक्स्ट्रा भी रखा रहता है कुछ है तो मांझना ना पड़े और तीसरे में कर लिया हमने। वो आपकी बात सही है, लेकिन ये तरीका गलत है, क्योंकि प्रेशर कुकर जो बने थे उसमें सेपरेटर्स भी मिलते थे हमको, है ना? आपने देखो अगर डिब्बे, आपकी मम्मी के समय के अगर आपने देखे हो तो डिब्बे थे उसके अंदर, तो एक में दाल एक में चावल ऐसे करके सब्जी बघार के तीसरे में मम्मी डाल देती थी, तो एक साथ में सारा खाना हमारा बन जाता था। तो एक ही बार का उसमें तो तीन चीजें बन गई ना आपकी। तो जहां तक हो सके आप सेपरेटर्स या वो डिब्बों का इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो आप जाके आप ले सकते हैं तो आप उनका इस्तेमाल करें। प्रेशर कुकर अच्छे वाले इस्तेमाल करें आप, महंगे नहीं बोल रही हूँ मैं, ISI मार्क के अच्छे प्रेशर कुकर होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें, तो वो जो है आपके गैस की बचत के भी गारंटी होते हैं। लोकल नया करें, वो थोड़ा आपके लिए दुर्घटना का भी कारण बन जाता है कई बार, तो आप अच्छे वाले जो प्रेशर कुकर है उन्हीं का इस्तेमाल करें। यहाँ पर अगर हम ISI की बात कर रहे हैं तो आपके जो गैस के चूल्हे हैं वो भी जो है आजकल जो हमारा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है वो स्टार रेटिंग जो देते हैं, तो उसमें जैसे फ्रिज पे आपने देखा है 5 स्टार है 4 स्टार ऐसे आप लेते हैं, उसी तरह से गैस के चूल्हे भी आते हैं, उनको हम ग्रीन स्टोव्स भी के नाम से भी जानते हैं, तो उसके अंदर 2 स्टार अगर आप लेते हैं तो आप एक लोकल वो बिना स्टार वाला लोगे तो उससे तो आप समझ सकते हो कि ज़्यादा ही गैस बचत हो, क्योंकि उसी तरह से बनाया गया है उसका उसका बर्नर का डिज़ाइन या सब कुछ इस तरह से बनाया गया है कि वो बचत करेगा आपकी। बर्नर किस तरह से बचाता है, एक तो बर्नर जो लेके आए हैं आप तो उसमें तो वो तो लगा ही हुआ है, लेकिन अब आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसको? देखिए गैस मैंने क्यों बोला था बड़ा कन्वीनियंट ईंधन है ये, क्योंकि ये जलता है तो ब्लू कलर में फ्लेम आती है, तो ब्लू कलर आप भी जानते हैं ये दर्शाता है कि वो ईंधन पूरी तरह जल गया। जब पूरी तरह जल गया तो पर्यावरण के लिए तो कुछ घातक कुछ बचा ही नहीं। लॉ जो है वो ऑरेंज आ रही है मान लेते हैं, इसका मतलब वो संकेत दे रही है कि ये बर्नर गंदा है,
5: खराब हो गया,
4: दाल गिर जाती है कई बार, दूध गिर जाता है तो उसमें चिपक जाता है। तो हम जो है इस चीज का ध्यान रखें कि अगर रोज नहीं तो कम से कम 3 महीने में एक बार आप जो है उसकी सफाई करें, और सफाई में ये भी ध्यान रखें बर्नर की लाइफ इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि कहीं आप गरम गरम बर्नर पे पानी तो नहीं डाल रहे हैं, आप समझ सकते हैं ठंडा गरम तो वो टूटने का भी डर रहता है, ब्रेक हो जाता है, तो आप उसकी जगह क्या ठंडा हो गया बर्नर उसको आप खोल लीजिए, खोलने के बाद में एक भगोने में पानी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा कपड़े धोने वाला पाउडर डालिए, उसमें थोड़ी देर भिगो दीजिए मतलब छोड़ दीजिए उसको, और फिर उसके बाद 15-20 आधा घंटे बाद उसको निकालिए और जो पुराने टूथब्रश होते हैं उनसे अच्छे से साफ कर लीजिए, आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा आपका पानी कितना गंदा हो गया, और फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको सुखा के और फिर उसको लगा दीजिए तो पूरी तरह से ब्लू कलर की फ्लेम फिर से आने लग जाएगी। तो ये तरीका होता है, और आप ये ध्यान रखिए कि उस पर गिरे नहीं कुछ भी, तो अपने आप ही वो साफ रहेगा। लेकिन आप ये मत करिए कि आपने रोटी बनाई और अब चलो किचन का काम खत्म, अब सफाई कर रहे हैं तो पानी डाल दिया, फिर एक पॉलिथिन में आपने मतलब कोई पाउडर लिया साफ करने वाला और उसको घिसा आपने, तो यहाँ पर क्या होगा वो पाउडर अंदर घुस जाएगा
5: बर्नर के जो सुराख होते
4: हैं, सुराख में अंदर चला जाएगा और वो जम जाएगा तो फिर आपको आगे जाके दिक्कत होगी। तो इसीलिए ये जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से आप इसकी सफाई करें। ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप जो आते हैं ना कि बर्नर साफ करा लो या ये, उनसे मत कराइए आप।
5: अच्छा,
4: आप जो एजेंसी में भी इसको आप कर सकते हैं कि हमारे बर्नर ठीक से काम नहीं कर रहे तो सर्विस चार्ज लेंगे आपसे, लेकिन वो साफ
5: घर पे आके करके जाते
4: हैं। तो वो जो रास्ते पे घूम रहे हैं उन लोगों से ना करवाएं। इसके बाद में जो है आपका भोजन आप बना रहे हैं तो उसमें तो पानी का इस्तेमाल होता है, पानी उतना ही डालें जितनी ज़रूरत है ना? आप जो है सिर्फ एक वीडियो देखना है या कुछ उसके चक्कर में थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल देते कि जले नहीं, लेकिन उसको उड़ाने में आप कितना ईंधन जला देते हो, तो इसीलिए हमें उतना ही पानी डालें जितनी ज़रूरत है। और मैं ये कहूँगी कि भोजन वो मतलब एक जरिया है आपके घर के अंदर, माध्यम है जिससे कि घर में संस्कार आते हैं।
5: बिल्कुल सही।
4: भोजन बच्चों के अंदर जा रहा है, पति के अंदर जा रहा है, आपके अंदर जा रहा है, वही आपके विचारों को बनाता है। तो इसीलिए अगर आप उसे मतलब एक प्रकार से सेकेंडरी बला टालने वाला काम करेंगे कि हाँ भोजन बनाना है हमें, तो फिर आप उसके भी असर देख रहे हैं।
5: प्रायोरिटी पर रखना है सबसे पहले।
4: जी जी, प्रायोरिटी हमारा भोजन है। आप चल किससे रहे हैं, भोजन से ही चल रहे हैं ना।
5: सेहत उसी से।
4: मैं तो आपको एक टिप दे देती हूँ यहाँ महिलाओं को, आप मेरे कहने से, मैं काउंसलर भी हूँ, एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि विचार क्या काम करते हैं। तो उस रोटी के ऊपर सिर्फ अगर प्रेम लिख लें, उंगली से प्रेम लिख लें, या बच्चे का एग्जाम है 100% लिख लें और बच्चे को सेक के खिला दें प्यार से,
5: अरे
4: है ना, आप देखिए क्या असर होता है। क्योंकि वो विचार जाता है, वो लिखा इज ओके, लेकिन आपका विचार जा रहा है उसके अंदर। हस्बैंड से तो रोज लड़ाई होती है, लेकिन प्रेम लिख के तो देखिए आप।
5: बिल्कुल सही, बिल्कुल।
4: सब मिल बैठ कर एक साथ खाना खाएं, क्यों बार बार जो है रोटी बने, है ना, बार बार तवा गर्म हो,
5: बार बार चाय गरम करते हैं।
4: बिल्कुल
5: बार बार,
4: बिल्कुल। हम
5: बहुत
4: तो
5: सारी चीजें हम बार बार करते हैं।
4: अगर हम एक नियम बना दे घर में कि चाय सब साथ में पिएंगे, है ना, या तो एक ही बार बनेगी चाय। हाँ। जी जी, खाना साथ में खाएंगे। अगर दिन में नहीं भी पॉसिबल हो पा रहा है तो डिनर तो साथ में कर लो, रात का खाना तो कर लो साथ में। तो उससे क्या होगा कि परिवार में जो एक लिंक्स खत्म होते जा रहे हैं, भोजन एक बहुत बड़ा जरिया होता है, है ना, तो वो जो एक लिंक्स हैं वो फिर से बनेंगे, रिकनेक्ट होंगे। आप बच्चा क्या कर रहा है उसकी शक्ल से आप पहचान जाओगे। तो आप जो है डाइनिंग टेबल वो जगह है, भोजन वो जगह है, वो चीज है। तो आप जो है सब मिल बैठ के खाना खाएं, बार बार गर्म नहीं करना पड़ेगा, सब मिल बैठ के खाना खाएं, तो प्यार बढ़ेगा आपके घर के अंदर, हमारा एलपीजी बचेगा। और दूसरी चीज, भोजन बना के आप जो है ऐसे बर्तनों में रखें जिससे वो गर्म रहे।
5: बिल्कुल,
4: है ना। तो हम जो है हम वहां पे क्या करते हैं, तुरंत निकाला, अरे ठंडा है तो माइक्रोवेव में रख दिया हमने। अब यहाँ पर मैं

0: आप इस्तेमाल करें, नहीं तो एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको मुलायम करने के लिए, अगर वो पहले से मुलायम होगा तो डायरेक्ट पकना चालू हो जाएगा
1: जल्दी,
0: है ना। तो आप इस चीज को कर सकते हैं। और जहाँ तक रेगुलेटर की बात है, यहाँ आपके संरक्षण की भी बात आती है यहाँ पे, कि आप जितनी बार भोजन बनाए उतनी बार आप जो नॉब है उसका, आपका सिलेंडर का, उसको भी बंद करें। तो कहीं अनावश्यक अगर कहीं लीकेज हो रहा होगा तो उसको आप बचा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये जो आपने पूछा कि कब हमें बदलना चाहिए, तो रेगुलेटर तो बदलने की ज़रूरत होती नहीं है कभी भी। हाँ, अगर टूट जाए, कुछ हो जाए, तो फिर आप कंपनी में जाके, जो भी एजेंसी है वहीं पे जाके आप उसको बदलें। लोकल मार्केट में शायद सस्ता वाला आपको मिल सकता है, लेकिन आप वो ना लें, ये मतलब एक बहुत ही जरूरी चीज है। हो सकता है वो 300 का मिले और ये 150 का मिले, लेकिन वो कभी भी आपके घर में बहुत बड़ा संकट ला सकता है। तो इसीलिए ISI मार्क का एजेंसी से ही लीजिए आप। दूसरी चीज ये है कि जो पाइप जो है उसका, आजकल तो आप बाहर से खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपको एजेंसी ही देती है। और जो पहले आते थे सिर्फ रबर के होते थे वो, तो वो काफ़ी डैमेज हो जाते थे, और मतलब एक प्रकार से जो जहाँ पे चूल्हे के साथ लगते थे वो वहाँ पे खराब होने लग जाते थे, लोग उसे काट काट के छोटा कर देते थे।
1: तो ये रबर के रहते थे,
0: रबर के रहते थे वो, अभी वो वायर के साथ है,
1: तो
0: बहुत डिफिकल्ट है उसे काटना भी। लेकिन वो क्या होता है, मैं जो आपको बता रही हूँ, कि हो सकता है कई लोग उसमें भी दिमाग लगा लें कि हम उसमें काट देंगे आरी से या कुछ, तो क्या होता है ये करीब 1 मीटर करीब होता है ये, है ना। तो वो एक एक्यूरेट मतलब वो लंबाई लेंथ है उसकी, नहीं तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसे लिक्विफाइड किया जाता है और ऊपर की सतह पर वो गैस होता है। लेकिन वो जो पाइप है वो अगर सही नहीं है, छोटा है अगर, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो लिक्विड रूप में बीच में जम जाएगा। और आप खाना बना रहे हैं तो कई बार रोटी बना रहे हैं, 4 बार 5 बार बंद होगा वो, तो आप सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया, तो ये कारण आपका पाइप हो सकता है। अभी तो ये बहुत ही अच्छे पाइप्स हैं, तो बहुत जल्दी बदलने की जरूरत नहीं है, करीब आप 6-7 साल भी इसको चला सकते हैं। लेकिन बस इसे काट काट के मत यूज करें,
1: कहीं से चटक गए हैं या चूहे वगैरह ने काट लिया, तो
0: चूहा काटना भी इतना आसान नहीं है इसको। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि भाई आप क्या बहुत डेंजरस चूहे हैं, तो आप फिर उसको बदलिए बिल्कुल, और लेकिन लेना एजेंसी से ही है
1: बिल्कुल,
0: आप कहीं लोकल मार्केट से इसको नहीं लेंगे। ये सुरक्षा की दृष्टि से भी है
1: बिल्कुल,
0: और संरक्षण तो है ही, वो बीच में परेशानी भी है आपकी कि गैस बंद हो रही है
1: बिल्कुल। आशा जी, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि PNG और LPG में क्या फर्क।
0: जी दानिश जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आज जो है भोपाल में देखिए बहुत सारी जगह थिंक गैस का आपने देखा हो, पाइपलाइंस पाइप दे रहे हैं वो घरों में, मतलब डायरेक्ट सप्लाई है वो। तो PNG का मतलब है पाइपलाइन नेचुरल गैस। मैंने आपको क्या बताया था शुरू में, नेचुरल गैस के बारे में थोड़ा बताया था, तो ये क्योंकि प्राकृतिक गैस ही है, तो ये LPG नहीं है, LPG का मुकाबले सुरक्षित है ये। LPG की अगर हम स्मेल आ रही है तो क्या है कि LPG जमीन पे चिपकता है, क्योंकि वो हवा से भारी गैस है, तो जमीन पे चिपक गई कोई चीज तो उसको निकालोगे कैसे आप, अनलेस अनटिल आपको ये पता हो कि झाड़ू लगाओ अब, है ना। तो कई बार पता नहीं होता, तो वो चिपकी हुई है, हम सब दरवाजे खिड़की खोल दिए फिर भी टाइम लेगी वो। लेकिन नेचुरल गैस जो है वो हवा से हल्की गैस है, अगर ये लीक होती भी है तो ऊपर जाएगी, तो ऊपर तो उसको बहुत बड़ा माध्यम मिल गया है फैलने का, तो सुरक्षित भी है। मैं तो यही बोलूंगी कि जहां कहीं पे भी जिस भी मोहल्ले में PNG की सप्लाई के लिए अभी आपसे कॉन्टेक्ट किया जा रहा है तो आप जरूर लें उसको, क्योंकि आगे PNG की सप्लाई ज्यादा मात्रा में है, लेकिन हो सकता है LPG की कम हो जाए,
1: और फिर ये सिलेंडर भरवाने का या
0: हाँ वो सब भी खत्म हो जाता है, आपके मीटर लगा रहता है, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं वैसे आप अपना,
1: ये तो सुविधाजनक हो
0: बिल्कुल, बहुत सुविधाजनक है, इसका कोई वो भी नहीं
1: भारी
0: है
1: कि भारी आप सिलेंडर उठा के अंदर रखना हो फिर बाहर ले जाना,
0: जी जी महिलाओं की बहुत सारी चीजें हैं उसको लगा ही नहीं पाते कई लोग,
1: वो अचानक रात में भी सिलेंडर खत्म हो जाता है
0: बिल्कुल,
1: ये सारी दिक्कतों से
0: वेटिंग तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी इसके अंदर। ये दोनों में अंतर है, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ये पाइपलाइन नेचुरल गैस, तो ये काफी कन्वीनियंट है, उससे भी अच्छी है कहना चाहिए, तो इसको जरूर इस्तेमाल करें आप।
1: आशा जी, आजकल LPG का जो सिलेंडर है वो लोग अपने कार में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, रिफिल करवाते हैं और कार चलाते हैं उससे, तो ये क्या इस्तेमाल करना सही है?
0: देखिए, एलपीजी का इस्तेमाल करना सही तब है जब आप उसे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कई हमारी आजकल जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने इस तरह का वो दे दिया है, आपके पास टैंक्स हैं कि जिनमें आप डायरेक्ट एलपीजी फिल करवा सकते हैं। आप अभी तो सीएनजी आ गया है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो, तो आप उसको ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, और भी अच्छा है। और अगर लेकिन आप एलपीजी, अगर आपकी गाड़ी है, आप एलपीजी उसमें फिल करवा रहे हैं, तो आप जो है पेट्रोल पंप्स पे, जहाँ पे अवेलेबिलिटी है इसकी, वहीं से करें, खुद ट्राई ना करें। और जो आपके घर के अंदर, कई लोगों ने घर में चार, मतलब कुछ ज्यादा लोग हैं, उनके नाम से सिलेंडर्स ले लिए हैं, फिर उनको आप वो ब्लैक वाले सिलेंडर, वो जो पाइप जो रहते हैं सिलेंडर्स, उसमें आप करते हैं, चेंज करते हैं आप, तो ये बहुत ज्यादा जोखिम भरी चीज है, और इसमें आप कई घर बर्बाद हो चुके हैं, जल चुके हैं, तो ये कभी ना करें। थोड़े से पैसे बच जरूर जाएंगे आपके, लेकिन जो तरीका यही है कि जो आप पेट्रोल पंप्स पे या इसके सिलेंडर जो मिलते हैं वही इस्तेमाल करें। तो आजकल तो सीएनजी का समय है, तो आप सीएनजी का इस्तेमाल करें। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, अगेन नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, आप समझ सकते हैं, तो आपको वो ज़्यादा सुविधाजनक है, सुरक्षित है, और दूसरी चीज़ यह है कि अवेलेबिलिटी ज़्यादा है।
1: अगर गैस लीक हो जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए?
0: पीजी अगर हो
1: हाँ जी
0: जाती है तो तुरंत जो है हमें सबसे पहले तो दरवाजे खिड़की खोलने चाहिए, क्योंकि उसे बाहर करना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज और भी मैं यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ महिलाओं के लिए, कि अगर एलपीजी जो है जहाँ आप इस्तेमाल कर रहे हो, रसोई जो है हमारा, वो थोड़ा खुला हुआ होना चाहिए। पूरा बंद कमरे के अंदर आप एलपीजी मत इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि किसी भी ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट जलेगा, और जो भी कुछ विषैली गैस बनेंगी वो आप ही के अंदर जाएंगी, क्योंकि आप वहां ज्यादा समय हैं, तो आपको चक्कर आने लग गया या आपको उल्टी जैसा होने लगा, तो इसका मतलब है वो बिना किसी कारण के अगर हो रहा है ऐसा, और जब आप खाना बना रही है तभी हो रहा है, तो हो सकता है कि ये कारण हो। तो हम, मैं ये कहूंगी तुरंत तुरंत आपको पूरे दरवाजे खिड़की खोल देने हैं, और दूसरी चीज जो सिलेंडर है उसको तुरंत निकाल लीजिए, रेगुलेटर निकाल दीजिए, उसको तुरंत बाहर करिए। उसमें सफेद कैप रहता है, सफेद कैप लगाइए और उसे बाहर करिए। कभी भी बिना सफेद कैप जो रहता है उसके बिना सिलेंडर को रखना ही नहीं है आपके घर में, अगर खाली भी सिलेंडर है तो। और अगर आपको लग रहा है कि अभी भी बहुत तेज बदबू आ रही है, तो आप जोर जोर से फर्श पे झाड़ू लगाइए, तो क्योंकि हवा से भारी गैस है जमीन पे चिपक गई है, तो झाड़ू लगाएंगे तो ये बाहर जाती है। अगर एलपीजी लीकेज हो रहा है तो ये इसका तरीका है। लेकिन अगर आग लग गई, मतलब इसके हम सुरक्षा की अगर हम बात करें, तो मैं एक दो चीज जरूर ऐड करना चाहूंगी कि जो हमारा रसोई होता है उसके अंदर देखा होगा आपने, महिलाएं जो है वो कागज जो रहता, पेपर जो रहता है, उसे काट काट के लगाती हैं शेल्फ्स में, तो ना करें वो, क्योंकि वो भी एक माध्यम बन जाएगा और ज्यादा फैलाने का। जहाँ सिलेंडर रखा उसके आसपास कोई ज्वलनशील चीज ना रखें। दूसरी चीज ये है कि आप गैस आपकी ऑन है, आप खाना बना रहे हैं, आपने कॉकरोच देखा और वहीं पर आपने उसे मारना चालू कर दिया हिट वगैरह से,
1: हाँ,
0: तो
1: उसके अंदर भी गैसेस
0: वो भी पेट्रोलियम ही है,
1: फ्लेमेबल, हाँ
0: फ्लेमेबल है वो, तो आप जो है उसमें भयंकर आग लग सकती है। एक और चीज है, कई बार महिलाएं जहाँ गैस जल रही है उसी के पास मोबाइल रख के और
1: खाना
0: बनाती, हाँ, खाना बनाती हैं, तो ये बहुत रिस्की है।
1: वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब
0: वीडियोस
1: चला रहे
0: देख
1: हैं,
0: रहे हैं,
1: हाँ।
0: तो उसके अंदर जो एक स्टैटिक चार्ज है, बाय चांस आपने ध्यान नहीं दिया कहीं गैस लीक हो रही है, कई बार गैस बंद हो जाती है, आपका ध्यान ही
1: ध्यान
0: नहीं है,
1: वहाँ है।
0: हाँ, तो आप जो है इस तरह के जो रिस्क है वो ना लें, मोबाइल आप दूर रखें। दूसरी चीज, आपके मोबाइल के ऊपर उतने कीटाणु होते हैं जितने टॉयलेट सीट के ऊपर हैं।
1: बिल्कुल
0: आप बार बार उसको पकड़ रही हैं, फिर खाना भी बना रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा उसका, ये तो अनहाइजीनिक प्रैक्टिस है।
1: बिल्कुल,
0: अगर आग लग जाती है, सपोज कहीं इतने बुरा हो गया कि आग ही लग
1: कोई
0: गई,
1: दुर्घटना
0: है, दुर्घटना हो गई, तो आपको जो है तुरंत सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या आप उसे अटेंड कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अटेंड नहीं कर सकते तो बाहर निकल लो, जान ज्यादा जरूरी है, सबको घर से बाहर कर दो, क्योंकि अगर आग लग गई है और सिलेंडर फट गया, क्योंकि उसमें प्रेशर इतना बढ़ जाएगा आग के कारण कि वो फट जाता है, अगर वो फट गया तो जो गैस जो उसमें तरल रूप में है वो पूरी दीवारों पे चिपकेगी, और हर दीवार पे विद इन सेकेंड आग लग जाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी उसमें लाइन में आ गई वो आग, तो इलेक्ट्रिसिटी तो तुरंत बहुत आराम से पूरे घर के अंदर आग को फैला देगी। तो इसीलिए हमें तुरंत ये देखना है, और अगर आपको लग रहा है कि आप बच कर सकते हो, अभी ज्यादा नहीं फैला हुआ है, तो उसके ऊपर तुरंत कोई मोटा कपड़ा गीला कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कंबल है या कोई ऐसी मोटी दरी है तो उसके ऊपर लगा के आपने निकाल लिया रेगुलेटर, उसके ऊपर डाला आपने और उसको जो है अच्छे से कवर कर दें, या फिर कोई भगोना है जैसे प्लास्टिक का नहीं बोल रही हूँ वो उसके ऊपर रख दें, ऑक्सीजन से उसकी सप्लाई जो है कट कर दें तो आग बुझ जाएगी। सप्लाई तो वहीं सही है ना, सिलेंडर सही है, तो इस चीज़ का उसका तरीका भी होता है, वो हम अभी आपको रेडियो पे तो नहीं बता सकते लेकिन उसके कुछ मॉक ड्रिल्स हम लोग करवाते हैं जिससे कि महिला को ये चीज़ पता चल जाती है कि इसको हमें कैसे बचत करना, सुरक्षित रखना है।
1: आशा जी, अंत में हमारे श्रोताओं के लिए आपका एक संदेश एलपीजी संरक्षण और सुरक्षा को लेकर।
0: जी देखिए, हम लोग बहुत ज़्यादा अपने देश के लिए, लोगों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं ना, सोचते तो हैं बहुत ज़्यादा हम, तो आज ये वो मौका है हमारे पास में एलपीजी के रूप में कि अगर आप इसको संरक्षित करते हैं तो कि आगे आने वाली पीढ़ी आपको बहुत धन्यवाद देगी और आपका एक रिश्ता जो है उनके साथ बहुत अच्छा होगा। तो देश, समाज और परिवार तीनों के लिए इसका संरक्षण बहुत जरूरी है।
1: तो दोस्तों, आज हमने जाना कैसे हम एलपीजी की बचत कर सकते हैं और अपने घर को सुरक्षित भी बना सकते हैं। धन्यवाद आशा जी इतने महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया, और सभी श्रोताओं का धन्यवाद जो मुझे सुन रहे हैं।
1: दोस्तों याद रखिए, सावधानी ही सुरक्षा है और बचत ही समझदारी। श्रोताओं, ये था कार्यक्रम आमने सामने। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय संयोग सतीश बौथम, मैं था दानिश। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
2: आमने सामने,
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आमने सामने 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई।
1: रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब वाग अर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत सुनते हैं रश्मि शर्मा से कहानी पाठ।

0: आज होगा कहानी पाठ रश्मि शर्मा का।
1: मैं जोर जोर से रोने लगता हूँ। रंजिता बिल्कुल पड़ोस वाले घर में रहती है। इतना अपनापन है कि कोई भी सब्जी दोनों घर में बिना बटे खाता नहीं कोई। अक्सर रंजिता ही कटोरदान लिए आवाज़ लगाती थी, चाची माँ ने उल्की सब्जी भिजवाई है आपके लिए, माँ सबको वहीं बुला रही है। ये बैना बांटने का काम माँ फिर मुझसे करवाती। साल दो साल की बड़ी थी रंजिता मुझसे, मगर माँ को बहुत पसंद थी यह लड़की।
0: तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वागर्थ में रश्मि शर्मा का कहानी पाठ।
1: भारत भवन भोपाल का धन्यवाद कि मैं आज यहाँ हूँ। मैं सबसे पहले कहानी पढ़ना चाहूँगी, उसका शीर्षक है उसका जाना। चारों तरफ खामोश बेचैनी फैली है, आसपास के लोगों के चिंतामग्न चेहरे और उदास भाव मुझे और उदास कर रहे हैं। पिछली कई रातों से सोया नहीं हूँ। मन में बस एक बात ही घुमड़ती है कि अब क्या होगा। पता नहीं इस बार उनको लेकर घर लौट पाऊंगा भी कि नहीं। बस उम्मीद है किसी चमत्कार की, हालांकि मैं इन सब चीज़ों पर कतई विश्वास नहीं करता। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में जिसे हम किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते और उनके बने रहने के लिए हर संभव उपाय करते हैं। सब परेशान हैं। पापा के चेहरे पर चिंता की लकीरों ने स्थायी डेरा डाल रखा है। छोटी बहन अनु कुछ नहीं समझती या समझना नहीं चाहती, अभी उसकी उम्र ही ऐसी है। हाँ भैया थोड़ा प्रैक्टिकल है, कम से कम बाहर से टूटता नज़र नहीं आता। यहाँ दिल्ली में सारा इंतज़ाम उसी ने किया। बेशक वो पिछले बरस आया है, मगर यहाँ के माहौल और रास्तों से खूब परिचित हो गया है और शायद महानगरों में रहने वालों की तरह उसका मन संवेदना के स्तर पर छिछला हो चला है, इसलिए मेरी तरह भावुक नहीं होता या हमारे सामने दिखता नहीं। डर से भरा हूँ बेतरह। माँ से सबसे ज़्यादा जुड़ाव मेरा ही रहा है। कई बार माँ कहती है तुम कभी बड़े नहीं बनोगे क्या प्रियम, हर बात में हर बात काम में मामा की रट लगाए रहते हो। मैं हंसकर कहता माँ के लिए बच्चा कब बड़ा होता है, मुझे तुम्हारा आंचल पकड़कर घूमना अच्छा लगता है। माँ हंस पड़ती और कहती आ जाओ मेरे पास, और मैं लाड़ जताते हुए उनके गले में बाहें डाल देता। आज उनकी चौथी केमो है, बहुत सारे बाल गिर गए, अब लंबे घने केश कंधों तक छोटे हो गए। कितने घने केश हुआ करते थे माँ के, उन्हें अपने बालों से मोह भी था बहुत। जब भी उनका ध्यान अपने बालों पर जाता वो रुआसी हो जाती है। मैं सोचता हूँ क्या लोगों को वही वस्तुएं ज़्यादा प्रिय होती हैं जो किस्मत उनसे छीन लेने को तैयार बैठी रहती है। माँ का कैंसर जब तीसरे स्टेज पर पहुँच गया तब हमें मालूम हुआ। ऐसा कुछ बाहर से बिल्कुल पता नहीं चला हमें न उन्हें, बस कमजोरी की शिकायत थी और बार बार बुखार होता था। कौन जानता था ऐसी गंभीर बीमारी से घिरी हुई हैं वो। अब तो बहुत कमज़ोर हो गई हैं, कई बार बड़ी बेबस निगाहों से देखती है मुझे तो रोने का मन हो आता है। वह घर से दूर यहाँ आना भी नहीं चाहती थी दिल्ली, उन्हें अपना मोहल्ला और शहर ही पसंद। स्मृति की गलियों से बाहर आकर मैं माँ को खाना खिलाना चाहता हूँ तो वो मना करती हैं। ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश में कई बार घुड़क देता हूँ उन्हें। दूसरे ही पल लगता है कि मेरे नहीं खाने पर माँ कितना पीछे पड़ी रहती थी, पर उन्होंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं घुड़का मुझे, बस मनाती रहती पुचकारती रहती। खा लो जरा सा, अच्छा चावल नहीं पसंद तो रोटी बना देती हूँ। ठीक है बाबा आज हलवा खा लो, कल खीर बना दूंगी ढेर सारा किशमिश डालकर। मन को काटने लगा कोई। बाहर निकल आया हूँ कैंटीन की तरफ। मैं अपनी हताशा उनके सामने प्रकट करना नहीं चाहता। सोचता हूँ मेरा चुलबुलापन बरकरार रहे, हंसता हंसाता रहूँ सबको। ओह मैं तो अपनी क्लास भी मिस कर रहा हूँ। अभी मास कम्युनिकेशन में दाखिला हुआ है, ग्रेजुएशन में टॉप आने की खुशी भी नहीं शेयर कर पाया। दाखिले के बाद मुश्किल से 8-10 दिन ही क्लास कर पाया और माँ के साथ दिल्ली सफदरजंग अस्पताल आना पड़ा। सपना, हाँ सपना ही नाम है उस लड़की का। मेरे होठों पर उसकी याद ने मुस्कुराहट ला दी। पहली क्लास अटेंड करने के लिए कॉलेज पहुँचा था। जर्नलिज्म डिपार्टमेंट दूसरे तल्ले पर था, खूब भीड़ भाड़ चारों तरफ। नए चेहरे जो शहर के विभिन्न कॉलेजों और आसपास के शहरों से आगे पढ़ने की इच्छा लिए आ गए थे, पत्रकारिता में सभी अनजाने थे सिवाय मेरे मोहल्ले की एक लड़की भावना की, जो स्कूल में भी मेरे साथ थी। बहुत अच्छी दोस्त है हमारी। अभी भी मैं यहाँ हूँ, मगर मुझे पता है कि क्लास नोट उससे मिल ही जाएंगे सभी। बस माँ को लेकर एक बार लौट तो जाऊँ, मुझे लगा कोई घूर रहा है। पलट कर देखा तो दो लड़कियों की पीठ दिखाई दी जो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। सीढ़ियाँ फलांगता हुआ ऊपर पहुँचा। ग्रिल के पास सारे स्टूडेंट जमा थे, एक दूसरे से परिचय का दौर चल रहा था। सब ऐसे चहक रहे थे जैसे सुबह के वक्त ढेर सारी चिड़ियाँ पेड़ पर एक साथ चहकती। मैं यह सब सोच ही रहा था कि मेरी नज़र दूर से आती हुई भावना पर पड़ी। उसके साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की चली आ रही थी। गोल चेहरा, दरमियाना कद और खिलता रंग। उसने गुलाबी रंग का पारदर्शी सूट पहना था। सब चुप होकर कभी मेरी ओर तो कभी उस लड़की की ओर ताकने लगी। वो लड़की भी पा चुकी होकर मेरा मुंह देखने लगी। हम नहायत अजनबी थे, आज से पहले ना कभी एक दूसरे को देखा और ना ही कुछ और भी जानते थे। मुझे एहसास हुआ कि बहुत गलत बात निकल गई मेरे मुंह से। अब तो तभी भावना ठिठाकर हंस पड़ी, कहा, तुम वाकई कभी नहीं सुधरोगे प्रियम। फिर अपनी सहेली को मेरा परिचय दिया कि ये मेरे बचपन का दोस्त है प्रियम, इसकी बातों का बुरा मत मानना, ऐसे ही उटपटांग हरकत करता रहता है। मैंने देखा सपना के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई और भावना के साथ क्लास की तरफ चली गई। मेरी जान में जान आई, लगा आज अगर भावना न होती तो पिटाई निश्चित थी। पता नहीं क्यों यह लड़की सपना पहले दिन से ही मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। एक बात गौर की मैंने कि सपना पर हर रंग अच्छा लगता है। आज वो पीले रंग की कुर्ती और ब्लू जींस में थी। कपड़े की पीली आभा से उसका चेहरा और ज़्यादा खिला लग रहा था। वाकई बेहद खूबसूरत और समझदार है वो। सुंदर तो मेरी माँ भी बहुत लगती। अब इन दिनों जब से उनकी तबीयत खराब हुई है ज़रूर चेहरा बहुत उतर आया है। वैसे माँ बहुत चटक रंग पसंद नहीं करती हैं, अक्सर वो ग्रे कलर या नेवी ब्लू कलर की साड़ी खरीद ले आती। पापा से इस बात पर मीठी नोकझोंक हो जाती। चटक रंग पहनने के इसरार पर वो कहती, नई नेवी ली दुल्हन नहीं हूँ मैं जो रोज़ केवल लाल पीला पहन कर घूमूँ, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। मगर उन पर फपते थे सारे रंग। पूजा पाठ के अवसर पर अक्सर गाढ़ा रंग पहनती थी। मुझे याद है मम्मी पापा की शादी की सालगिरह पर हुई उनकी झड़प। माँ ने हल्के आसमानी रंग की साड़ी पहनी और मोतियों की माला के साथ बेहद खूबसूरती से तैयार हुई थी शाम को बाहर जाने के लिए। पापा ने त्योरियाँ चढ़ा ली थी यह देखकर। मैंने बाद में पापा को कहा भी था, पापा माँ को जो रंग पसंद है उन्हें वही पहनने से आप क्यों रोकते हैं। पापा जवाब में खामोश रहे। अचानक सब गड़मट हो गया, सपना और माँ। मैं कहीं खोया हूँ इसका तब पता चला जब नंदू काका की दुकान में भावना ने मेरी बाँह झिझोड़ कर कहा कि क्लास का टाइम हुआ, हम जा रहे हैं, चाय खत्म कर तुम भी आओ। मैं अपने घर और कॉलेज के बीच उलझा सा चल पड़ा। उस रोज़ घर आकर भी उदासी छाई रही। मैं बेमन से खाना खाते हुए सोच रहा था कि जल्दी ही माँ के पास चला जाऊँ, अभी शुरुआत में उतनी पढ़ाई नहीं होगी, क्लास मिस कर दिया तो भी ज़्यादा हर्ज नहीं होगा, एक बार मिल लाऊँ माँ से तब आकर गंभीरता से पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। तभी लैंडलाइन पर पापा का फ़ोन आया। माँ के बारे में सभी बातें बताई उन्होंने, कहा कीमो तो चल रहा है, वो बहुत तकलीफ़ होती है माँ को, वो तुम्हें बहुत याद कर रही थी, 15 दिन के लिए तुम दिल्ली आ जाओ, मैं रांची आ रहा हूँ कुछ काम से। जी मैं कल ही करा लेता हूँ टिकट, माँ से मिल सकूँगा इसकी बेहद खुशी हो रही थी मुझे। बस अब कल कॉलेज चला जाऊँ और वहाँ मेहता जी के पास 15 दिनों छुट्टी का एप्लीकेशन दे दूँ, फिर कल ही रेलवे स्टेशन जाकर टिकट करा लूँगा। सुबह कॉलेज गया, पीआर की पहली क्लास थी, मैम पढ़ाने आई। हल्की बैंगनी साड़ी और बड़ी सी कत्थे बिंदी में वो बेहद खूबसूरत और स्मार्ट लग रही थी। कक्षा में आती उन्होंने नोट्स लिखवाना शुरू किया। जब पीरियड समाप्त हुआ तो उन्होंने कहा, किसी को कुछ कहना या पूछना है तो पूछ लो। मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया, उन्होंने मुझे खड़ा किया और कहा, बोलो क्या कहना है, क्या समझ नहीं आया। मैंने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बड़ी मासूमियत से कहा, मैम कहना यह था क्या बहुत खूबसूरत है। पूरा क्लास ठहाकों से भर गया। मैम ने भी मुस्कुराते हुए अपना रजिस्टर उठाया और निकल गई। कुछ दोस्तों ने पीठ पर धौल लगा मेरे साहस को शाबाशी दी तो लड़कियों ने घूरा, मगर यह महसूस किया कि सब समझने लगे हैं मुझे और मेरी इन हरकतों को अन्यथा नहीं लेते। घर के लिए निकलते वक्त भावना और सपना को अपने दिल्ली जाने की बात बता दी और नोट संभाल कर रखने की ताकीद भी कर दी। तीसरी सुबह मैं अस्पताल में था। माँ बड़ी निरीह सी दिख रही थी, बदन की तकलीफ चेहरे पर उभर आई थी। मुझे देखकर बहुत खुश हुई, माथे पर हाथ फिरा, प्यार किया, पूछा, पहली बार अकेले रहे हो ना, डर तो नहीं लगा तुम्हें? मैं झेंक गया। माँ आप भी समझती हैं कि मैं अकेले में डरता हूँ, सच तो यह है कि मैं अकेला रहना नहीं चाहता। माँ कहीं ना जाए मुझे छोड़कर, इसलिए कहता था उनसे कि आप साथ रहो। मुझे डर लगता है अकेले में, मगर यह तो बहुत पुरानी बात हुई, तब स्कूल में था मैं। क्या माँ की यादों में वक्त छलांग लगाकर पीछे जा रहा है इन दिनों? अब रोज की दिनचर्या वही हो गई, दिन भर माँ के पास। माँ कह रही थी उस दिन कि प्रथम की शादी हो जाती तो थोड़ी जिम्मेदारी कम होती मेरी, मगर पापा का कहना है कि भैया की अभी अभी नौकरी लगी है, उसे कुछ दिन तो काम करने दो, फिर गृहस्थी का भार उठाना ही है। मगर अब तो जिंदगी की कोई भी बात बहुत पीछे, बस माँ है सामने, उनका स्वास्थ्य और हमारी जिंदगी जुड़ गई है, सब कुछ उनके मुताबिक। अस्पताल में माँ के पास कभी मैं तो कभी भैया रात को रुकते, बचपन के किस्से सुनाकर माँ को हंसाते। माँ जीने की पुरजोर कोशिश कर रही थी, अभी जिम्मेदारियाँ हैं कंधों पर, जानती हैं इसलिए जल्दी ठीक होकर घर वापस आना चाहती हैं। उन्हें अपने तुलसी के पौधों का भी पूरा ध्यान है, ऐसे में आते ही पूछा था, मेरे तुलसी के पौधों में रोज पानी देता है ना प्रियम? जवाब में हाँ मिलने पर मुस्कुरा पड़ी थी वो। आज शाम की ट्रेन से चला जाऊँगा, पापा 15 दिन के बजाय 10 दिनों में ही लौट आए, मुझे वापस जाना पड़ेगा रांची, टिकट ले लिया है। मैं माँ को उनके हवाले कर दिल्ली के आकाश से अपने शहर की आकाश की तुलना करता हुआ बहुत देर से यादों की गलियों में घूमता रहा हूँ। माँ के पास कुछ देर रह लूँ फिर तो चला ही जाऊँगा। माँ मुस्कुराती है मुझे देखकर, सोचता हूँ पीड़ा से उपजी मुस्कान दिल को भेद देती है। माँ को लगता है कि वो मेरे सामने खुश रहेंगी तो मैं भी उतना ही खुश रहूँगा। सच है कि मैं उनका भ्रम तोड़ना नहीं चाहता और वो मेरा, हम दोनों दर्द की लहरों पर तैर रहे हैं, मगर मेरा दर्द मानसिक है और माँ मन के साथ साथ तन के दर्द को भी अपने से दूर करने के लिए प्रयास कर रही हैं। मैं ऐसा जताता हूँ कि माँ जानबूझकर यहाँ है और रांची वापस चलने के लिए बहाना कर रही हैं, हम दोनों एक दूसरे को आश्वस्त कर रहे हैं कि बस कुछ दिनों की बात है, सब अच्छा हो जाएगा, मगर दोनों को पता है कि शायद डॉक्टर्स भी खुलकर कुछ नहीं कहते। लौटा हूँ वापस अपने शहर, सूना घर काटने को दौड़ता है। माँ पापा भाई बहन सब वहीं हैं, मुझे घर भेज दिया गया है कि जाओ घर खाली है, किसी न किसी को देखभाल के लिए जाना ही पड़ेगा। मेरी कक्षाएँ भी छूट रही थी, सोचता हूँ छोटी अनु भी तो आ जाती है यहाँ, उसका भी तो स्कूल छूट रहा है, मेरा मन भी लगा रहता, मगर उसे छोटी होने का फ़ायदा मिला है, पापा उसकी भी देखभाल करते हैं माँ के साथ साथ। कितनी लकी है अनु, माँ के पास है, केवल मैं ही। इस बार दिल्ली से लौटने के बाद सपना के घर पहली बार गया अकेले, भावना को कुछ काम था इसलिए वह नहीं आई मेरे साथ। मुझे सपना की माँ बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल मेरी माँ की तरह, खूब प्यार से बातें की, माँ के स्वास्थ्य के लिए भी पूछा। जरूर सपना ने सब बताया होगा, हमने स्कूल कॉलेज के किस्से कहे, हमारी बातचीत में सपना का छोटा भाई भी शामिल था, चंचल सा कोल मटोल बच्चा जो अभी 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था, हमारी हर बात में बीच में टांग अड़ाता, सपना जितना उसे दूर भगाती वो हमारे बीच आकर बैठ जाता। आंटी ने मेरी पसंद का खाना बनाया, छोले आलू की सब्जी, सत्तू वाली कचौरी और खीर। अचानक मेरे मुंह से निकला, माँ मुझे खीर बहुत पसंद है और दो ना, कहकर मैं एक मिनट के लिए सोच में पड़ गया कि ऐसे कैसे कह गया, जाने इस बात का क्या अर्थ लगाएगी सपना। मैंने तुरंत कहा, आंटी आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह लगती है, मैं आपको माँ बुला सकता हूँ ना? अवचेतन में माँ इन दिनों हमेशा मेरे साथ होती है, या ये भी हो सकता है कि मैं उनसे इतना जुड़ा हूँ कि हमेशा पास होने का एहसास होता है। आंटी ने हंसकर जवाब दिया, क्यों नहीं, तुम मुझे अब माँ ही कहना। तब से उन्हें मैं माँ ही कहने लगा। माँ के दिल्ली जाने के बाद की वह दोपहर बहुत अच्छी गुजरी, बिल्कुल घर सा माहौल, सबका एक साथ खाना खाना, चहलबाजी और सपना की माँ का भी इसमें शामिल रहना। मैं बिल्कुल भूल गया कि माँ उस समय अपनी कैंसर जैसी बीमारी से लड़ती हुई अस्पताल के बेड पर होगी। घर रिश्तेदारों से भरा है, सब माँ की बात कर रहे थे। मैं एक कोने में दुबका बैठा हूँ, दोपहर 12 बजे की फ्लाइट से माँ को घर लाया जा रहा है, लोग अंतिम दर्शन के लिए बेकरार हैं। अचानक रंजिता का हाथ मेरे कंधे पर पड़ा, मैं चौंक उठा। वह चाय लेकर आई है, कहती है पी लो ज़रा, माँ के आने में देर है, खुद को संभालो। मैं एकटक देखता हूँ उसके चेहरे की तरफ, माँ होती तो कहती, देख प्रियमु रंजिता की बात माना कर, बहुत समझदार लड़की है। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगता हूँ। रंजिता बिल्कुल पड़ोस वाले घर में रहती है, इतना अपनापन है कि कोई भी सब्जी दोनों घर में बिना बटे खाता नहीं कोई। अक्सर रंजिता ही कटोरदान लिए आवाज़ लगाती थी, चाची माँ ने उल्की सब्जी भिजवाई है आपके लिए, माँ सबको वहीं बुला रही है। ये बैनर बांटने का काम माँ फिर मुझसे करवाती। साल दो साल की बड़ी थी रंजीता मुझसे, मगर माँ को बहुत पसंद थी यह लड़की। तभी सुबुकने की आवाज़ आई। देखा, बुआ जोर जोर से रो रही, पापा की इकलौती बहन है। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या हुआ अचानक। रंजीता कहाँ गई, बुआ क्यों रोई? समझ नहीं आता कि मैं वर्तमान में हूँ या अतीत में। तभी हलचल मची, बॉडी आ गई। मेरी जीती जागती माँ बॉडी में कैसे तब्दील हो सकती है? मैं देखना चाहता हूँ माँ कहाँ है। माँ तो अभी यहीं थी, मुझे खीर परोसती हुई, किसमिस वाली ठंडे की। अभी तो माँ ने सीने से लगाया था, चाय का प्याला पकड़ाते हुए कह रही थी, जा जरा रंजीता की माँ को बुला ला, ऊन के लच्छे देने हैं, गोला बना देगी तो अन्नू के लिए स्वेटर बुनूंगी। माँ ने गुलाबी रंग ड्रेस पहना है। माँ तुम कितनी सुंदर लग रही हो। माँ कहाँ हो? माँ मुझे नहीं जाना रंजीता के घर, कॉलेज को देर हो रही है। नंदू काका ने अभी गर्म समोसा निकाला है, माँ एक खा लो। सपना कहाँ जा रही हो तुम? भावना पीआर की क्लास नहीं है क्या आज? बुआ आकर कंधे पर हाथ रखती है। जाओ प्रियम, माँ को अंतिम प्रणाम कर लो। मुड़कर देखता हूँ पापा के चेहरे की तरफ, बेहद उदास, शून्य में विलीन हो जैसे। माँ को देखा, आज लाल रंग की साड़ी पहनी थी माँ ने। पापा कहाँ है? मैं आवाज़ देता हूँ, पापा पापा। चटाख की आवाज़ से तंद्रा टूटी, कपाल क्रिया संपन्न हुई। मैं ठहरा हूँ यहीं, रुकूंगा उतनी देर जब तक चिता की राख ठंडी ना हो जाए। मित्रों के हाथ अपने कंधे पर पा रहा हूँ। सांत्वना के बोल कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि सब जानते हैं इनका कोई असर नहीं होगा मुझ पर, जबकि कोई अपना हमेशा के लिए साथ छोड़ गया हो। लोग पीठ पर हाथ धरते और वापस मुड़ जाते। पापा ने भी सबकी तरह आकर कहा, चलो अब सब खत्म हुआ। मैं कहता हूँ, आप जाइए, मैं कुछ और देर रहना चाहता हूँ यहाँ। पापा समझते हैं मुझे, कहते हैं ठीक है, मैं भी बैठा हूँ, साथ चलेंगे वापस। धीरे धीरे चिंगारियों का ताप कम होता जा रहा है, सन्नाटा है सबूर, सांझ घिर आई है, सफ़ेद बादल जाने कहाँ चले गए। चिता से उठते धुएं की एक मोटी परत समूचे परिवेश में फैली हुई, स्वर्णरेखा नदी की पतली धार किसी पगडंडी से दिख रही है। दूर जहाँ आसमान का नीला छोर धरती से मिलकर हरा हो जाता है, वहाँ जैसे गुलाबी साड़ी में लिपटी माँ खड़ी है। मैं झटके से खड़ा होकर पुकारता हूँ, माँ माँ, पर माँ के कदम रुकते नहीं, अपनी सीध में बढ़ते जाते हैं। मेरी पुकार की विकल प्रतिध्वनियाँ जैसे दसों दिशाओं से लौट कर मुझ तक वापस आ रही हैं। पापा ने बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया। जाती हुई माँ को उनकी पसंद के रंग की साड़ी में देख मेरे भीतर की बेचैनी हौले से तरकती है। मेरे हाथ पर पापा की पकड़ और मजबूत हो गई है। माँ को उनके पसंद की रंग की साड़ी में देख हमारी हथेलियाँ सुकून की उष्मा से भर उठी। वजह से धन्यवाद।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं हमारे विशेष कार्यक्रम में मुशायरा।

मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद, संस्कृति विभाग द्वारा यादे बशीर बद्र कार्यक्रम में अखिल भारतीय मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें शायरों ने अपने कलाम पे

0: शुक्रिया।
1: मेरी मुराद जो है वो मोहतरमा पूजा भाटिया से है। मोहतरमा पूजा भाटिया,
0: कि शबे विसाल में अटकी हुई सुई हूँ मैं, शबे विसाल में अटकी हुई सुई हूँ मैं, वो जा चुका है कभी का यहीं खड़ी हूँ मैं। शबे विसाल में अटकी हुई सुई हूँ मैं, वो जा चुका है कभी का यहीं खड़ी हूँ मैं, और मैं दश्त दश्त भटकती हूँ तिश्नगी लेकर, मैं दश्त दश्त भटकती हूँ तिश्नगी लेकर, कभी किसी को बताया नहीं नदी हूँ मैं। कभी किसी को बताया नहीं नदी हूँ मैं, और इस एक मोड़ पर अक्सर सभी बिछड़ते हैं, इस एक मोड़ पर अक्सर सभी बिछड़ते हैं, सुना है जब से इसी मोड़ पर रुकी हूँ मैं, सुना है जब से इसी मोड़ पर रुकी हूँ मैं, और यकीन देखते बनता था छोटे बच्चे का, यकीन देखते बनता था छोटे बच्चे का, जब उसको मैंने कहा था कि एक परी हूँ मैं,
1: जब यकीन
0: देखते बनता था छोटे बच्चे का, जब उसको मैंने कहा था कि एक परी हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। कुछ अशार देखें कि मुझ तक ही लेके आएंगे तुझको तमाम रास्ते, मुझ तक ही लेके आएंगे, फिर तू किसी सफर पे हो, फिर तू किसी भी सिमत
1: जा।
0: बहुत शुक्रिया। फिर तू किसी सफर पे हो, फिर तू किसी भी सिमत जा। शुक्रिया भैया, शुक्रिया।
1: क्या कहने,
0: कभी मौसम नहीं बदला हमारा, कभी मौसम नहीं बदला हमारा, रहे कोहरे के हम कोहरा हमारा, कभी मौसम नहीं बदला हमारा, रहे कोहरे के हम कोहरा हमारा, और कहानी पर थे हम गालिब वगरना, कहानी पर थे हम गालिब वगरना, जरूरी था नहीं मरना हमारा, जरूरी था नहीं मरना हमारा। और ये शेर देखें कि हम अपने दिल की दुनिया में हैं लेकिन, हम अपने दिल की दुनिया में हैं लेकिन, यहां भी जी नहीं लगता हमारा। हम अपने, बहुत शुक्रिया, हम अपने, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत
0: हम अपने
1: अच्छा
0: दिल की दुनिया में
1: हैं
0: लेकिन, हम अपने, खामोशी भी दाद होती है, और मैं आपकी दाद को बहुत एंजॉय कर रही हूँ।
1: क्या कहने,
0: हम अपने दिल की दुनिया में हैं लेकिन, यहाँ भी जी नहीं लगता हमारा। और एक ताजा गजल के चंद अशार, लौट कर मत आ मगर मुड़कर तो देख, लौट कर मत आ मगर मुड़कर तो देख, अब तलक बैठे हैं तेरी आस में, अब तलक बैठे हैं तेरी आस में, और शिकवा है उससे अब न है कोई गिला मुझे, शिकवा है उससे अब न है कोई गिला मुझे, है इश्क एक हादसा गुजरा हुआ मुझे, शिकवा है उससे अब न है कोई गिला मुझे, है इश्क एक हादसा गुजरा हुआ मुझे, और मैंने कहा कि हाशिया मेरे लिए नहीं, मैंने कहा कि हाशिया मेरे लिए नहीं, कितने ही जावियों से फिर सोचा गया मुझे, कितने ही, बहुत शुक्रिया, कितने ही जावियों से फिर मैंने कहा कि हाशिया मेरे लिए नहीं, कितने ही जावियों से फिर सोचा गया मुझे, और तरके ताल्लुकात से इतना तो हो गया, तरके ताल्लुकात से इतना तो हो गया, मिलने का अपने आप से मौका मिला मुझे, तरके ताल्लुकात से इतना तो हो गया, मिलने का अपने आप से मौका मिला मुझे, किसी ख्वाहिश पे वारा जा रहा है, किसी ख्वाहिश पे वारा जा रहा है, वो एक गुमनाम तारा जा रहा है, किसी ख्वाहिश पे वारा जा रहा है, वो एक गुमनाम तारा जा रहा है। और ये शेर आखिर कि गले सब मिल रहे हैं उससे हंसकर, गले सब मिल रहे हैं उससे हंसकर, हमारा हक तुम्हारा जा रहा है, हमारा हक, गले सब मिल रहे हैं उससे हंसकर, हमारा हक तुम्हारा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
1: जनाबे डॉक्टर नदीम शाह।
2: ख्वातीन हजरात, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। एक बिल्कुल ताज़ा मतला है साहब, ये भी सुन लीजिए कि जैसे झील में उतरे जमी से होते हुए,
1: जैसे झील से उतरे जमी से होते हुए
2: मैं उसकी आंख तक आया जबी से होते हुए।
1: मैं उसकी आंख तक आया जबी से होते हुए
2: ये माँ के पांव नहीं हैं ये सीढ़ियां हैं नदीम। अगला मिसरा देखिएगा साहब, ये सीढ़ियां हैं नदीम मैं आसमां पे गया था यहीं से होते हुए।
1: वाह वाह वाह वाह,
2: ये माँ के पांव नहीं हैं ये सीढ़ियां हैं नदीम।
1: मैं आसमां पे गया था यहीं से होते आए हैं
2: यहीं से होते हुए।
1: बहुत अच्छा शेर।
2: एक मतलब सुन लीजिए, मतलब ये है कि हर कदम पर

0: तेरे, हम कहां तक तेरे पहलू से सरकते जाएं। अब एक शेर मैंने कहने की कोशिश की है, हाजिर करता हूं, सुनिए। हम मुसाफिर नहीं जो भटक जाएंगे, दुश्मनी यार किस किस से लेंगे भला, दुश्मनी यार किस किस से लेंगे भला, तेरे पहलू से हम ही सरक जाएंगे।
1: वाह वाह,
0: तेरे पहलू से हम ही सरक जाएंगे, चांद मस्ती में गुम है उसे क्या खबर, चांद मस्ती में गुम है उसे क्या खबर, जंगलों में मुसाफिर भटक जाएंगे।
1: वाह वाह,
0: चांद मस्ती में गुम है उसे क्या खबर, जंगलों में मुसाफिर भटक जाएंगे। और एक मतला सुनाता हूँ, मतला सुन लीजिए ये भी साहब, के मतला ये है, ये वक्त क्यों तेरी तस्वीर पर गंवाते हैं, ये वक्त क्यों
1: तेरी तस्वीर
0: पर गंवाते हैं, जब इनसे बनती नहीं है तो क्यों बनाते हैं।
1: वाह वाह वाह,
0: जब इनसे बनती नहीं है
1: तो क्यों बनाते
0: तो क्यों बनाते हैं। और चंद शेर सुनिए, मैं समझ में नहीं आ रहा कैसे सुनाऊं कि आपके हाथ खुले और जरा आप थोड़ा सा मुशायरे के माहौल में आए, इतना तो जोर पड़ा भी नहीं मुशायरे में आज, इतना आप थक गए हैं।
1: क्या क्या
0: ये भोपाल है और भोपाल में शायरी कैसे सुनी जाती है ये बताने की जरूरत नहीं है। एक मतला और सुन लीजिए, मतला ये है कि साहब देखिए, मतला कि जरा सा सब्र था जो कर गए हम, जरा सा सब्र था
1: जो कर गए हम
0: उसे लगने लगा था मर गए हम।
1: वाह भाई वाह वाह वाह,
0: उसे लगने लगा था मर गए हम। अब ये शेर सुनिए साहब, बतौर खास ये शेर सुनाता हूँ, उसे लगने लगा था मर गए हम, ये नाकदरी हमारी इसलिए है, ये नाकदरी हमारी इसलिए है, तेरा होने में जल्दी कर गए
1: हम। वाह वाह भाई, जोरदार तालियों से नवाजे, क्या कहने, वाह वाह वाह वाह वाह,
0: बहुत शुक्रिया, बहुत इनाय। ऐसे ही बस ऐसे ही सुनिए, तो हाजिर करता हूँ, सुनिए। उसे लगने लगा था मर गए हम, ये नाकदरी हमारी इसलिए है, तेरा होने में जल्दी कर गए हम।
1: वाह,
0: रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है, रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है, तेरी खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती है। और अब शेर फिर से सुनाता हूँ, तेरी खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती है, उसको भुलाकर मुझको ये मालूम हुआ है, उसको भुलाकर
1: मुझको ये मालूम हुआ है
0: आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: बहुत शुक्रिया जी, हाजिर करता हूँ, सुनिए। रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है, तेरी खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती है, उसको भुलाकर मुझको ये मालूम हुआ है, आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती है।
1: क्या कहने।
0: और सुनिए, एक मतलब ये है कि हटाओ हाथ आंखों से, ये तुम हो जानता हूँ मैं।
1: वाह,
0: हटाओ हाथ आंखों से,
1: ये तुम हो जानता हूँ मैं,
0: तुम्हें खुशबू नहीं आहट से भी पहचानता हूँ।
1: वाह वाह,
0: तुम्हें खुशबू नहीं, बहुत शुक्रिया, तुम्हें खुशबू नहीं आहट से भी पहचानता हूँ मैं, भटकता फिर रहा था गम लिपट कर मुझसे ये बोला, भटकता फिर रहा था गम लिपट कर मुझसे ये बोला, कहाँ जाऊं तुझी को शहर भर में जानता हूं मैं, कहाँ जाऊं तुझी को शहर भर में जानता हूं। मतलब सुनिए, मतलब ये है कि लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। आइए मैं एक गजल के चंद शेर आपको तरन्नुम से सुना दूं, सिर्फ उससे पहले एक मतला एक शेर और सुन लीजिए। मतला सब कुछ

0: सब कुछ आसान हो सकता है, ऐसा लगता है। सब कुछ आसान हो सकता है,
1: ऐसा लगता है,
0: ऐसा लगता है। कुछ लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है,
1: वाह वाह वाह।
0: कुछ लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है, चाहे सब खो जाए लेकिन उनको मत खोना। चाहे सब खो जाए लेकिन उनको मत खोना, जिनको तेरी आंख का आंसू दरिया लगता है।
1: वाह वाह।
0: जिनको तेरी आंख का आंसू दरिया लगता है, अब उसकी किस्मत है जिसको तू अच्छा समझे। अब उसकी किस्मत है जिसको तू अच्छा समझे। वैसे तो हर रंग ही तुझ पे अच्छा लगता है।
1: वाह वाह।
0: वैसे तो हर रंग ही तुझ पे अच्छा लगता है। एक मतलब आपको सुनाना चाह रहा था, वो सुन लीजिए। उसमें एक शेर अच्छा हो गया तो इसलिए सुना रहा हूँ। मतलब थोड़ा सा जरा बारीक है, हाजिर करता हूँ, सुनिए। मतलब ये है कि तकब्बुर का नतीजा है ये सब जानी नहीं समझे। सुनो भाई
1: जी। अच्छा।
0: तकब्बुर का नतीजा है ये सब जानी नहीं समझे। तुम्हारे घर में क्यों फैली है वीरानी
1: नहीं समझे।
0: नहीं समझे। तुम्हारे घर में क्यों फैली है वीरानी नहीं समझे। अब ये शेर सुनाना है। तुम्हारे घर में क्यों फैली है वीरानी नहीं समझे। उसे कहना पड़ा हमसे सो हम पे इसलिए लानत। भाई शेर
1: सुनिए। उसे कहना पड़ा हमसे।
0: उसे कहना पड़ा हमसे सो हम पे इसलिए लानत। हम उसको देखकर उसकी परेशानी नहीं समझे।
1: क्या कहने।
0: उसे कहना पड़ा हमसे सो हम पे इसलिए लानत। हम उसको देखकर उसकी परेशानी नहीं समझे। ख्वाब जो पूरे करने हो तो जुर्रत करनी पड़ती है, किस्मत भी होती है लेकिन मेहनत करनी पड़ती है।
1: क्या कहने।
0: किस्मत भी होती है लेकिन
1: मेहनत करनी पड़ती है,
0: मेहनत करनी पड़ती है। और साहब ये देखिए, गजल का ये शेर सुनिए और महसूस कीजिएगा उन लोगों के लिए जो अपने वतन से दूर रह रहे हैं रोजी रोटी के लिए या कुछ और मजबूरी है, उनके लिए एक शेर कहा है। शेर सुनिए साहब। घर की कीमत क्या होती है, घर वाले क्या होते हैं।
1: वाह।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: हमारे आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में आप सुन रहे थे मुशायरा। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब सुनते हैं स्वाधीनता के गान पर रेडियो रिपोर्ट।

0: जिसमें नृत्य नाटिका स्वाधीनता के गान में 12 कविताएं एक साथ पिरोई गईं। आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए रविंद्र भवन में।
1: तो लीजिए प्रस्तुत है हितैषी जी की कविता, उरुजे कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा।

तो ये था गीत, कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी और अपना आसमां होगा। आज जब हम आजाद भारत में अपना स्वाधीन जीवन जी रहे हैं, तब इस बात का अनुमान लगाना भी कठिन है कि पिछली शताब्दी के शुरू में कवि इसी स्वाधीनता के स्वप्न देख रहे थे। इसी सपने को आगे बढ़ाया मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में झांसी के निकट चिरगांव में हुआ था। वे बचपन में स्वर्णलता के नाम से छप्पे लिखते थे, फिर किशोर अवस्था में रसिकेश के नाम से लिखने लगे। उन्होंने अनुवाद का कार्य मधुक के नाम से किया और भारती तथा नित्यानंद के नाम से अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कविताएं लिखी। 1912 में आई उनकी कृति भारत भारती ने स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाई। इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि कहा। गुप्त जी हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के पहले महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। उन्होंने आरंभ में ब्रज भाषा में काव्य सृजन किया और संस्कृत छंदों में कविता लिखी। राष्ट्र चेतना और मानवीय उत्थान उनकी कविता के मूल में है। उनकी कृतियों में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य बोलता है। उन्होंने विपुल साहित्य की रचना की। 2 महाकाव्य, 20 खंड काव्य, 17 गीति काव्य, 4 नाटक और अनेक गद्य कृतियां उनकी उपलब्ध हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है साकेत, भारत भारती, जयद्रथ वध और विष्णु प्रिया जैसी कृतियों के महान रचनाकार राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का ये गीत, मस्तक ऊंचा द्वार पही का।

नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आजाद हिंद।

0: स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: नमस्कार श्रोताओं, हम हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम आजाद हिंद की एक और कड़ी, जिसमें हम बात करेंगे।
2: श्रोताओं, मेरा भी नमस्कार स्वीकार कीजिए। क्या बात है तारीख, आज कुछ जल्दी में लग रही हो।
1: अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल आज आजाद हिंद में हम जिन महान देशभक्तों की बात करेंगे ना, उनके कार्य ही ऐसे हैं कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही।
2: अच्छा, ऐसा है क्या? तो जल्दी से बताना शुरू करो, हमारे श्रोतागण और मैं सब लोग बहुत उत्सुक हैं सुनने के लिए।
1: तो श्रोताओं आइए, आज इस कड़ी में हम बात करते हैं अल्लूरी सीताराम राजू की।

0: इनका जन्म विशाखापट्टनम के एक गांव में 4 जुलाई 1897 को हुआ था और लालन पालन एक कलेक्टर के घर में।
1: बचपन से ही राजू पढ़ाई लिखाई में बहुत कुशाग्र थे और उन्होंने स्वयं के प्रयासों से संस्कृत और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया और यहीं से इनके मन में क्रांति के बीज अंकुरित हुए।
0: वैसे तो राजू गांधी जी के सिद्धांतों के हिमायती थे और मंदिरों में धार्मिक उपदेश और भजन कीर्तन किया करते थे, मगर जब उन्हें लगा कि अहिंसक आंदोलन इतना प्रभावी सिद्ध नहीं हो पा रहा तो उन्होंने अपना बैरागी बाना छोड़ दिया और आदिवासी जनता को इकट्ठा करके सेना के रूप में ढालना शुरू किया
1: और इस तरह आरंभ हुआ एक नया क्रांति युग।
2: दुम तकड़ी दुम दुम दा, तकड़ी दुम दुम दा, दुम तकड़ी।

0: लोग राजू की सेना में भर्ती होने लगे और उनकी सेना का आकार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। लोगों को राजू पे बहुत विश्वास था। वो उसे देवता की तरह पूजते थे।
1: अब राजू के लिए सबसे बड़ी समस्या थी हथियार। उनके पास तीर कमान तो थे मगर बंदूकें और आग्नेय हथियार नहीं थे, और उसका हल ये निकाला गया कि पुलिस के हथियारों को लूटा जाए और डकैती डाली जाए। बस राजू और उसके साथी जान हथेली पे लेके अपनी मंजिल की ओर चल पड़े।
0: और श्रोताओं, राजू ने एक के बाद एक थानों को लूटना शुरू कर दिया। वे लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि राजू के नाम से पुलिस वाले थाने छोड़ छोड़ कर भाग जाते थे।
1: इसी क्रम में राजू ने रंपा क्षेत्र के चिंतापल्ली और करभड़ा देवी पैठ में लूटपाट के द्वारा बहुत से हथियार जमा किए। इधर अंग्रेजों को भी अब लगने लगा था कि यदि राजू को रोका नहीं गया तो ये अंग्रेजी राज्य के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकता है।
0: बस फिर क्या था, तुरंत दो अंग्रेज अफसरों स्कॉट और आयर की नियुक्ति कर दी गई और उन्होंने 24 सितंबर 1922 को राजू पर हमला कर दिया। मगर वे राजू की सेना के आगे टिक नहीं पाए और दोनों अफसरों की मौत हो गई।
1: इसके बाद राजू का नाम अंग्रेजों के लिए आतंक का पर्याय बन गया। दरअसल राजू सारी योजनाएं इतनी चतुराई से बनाते थे कि अंग्रेज उसका छोर भी नहीं पा पाते थे और राजू काम करके निकल जाते थे।
0: एक बार की बात है, उन दिनों के एक बहुत प्रसिद्ध क्रांतिकारी बाबा पृथ्वी सिंह को अंडमान जेल से आंध्र प्रदेश की जेल में ले जाया जा रहा था और बाबा चलती ट्रेन से कूदकर भाग निकले, मगर पकड़ लिए गए और फिर से जेल में डाल दिए गए। तभी राजू ने ऐलान कर दिया कि फला तारीख को इतने बजे मैं बाबा पृथ्वी सिंह जी को जेल से आजाद करवाऊंगा।
1: अंग्रेजों को पता था कि राजू जो कहता है वो करता भी है। बस फिर क्या था, आसपास के सारे थानों से पुलिस बुलाकर जेल को छावनी बना दिया गया। और इधर राजू ने अपनी सेना को छोटे छोटे बहुत से दलों में बांटकर उन थानों को लूटने भेज दिया जिनका पुलिस बल जेल की सुरक्षा में लगाया गया था।
0: इस तरह अपनी सूझबूझ से राजू ने एक ही प्रयास में हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा प्राप्त कर लिया। और अब राजू और उसके सैनिक हथियारों से लैस होकर जोश से भर कर चल पड़े अपनी धरती की गुलामी मिटाने के लिए।

0: अंग्रेजों ने असम राइफल्स नाम की एक पूरी सेना राजू के पीछे लगा दी। 6 मई 1924 को दोनों सेनाओं का मुकाबला हुआ। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध हुआ। बहुत से सैनिक मारे गए, मगर राजू की सेना का नुकसान कुछ ज्यादा हुआ। उसके बहुत खास 12 सैनिक मारे गए और बहुत से घायल हो गए। राजू भी बुरी तरह जख्मी हुआ,
1: मगर उसके साथ ही उसको बचा कर वहां से ले गए। उनकी योजना थी कि फिर से सैनिकों को इकट्ठा कर अंग्रेजों को इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। अगले दिन 7 मई को जब घायल राजू गोदावरी नदी में स्नान कर रहा था, तभी किसी मुखबिर की सूचना पे अंग्रेज सेना वहां आ धमकी।
0: वहां राजू और उसके साथियों ने उनका मुकाबला किया, मगर अंग्रेजों की विशाल सेना के आगे भला मुट्ठी भर लोग कहां टिकते। राजू को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर अंग्रेजों को लगा कि यदि राजू को लेकर कोतवाली गए या जेल में राजू को रखा तो इसके साथी जो कि जेलों पे हमले करने के आदि हैं, इसको जरूर छुड़ा के ले जाएंगे।
1: बस इसी डर से उन्होंने राजू को एक पेड़ से बांधा और गोलियों से छलनी कर दिया और एक और महान देशभक्त शहीदों की फहरिस्त में शामिल हो गया और हमेशा हमेशा के लिए भारतवासियों के दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ गया। हमारा

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: ये है रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां पर केंद्रित कार्यक्रम कला कल्लोलिनी।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। मैं हूँ आपका रेडियो मित्र विजयकांत नायक
2: और मैं हूँ आपकी रेडियो मित्र डॉक्टर गौसिया।
0: श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खान की।

0: कला कललिनी में बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जो एक साज का ही पर्याय बन गया, एक ऐसा कलाकार जिसने एक वाद्य को शादियों के मंडप से निकालकर शास्त्रीयता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया।
1: सुना आपने श्रोताओ, ये सिर्फ संगीत नहीं है, ये बनारस की सुबह की पहली अंगड़ाई है। ये उस शख्स की फूंक है जिसने पत्थर के बुतों में भी जान डाल दी। आज हम किसी इंसान की नहीं, जैसे एक इबादत की बात कर रहे हैं। आज जिक्र है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का।
0: श्रोताओं, भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाश में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र हैं जिनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ सकती। उन्होंने एक ऐसे वाद्य यंत्र को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया जिसे कभी केवल मांगलिक कार्यों या शादियों तक सीमित समझा जाता था। शहनाई, जो कभी महलों की द्योड़ी पर बजने वाला एक मामूली सा साज हुआ करता था, उस्ताद की जादुई फूंक से वह शास्त्रीय संगीत की रानी बन गया।
1: जी हाँ, बिस्मिल्लाह खान महज एक संगीतकार नहीं थे, वे भारत की उस मिली जुली संस्कृति गंगा जमुनी तहजीब के सबसे बड़े प्रतीक थे, जहां मजहब की दीवारें संगीत के स्वरों में विलीन हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि पहले शहनाई सिर्फ शादियों में या महलों के गलियारों में ही बजती थी, लेकिन इस जादूगर ने उसे महलों की ड्योढ़ी से उठाकर सात समंदर पार ओपेरा हाउस तक पहुंचा दिया।
0: तो चलिए आज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन के उन पन्नों को पलटते हैं जिन पर सुरों की स्याही बिखरी है। बात करते हैं उस फकीर की जिसकी फूंक में खुदा का नूर था, एक ऐसा कलाकार जिसने शहनाई को शादियों के शोर से निकालकर दुनिया के सबसे बड़े कॉन्सर्ट हॉल की इबादत बना दिया।
1: आज हम सिर्फ एक संगीतकार की बात नहीं कर रहे, आज हम भारत की उस साझी तहजीब की बात कर रहे हैं जिसे दुनिया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से जानती है। एक ऐसा शख्स जिसने नमाज भी पढ़ी और माँ सरस्वती की आराधना भी की।
0: श्रोताओं, अक्सर लोग उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को बनारस का समझते हैं, हालांकि बनारस में उनकी रूह जैसे बस्ती थी, पर उनकी जड़ें बिहार के डुमराव की मिट्टी में है। 21 मार्च 1916 के दिन पैगंबर बख्श खान के घर खुशियां आईं। जन्म हुआ एक असाधारण प्रतिभा का।
1: हाँ, और नाम का किस्सा तो इतना मशहूर है कि आज भी लोग उसे चाव से सुनते हैं। उनका नाम तो कमरुद्दीन रखा गया था, लेकिन जब उनके दादा रसूल बख्श खान ने उस मासूम को देखा तो उनके कानों में जैसे कुदरत ने कुछ कहा। उन्होंने बच्चे को गोद में लिया और उनके मुंह से निकला बिस्मिल्लाह,
0: और बस वो लफ्ज उनके नाम के साथ ऐसा जुड़ा कि आज दुनिया उन्हें उसी नाम से जानती है। श्रोताओं, मानती भी है और पूछती भी है। उनके पूर्वज भोजपुर की रियासत के दरबारी संगीतकार थे, यानी शहनाई उनके पालने में ही रख दी गई थी। संगीत उनके लिए कोई शौक नहीं बल्कि विरासत था। उनकी माँ मिठन बाई ने उन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला। उनके पिता पैगंबर बख्श खान और दादा रसूल बख्श खान दोनों ही डुमराव रियासत के महाराजा केशव प्रसाद सिंह के दरबारी संगीतकार थे, तो उनके दादा और पिता ने उनका परिचय संगीत के स्वरों से कराया और बिस्मिल्लाह हुआ जैसे एक महानता के सफर का।
1: लेकिन वो विरासत, वो तालीम निखरी बनारस के घाटों में और मंदिरों में, और जहां वो महज 6 साल की उम्र में अपने मामा के पास चले आए। उनके मामा थे अली बख्श विलायती, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के आधिकारिक शहनाई वादक थे। उन्होंने ही बिस्मिल्लाह को उस्ताद बिस्मिल्लाह बनाया। उनकी तालीम महज स्वरों की पहचान नहीं थी, एक तपस्या थी। सुबह के 3 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है, कड़कड़ाती ठंड हो या बारिश, माँ उन्हें गंगा किनारे बालाजी मंदिर के पास ले जाकर बैठा देती। वहां घंटों तक सा का रियाज होता, यानी घंटों तक सिर्फ एक ही सुर का अभ्यास।
0: जी हाँ, आज भी संगीत में यही तो कहते हैं उच्च कोटि के गुरु, एक सादे सब सदे, सब सादे सद जाएं। और फिर वो बंदिश भी तो शास्त्रीय संगीत में आज भी बहुत गाई जाती है, साधे प्रथम सुर। उनके मामा का कहना था सुर को गले से नहीं रूह से निकालो। मामा का सख्त निर्देश था, बेटा जब तक तुम्हारी शहनाई से निकलने वाला सुर पत्थर को ना पिघला दे तब तक रियाज मत छोड़ना। श्रोताओं, वो अक्सर कहते थे कि रियाज के दौरान उन्हें बालाजी मंदिर में एक अजीब सी खुशबू आती थी, उन्हें महसूस होता था कि साक्षात भगवान उनके सुरों को सुन रहे हैं। इसी सादगी और यकीन ने उन्हें एक कलाकार से उठाकर एक सूफी बना दिया। वो मंदिर की शांति और गंगा की लहरों के बीच बस संगीत के व्याकरण को नहीं, संगीत की रूह को आत्मसात कर रहे थे।
1: लेकिन श्रोताओं, वो सिर्फ एक गंभीर शिष्य नहीं थे, एक चंचल बच्चे भी थे। डुमराव के बिहारी जी मंदिर में वो चेता गाते थे, और पता है इनाम क्या मिलता था? 1.25 किलो का लड्डू। वो अक्सर फक्र से कहा करते थे कि उस 1.25 किलो के लड्डू की मिठास के आगे उन्हें दुनिया के बड़े बड़े अवार्ड फीके लगते हैं। और कई बार तो वो सोन नदी के किनारे जाकर कानों में कंकड़ डाल लेते थे ताकि बाहर का शोर बंद हो जाए और सिर्फ अंदर की धुन सुनाई दे। वाकई क्या कमाल का इश्क था खान साहब को संगीत से।
0: 1937 में कोलकाता के ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने शहनाई बजाई तो संगीत जगत के दिग्गज दंग रह गए। उससे पहले शहनाई को शास्त्रीय संगीत के योग्य नहीं माना जाता था, लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने अपनी कठिन साधना से साबित कर दिया कि शहनाई में भी वे सभी बारीकियां और जटिलताएं पैदा की जा सकती हैं जो सितार या सरोद में होती हैं। उन्होंने राग रागनियों को शहनाई पर उतारा और उसे एक नया गौरव प्रदान किया।
1: आइए अब हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के जीवन के उन गहरे पहलुओं को विस्तार देते हैं जो उन्हें एक कलाकार से ऊपर उठाकर एक युग पुरुष बनाते हैं। यहां जानते हैं उनके रागों की विशेषता, उनके प्रमुख शिष्यों और उनके जीवन के अनछुए बनारसी रंगों को। खान साहब की शहनाई में जो बात सबसे अलग थी वह थी उनकी मीड़, एक सुर से दूसरे सुर तक बिना टूटे पहुंचना और गमक। शास्त्रीय संगीत में शहनाई को एक कठोर वाद्य माना जाता था, लेकिन खान साहब ने उसे मानव कंठ जैसी कोमलता दी।
0: वे हर राग में निपुण थे, लेकिन राग भैरवी उनका प्राण था। कहा जाता है कि जब वे भैरवी बजाते थे तो सुनने वालों की आंखों से आंसू छलक आते थे। इसके अलावा राग बागेश्वरी, राग केदार, राग यमन और राग दरबारी पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी।
1: खान साहब ने केवल शुद्ध शास्त्रीय संगीत ही नहीं बल्कि बनारस की लोक गायकी, ठुमरी, कजरी और चेता को भी शहनाई पर उतारा। उनके द्वारा बजाई गई चेता सुनकर ऐसा लगता था जैसे बनारस के किसी घाट पर साक्षात वसंत उतर आया हो। इसके साथ ही खान साहब को सर्कुलर ब्रीदिंग में महारत हासिल थी।
0: ये एक ऐसी तकनीक थी जिसमें वे नाक से सांस लेते थे और मुंह से शहनाई में फूंक मारते थे। इससे संगीत का प्रवाह कभी टूटता नहीं था। वे बिना रुके कई मिनटों तक एक ही तान खींच सकते थे, जो फेफड़ों की अद्भुत क्षमता का प्रमाण था।
1: जी हाँ, तभी तो वो रच पाए इतिहास, आजाद भारत की पहली आवाज बनने का। दोस्तों, इतिहास का वो पन्ना कोई कैसे भूल सकता है जब 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर तिरंगा फहराया जाने वाला था। पंडित नेहरू ने खास तौर पर खान साहब को दिल्ली बुलाया।
0: बिस्मिल्लाह खान साहब द्वारा लाल किले पर शहनाई वादन भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भावनात्मक घटना थी। तब लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक भाषण से पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई से राग काफी बजाकर आजादी का स्वागत किया था। जी हां, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद ये इच्छा जताई थी कि बिस्मिल्लाह खान इस शुभ अवसर पर अपनी शहनाई बजाएं।
1: और इसके लिए बिस्मिल्लाह खान साहब को विशेष रूप से मुंबई से दिल्ली बुलाया गया था। उन्हें भारतीय वायुसेना के विमान से लाया गया। बिस्मिल्लाह खान ऐसे पहले भारतीय कलाकार थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत में अपनी कला का प्रदर्शन किया। यह घटना न केवल उनके संगीत करियर के लिए बल्कि भारत के स्वतंत्रता दिवस के जश्न के लिए भी एक मील का पत्थर मानी जाती है, जिसने शहनाई को राष्ट्र की आवाज बना दिया।
0: बिल्कुल, आजाद भारत की सुबह का स्वागत किसी भाषण से नहीं बल्कि खान साहब की शहनाई से हुआ था। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से राग काफी छेड़ा था। उस दिन पूरी दुनिया ने माना कि भारत की आजादी की गूंज शहनाई में बसी है। तब से ये परंपरा बन गई कि हर स्वतंत्रता दिवस पर उनकी शहनाई दूरदर्शन पर गूंजती रहती है।
1: श्रोताओं, जब उनकी शोहरत बढ़ी तो फिल्मों के दरवाजे भी खुले। 1959 में फिल्म आई गूंज उठी शहनाई। निर्देशक विजय भट्ट तो उनके इतने दीवाने थे कि उन्होंने फिल्म का पूरा प्लॉट ही शहनाई के इर्द गिर्द बुना। उनका बजाया गाना दिल का खिलौना है टूट गया आज भी लोगों को रुला देता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी कामयाबी के बाद भी खान साहब ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। उन्होंने सिर्फ दो फिल्में की, जिनमें से एक दक्षिण भारत की थी, कन्नड़ फिल्म सनदी अपन्ना। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बड़ी सादगी से कहा, मुझे फिल्मों की बनावटी दुनिया पसंद नहीं, वहां संगीत बिकता है और यहां संगीत जिया जाता है। उन्हें स्टूडियो की बंद दीवारों से ज्यादा गंगा का किनारा और खुला आसमान पसंद था। उनके लिए संगीत व्यापार नहीं बल्कि खुदा की इबादत थी। उन्होंने करोड़ों के ऑफर ठुकरा दिए सिर्फ अपनी सादगी और सुकून के लिए। तभी तो वो शहनाई के शहंशाह कहलाए।
0: उनकी सादगी का एक मशहूर किस्सा है कि वे अक्सर फटी हुई लुंगी पहन लेते थे। जब उनके शिष्यों ने कहा कि बाबा आप इतने बड़े कलाकार हैं, भारत रत्न हैं, आपको ऐसे नहीं रहना चाहिए, तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, पगलो मालिक से सुर मांगो, कपड़े नहीं। ये लुंगी तो रफू हो जाएगी, लेकिन अगर सुर फट गया तो उसे कोई रफू नहीं कर पाएगा। यह उनकी महानता का परिचायक था।
1: और श्रोताओ, अब बात करते हैं उनके बनारसी मिजाज की। उस्ताद का व्यक्तित्व पूरी तरह से बनारसी था। उनके जीवन में दिखावा नाम मात्र को भी नहीं था।
0: उन्हें बनारस की कचौरी, जलेबी और खास तौर पर मलाईयों बनारस की खास मिठाई बहुत पसंद थी। वे अक्सर अपने घर के पास वाली दुकान से खुद नाश्ता मंगाते थे। उनकी दिनचर्या बड़ी दिलचस्प थी। वे सुबह गंगा में स्नान करते थे, सरस्वती मंदिर में माथा टेकते थे और फिर मस्जिद जाकर नमाज अदा करते थे। वे कहते थे, सुर ही मेरा अल्लाह है और सुर ही मेरी सरस्वती।
1: और श्रोताओ, बहुत कम लोग जानते हैं कि युवा अवस्था में खान साहब को कुश्ती का भी बहुत शौक था। वे पहलवानों का बहुत सम्मान करते थे और अक्सर अखाड़ों में जाकर उनकी हौसला अफजाई करते थे। खान साहब शुरू में विदेश जाने से बहुत डरते थे। उन्हें हवाई जहाज से डर लगता था। 1966 में जब भारत सरकार ने उन्हें एडिनबर्ग इंटरनेशनल फेस्टिवल के लिए कहा तो उन्होंने कई बहाने बनाए। फिर उन्होंने शर्त रख दी कि मैं तभी जाऊंगा जब मुझे और मेरी पूरी टीम को सरकारी खर्चे पर हज की यात्रा करवाई जाएगी। सरकार ने शर्त मान ली और जब वो एडिनबर्ग पहुंचे तो वहां के अखबारों ने लिखा, ये संगीत नहीं खुदा की आवाज है।
0: और फिर इसके बाद तो वो रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने मॉन्ट्रियल वर्ल्ड एक्सपो 1967, कांस आर्ट फेस्टिवल 1969 और ओसाका ट्रेड फेयर 1970 जैसे बड़े मंचों पर भारत का नाम रोशन किया। अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल में तो आज भी उनकी यादें बसी हुई हैं। लेकिन इतनी शोहरत और धन मिलने के बावजूद उनकी सादगी कभी कम नहीं हुई। वे ताउम्र बनारस की तंग गलियों में एक साधारण से मकान में रहे। खान साहब शायद भारत में अकेले ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने चारों शीर्ष नागरिक सम्मान प्राप्त किए। 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्म भूषण, 1980 में पद्म विभूषण और अंत में 2001 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्राप्त किया।
1: लेकिन इतने पुरस्कारों के बाद भी उनकी सादगी नहीं बदली। वो अक्सर बनारस में साइकिल रिक्शा पर घूमते हुए मिल जाते थे। एक बार एक विदेशी फैन ने उनसे कहा, खान साहब आप अमेरिका चलिए, मैं आपके लिए वहाँ पूरा बनारस बना दूंगा। और खान साहब ने बड़ी मासूमियत से पूछा, साहब सब तो ले आओगे पर मेरी गंगा मैया को वहाँ कैसे लाओगे? उनके लिए गंगा का पानी और बनारस की मिट्टी किसी स्वर्ग से बढ़कर थी।
0: अक्सर कहा जाता है श्रोताओं की एक कलाकार की असली पहचान वो नहीं जो वो खुद कहे, बल्कि वो है जो उसके समकालीन दिग्गज उसके बारे में कहें। और खान साहब के चाहने वाले तो पूरी दुनिया में फैले थे। सितार सरताज पंडित रविशंकर ने एक बार बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था, शहनाई को शादियों के पंडाल से निकालकर क्लासिकल म्यूजिक के स्टेज तक लाने का पूरा श्रेय सिर्फ बिस्मिल्ला खान को जाता है। उन्होंने इस साज को एक नई इज्जत बख्शी है।
1: और सिर्फ संगीतकार ही नहीं, सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर जी तो उन्हें बाबा कहकर बुलाती थी। उन्होंने एक बार कहा था, खान साहब की शहनाई में जो दर्द और मिठास है वो किसी इंसान की फूंक नहीं बल्कि खुदा का नूर लगता है। और आपको पता है सरोद सम्राट उस्ताद अमजद अली खान साहब ने उनके बारे में क्या कहा है? वे कहते हैं, खान साहब का संगीत व्याकरण नहीं बल्कि कविता है, वे सुरों से चित्र बना देते हैं।
0: जी हाँ, पश्चिमी दुनिया के मशहूर गिटारिस्ट एरिक क्लैप्टन उनकी मुरीद हुआ करते थे। उन्होंने एक बार जिक्र किया था कि वे अपने गिटार से वैसी ही कशिश पैदा करने की कोशिश करते हैं जैसी खान साहब की शहनाई में होती थी। यही उनकी महानता थी, चाहे वो पंडित नेहरू हों या बनारस की गलियों का कोई आम रिक्शे वाला। खान साहब सबके लिए एक समान थे। वे अक्सर कहते थे, सुर सबको जोड़ता है, तोड़ता नहीं। उस्ताद बिस्मिल्ला खान सच्चे अर्थों में धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक थे। वे एक सच्चे मुसलमान थे जो पांचों वक्त की नमाज अदा करते थे, लेकिन साथ ही वे माँ सरस्वती के परम भक्त भी थे। काशी विश्वनाथ मंदिर की देवड़ी पर बैठकर शहनाई बजाना उनकी रोज की इबादत हुआ करती थी। वे कहते थे कि संगीत का कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने अपने जीवन से ये संदेश दिया और सुर और ताल किसी सीमा या मजहब में नहीं बंधे होते ये भी बताया।
1: उस्ताद साहब के रिलीज संगीत एल्बम्स की अगर हम बात करें तो द मैजिक शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान 1962, बिस्मिल्ला खान पंडित वी जी जोग के साथ 1962, राग बागेश्वरी राग सोहनी 1963, शहनाई रिसाइटल 1963, उस्ताद बिस्मिल्ला खान वेरियस रागास 1987 और मेघ मल्हार वॉल्यूम 1 1991 शामिल हैं।
0: इसके साथ ही उनके लोकप्रिय संग्रह द ग्रेटेस्ट हिट्स ऑफ उस्ताद बिस्मिल्ला खान, प्लेटिनम वॉल्यूम 1 कजरी, द रेन राग 2016, शादी की शहनाई वॉल्यूम 1 एंड 2 1995, रूबरू वॉल्यूम 1 एंड 2 2004, इबादत रागिनी यामिनी लाइव एट द बारबिकन सेंटर 1994। इसके साथ ही उनके द्वारा बजाए गए रागों में श्याम कल्याण और शंकरा बेहद शांत और आध्यात्मिक माने जाते हैं। उस्ताद के पास करोड़ों की संपत्ति हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अपना सारा पैसा गरीबों, रिश्तेदारों और ज़रूरतमंदों की मदद में खर्च कर दिया। उनके घर में अक्सर 40 से 50 लोग एक साथ खाना खाया करते थे। वे एक संयुक्त परिवार के स्तंभ थे।
1: 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की आयु में इस महान संगीत साधक ने अपनी अंतिम सांस ली। उनके निधन पर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ बनारस में सुपुर्द खाक किया गया। उनकी आखिरी इच्छा के अनुसार उनकी प्रिय शहनाई को भी उनके साथ ही दफनाया गया। उनकी मृत्यु के बाद भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था, जो आमतौर पर केवल बड़े राजनेताओं के लिए होता है। यह इस बात का प्रमाण था, वे एक संगीतकार नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा का हिस्सा थे।
0: बिस्मिल्ला खान साहब ने हमें सिखाया कि सच्ची कला बाजार में नहीं बिकती, वे साधना की कोख से जन्म लेती है। उनके शहनाई की गूंज आज भी हर भारतीय शादी की सुबह, हर मंदिर की आरती और हर मस्जिद की अजान के बीच कहीं ना कहीं महसूस की जा सकती है। श्रोताओं, वे शून्य से शिखर तक पहुंचने की एक ऐसी दास्तां है जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी।
1: शहनाई को अपनी बेगम कहने वाले उस्ताद बिस्मिल्ला खान आज हमारे बीच सशरीर नहीं है, लेकिन उनकी शहनाई की तान आज भी हवाओं में तैरती हुई महसूस होती है। उन्होंने हमें सिखाया है कि ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़े कैसे रहा जाता है। उन्होंने संगीत को इबादत बनाया और इबादत को संगीत। उनकी विरासत हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी कि कला महज प्रदर्शन की वस्तु नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब तक गंगा की लहरें काशी के घाटों से टकराती रहेंगी, उस्ताद बिस्मिल्ला खान की शहनाई भी गूंजती रहेगी।

0: तो श्रोताओ, ये था हमारा कार्यक्रम कला कल्लोलिनी, जो आज केंद्रित था उस्ताद बिस्मिल्ला खान पर। कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाठक, आलेख संदीप शर्मा का था, वाचन स्वर विजयकांत नायक
1: और मैं डॉक्टर गौसिया।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बिस्मिल्ला खां पर केंद्रित कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश।

0: मैं हूँ मितुल प्रदीप। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है। जिन्होंने भारत माता को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया, उनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: कुछ याद उन्हें भी कर लो।
2: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद अमेरिका और भारत में भी अपने शिष्यों से सदा वार्तालाप किया करते थे। उन वार्तालापों को लिपिबद्ध किया गया है। इससे हमें विभिन्न विषयों पर स्वामी जी द्वारा दिए गए व्याख्यान तथा विचारों के बारे में मालूम पड़ता है।
1: उनके शिष्य सभी विषयों पर उनसे प्रश्न पूछते और स्वामी जी भी बिना थके उन प्रश्नों का उत्तर देते। उनके उत्तरों से पता चलता है कि हर विषय पर वे गहन चिंतन मनन करते थे।
2: तुम दूसरों को मनुष्य बनने का उपदेश देते हो, पर उन्हें अच्छा भोजन नहीं दे सकते। मैं पिछले 4 वर्षों से इस समस्या पर विचार कर रहा हूं। क्या गेहूं से पिटे हुए चावल, चिवड़ा जैसी कोई चीज बनाई जा सकती है? मैं इस पर प्रयोग करना चाहता हूं, तब हम प्रतिदिन एक भिन्न प्रकार का भोजन प्राप्त कर सकते हैं। पीने के जल के संबंध में मैंने एक छन्नी की खोज की जो हमारे देश के लिए उपयुक्त हो सके। मुझे एक कड़ाही जैसा चीनी मिट्टी का बर्तन मिला जिसमें पानी निकाला गया और सभी कीटाणु चीनी मिट्टी की कड़ाही में रह गए, किंतु क्रमशः छन्नी स्वयं सभी प्रकार के कीटाणुओं का जमघट बन जाएगी। सभी प्रकार की छन्नियों में यह खतरा रहता है। निरंतर खोज करने के बाद एक उपाय विदित हुआ जिससे पानी का अभिस्रावण किया गया और उसमें ऑक्सीजन लाई गई। इसके बाद जल इतना शुद्ध हो गया कि इसके प्रयोग के फलस्वरूप स्वास्थ्य में सुधार सुनिश्चित है।
3: हम ईश्वर के पास कैसे पहुंच सकते हैं?
2: जब धाय बच्चे को बगीचे में ले जाती है और उसे खिलाती है, माँ उसे भीतर आने के लिए कहती है। बच्चा खेल में मग्न है और कहता है, मैं नहीं आऊंगा, खाने की मेरी इच्छा नहीं है। थोड़ी ही देर में बच्चा अपने खेल से थक जाता है और कहता है, मैं माँ के पास जाऊंगा। धाय कहती है, ये लो नई गुड़िया। पर बच्चा कहता है, अब मुझे गुड़ियों की तनिक भी इच्छा नहीं है, मैं तो माँ के पास जाऊंगा। जब तक वो चला नहीं जाता रोता रहता है। हम सभी बच्चे हैं, ईश्वर माँ है। हम लोग धन संपत्ति और इन सभी चीजों की खोज में डूबे हुए हैं, किंतु एक समय ऐसा आएगा जब हम जाग उठेंगे और ये प्रकृति हमें और खिलाने का प्रयत्न करेगी। तब हम कहेंगे, नहीं, मैंने बहुत पाया, अब मैं ईश्वर के पास जाऊंगा।
3: यदि हम ईश्वर से अभिन्न हैं और सदैव एक हैं, तो क्या हमारा कोई व्यक्तित्व नहीं है?
2: हाँ, है, वो ईश्वर है। हमारा व्यक्तित्व परमात्मा है। तुम्हारा ये इस समय का व्यक्तित्व वास्तविक नहीं है, तुम सच्चे व्यक्तित्व की ओर अग्रसर हो रहे हो। व्यक्तित्व का अर्थ है अविभाज्यता। जिस दशा में हम हैं उस दशा को तुम व्यक्तित्व कैसे कह सकते हो? 1 घंटे भर तुम एक ढंग से सोचते हो और दूसरे घंटे में दूसरे ढंग से और 2 घंटे पश्चात अन्य ढंग से। व्यक्तित्व तो वो है जो बदलता नहीं है। यदि वर्तमान दशा शाश्वत काल तक बनी रहे तो ये बड़ी भयावह स्थिति होगी। तब तो चोर सदैव चोर ही बना रहेगा और अधर्मी अधर्मी ही। यदि शिशु मरेगा तो वो शिशु ही बना रहेगा। वास्तविक व्यक्तित्व तो वो है जो कभी परिवर्तित नहीं होता है और ना कभी परिवर्तित होगा ही। वो हमारे अंतर में निवास करने वाला ईश्वर है।
3: स्वामी जी, किस कला को आप श्रेष्ठ मानते हैं, पूरब की या पश्चिमी कला?
2: यूनानी कला का रहस्य है प्रकृति के सूक्ष्मतम ब्यौरों तक का अनुकरण करना, पर भारतीय कला का स्वरूप है आदर्श की अभिव्यक्ति करना। यूनानी चित्रकार की समस्त शक्ति कदाचित मांस के एक टुकड़े को चित्रित करने में ही व्यय हो जाती है, और वो उसमें इतना सफल होता है कि यदि कुत्ता उसे देख ले तो उसे सचमुच का मांस समझकर खाने दौड़ाए। किंतु इस प्रकार प्रकृति के अनुकरण में क्या गौरव है? कुत्ते के सामने यथार्थ मांस का एक टुकड़ा ही क्यों ना डाल दिया जाए? दूसरी ओर आदर्श की अतीन्द्रिय अवस्था को अभिव्यक्त करने की भारतीय प्रवृत्ति भद्दे और कुरूप के चित्रण में विकृत हो गई है। वास्तविक कला की उपमा दी जा सकती है जो कि पृथ्वी से उत्पन्न होती है, उसी से अपना खाद्य पदार्थ ग्रहण करती है, उसके संस्पर्श में रहती है, किंतु फिर भी उससे ऊपर ही उठी रहती है। इसी प्रकार कला का भी प्रकृति से संपर्क होना चाहिए, क्योंकि ये संपर्क न रहने पर कला का अधःपतन हो जाता है। पर साथ ही कला का प्रकृति से ऊंचा उठा रहना भी आवश्यक है। कला सौंदर्य की अभिव्यक्ति है, प्रत्येक वस्तु कलापूर्ण होनी चाहिए।
1: स्वामी जी सभी कलाओं में नाट्य कला को श्रेष्ठ मानते थे। वे कहते हैं,
2: कला ध्यान प्रधान वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। नाटक सब कलाओं में कठिनतम है। उनमें दो चीजों को संतुष्ट करना पड़ता है, पहले कान, दूसरे आंखें। दृश्य का चित्रण करने में यदि एक ही चीज का अंकन हो जाए तो काफी है, परंतु अनेक विषयों का चित्रांकन करके भी केंद्रीय रस अक्षुण्य रख पाना बहुत कठिन है। दूसरी मुश्किल चीज है मंच व्यवस्था, यानी विविध वस्तुओं को इस प्रकार सजाना कि केंद्रीय रस अक्षुण्य रहे।
3: स्वामी जी, हम तो मनुष्य हैं, हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? कब हम ईश्वर के साथ एकाकार हो पाएंगे?
2: मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनो, तब तुम देखोगे कि वे सब बाकी चीजें स्वयं तुम्हारा अनुसरण करेंगी। परस्पर के घृणित द्वेष भाव को छोड़ो और सदेश्य, सदुपाय, सत्साहस और सद्वीर्य का अवलंबन करो। तुमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो अपनी कीर्ति यहीं छोड़ जाओ। तुलसी आयो जगत में, जगत हसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो आप हसे जग रोए। एक बात विचार कर देखो, मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्यों को बनाते हैं? मनुष्य रुपया पैदा करता है या रुपया मनुष्यों को पैदा करता है? मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है या कीर्ति और नाम मनुष्य पैदा करते हैं? अगर ऐसा कर सको तब तो तुम मनुष्य हो, अन्यथा तुम मनुष्य किस बात के?
0: स्वामी जी अमेरिका के ब्रुकलिन शहर में श्रोताओं के सम्मुख बोल रहे थे। भारत की नारी विषय पर उन्होंने कहा था,
2: नारीत्व का आदर्श भारत की उस आर्य जाति में केंद्रित है जो संसार के इतिहास में प्राचीनतम है। उस जाति में नर और नारी पुरोहित थे, अथवा जैसा वेद उन्हें कहते हैं वे सहधर्मी थे। प्रत्येक परिवार का अपना अग्निकुंड अथवा वेदी थी, जिस पर विवाह के समय विवाह की अग्नि प्रज्वलित की जाती थी और उसे उस समय तक जीवित रखा जाता था जब तक कि पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु नहीं हो जाती थी, और तब उसकी चिंगारी से चिता को अग्नि दी जाती थी। यहां पति और पत्नी एक साथ यज्ञ में बलि चढ़ाते थे, और ये भावना यहां तक पहुंच गई थी कि पुरुष अकेला पूजा भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये माना जाता था कि केवल यह अधूरा है और इसी कारण कोई अविवाहित मनुष्य पुरोहित नहीं बन सकता था। यह बात प्राचीन रोम और यूनान के बारे में भी सत्य है।
1: कालांतर में नारी के पतन का कारण समझाते हुए उन्होंने कहा था,
2: पर एक पृथक और विशिष्ट पुरोहित वर्ग के उदय हो जाने से इन सब देशों में नारी का सह पौरोहित्य पीछे पड़ जाता है। पहले ये सेमिटिक रक्त वाली असीरियन जाति थी जिसने इस सिद्धांत की घोषणा की थी कि लड़कियों को विवाहित होने पर भी न कोई हक और न कोई अधिकार है। ईरानियों ने बेबीलोनिया के इस विचार को विशेष गहराई के साथ हृदयंगम किया और उनके द्वारा ये रोम में और यूनान में पहुंचाया गया और नारी की स्थिति का सभी स्थानों पर पतन हुआ।
1: समाज में परिवर्तन आया और स्त्री पुरुष समीकरण भी बदल गया। स्वामी जी ने समझाया,
2: ऐसा होने का एक दूसरा कारण था, विवाह की प्रणाली में परिवर्तन। प्राचीनतम प्रणाली मात्र केंद्रित थी, अर्थात उसमें केंद्र मां थी और जिसमें लड़कियां उसके पद पर प्रतिष्ठित होती थी। इससे बहुपतित्व की एक विचित्र प्रथा उत्पन्न हुई जिसमें प्रायः 5 या 6 भाई एक पत्नी से विवाह करते थे। वेदों में भी इस प्रकार के संकेत मिलते हैं कि जब कोई पुरुष निसंतान मर जाता था तो उसकी विधवा को उस समय तक दूसरे पुरुष के साथ रहने की अनुमति थी जब तक कि वो मां न बन जाए। होने वाले बच्चे अपने पिता के नहीं वरन उसके मृत पति की होती थी। आगे चलकर विधवा को पुनः विवाह करने की अनुमति हो गई थी, जिसका आधुनिक विचार निषेध करता है।
0: जौहर प्रथा पर स्वामी जी ने कहा,
2: पर इन उद्भावनाओं के साथ साथ राष्ट्र में वैयक्तिक पवित्रता का एक अति तीव्र विचार उदय हुआ। वेद प्रत्येक पृष्ठ पर वैयक्तिक पवित्रता की शिक्षा देती है। इस विषय में नियम अत्यंत कठोर है। प्रत्येक लड़का और लड़की विश्वविद्यालय भेजा जाता था, जहां वे अपने 20वें अथवा 30वें वर्ष तक अध्ययन करते। यहां तनिक सी भी अपवित्रता का दंड भी प्रायः निर्दयता पूर्वक दिया जाता था। वैयक्तिक पवित्रता के इस विचार ने अपने को जाति के हृदय पर इतनी गहराई के साथ अंकित किया है कि वो लगभग पागलपन बन गया है। इसका ज्वलंत उदाहरण चित्तौड़ विजय के अवसर पर मिलता है। अपने से कहीं अधिक रुद्र की, और जब नारियों ने देखा कि पराजय निश्चित है, तो उन्होंने चौक में एक भीषण अग्नि प्रज्वलित की, और जैसे ही शत्रु ने द्वार तोड़े, 74,500 नारियां उस विशाल चिता में कूद पड़ी तथा लपटों में जल गई। ये शानदार उदाहरण भारत में आज तक चला आया है। जब किसी पत्र पर 74,500 लिखा होता है, तो उसका अर्थ यह होता है कि कोई अनाधिकृत रूप से पत्र को पढ़ेगा, वो उस अपराध के समान विशाल अपराध का दोषी होगा जिसने चित्तौड़ की उन पवित्र नारियों को मौत के मुंह में भेजा था।
1: नारी की स्थिति धीरे धीरे और बिगड़ती गई। हर गुनाह का दोष उस पर मढ़ा जाने लगा।
2: इसके बाद भिक्षुओं सन्यासियों का युग आता है। यह बौद्ध धर्म के उदय के साथ आया। यह धर्म कहता है कि केवल भिक्षु ही निर्वाण प्राप्त कर सकता है, जो हेवन के समान कोई वस्तु है। फल यह हुआ कि संपूर्ण भारत एक अत्यंत विशाल मठ बन गया। केवल एक उद्देश्य था, एक सतत संघर्ष था, पवित्र रहना। सब दोष नारी के सिर मढ़ा गया। लोकोक्तियां भी उनके विरुद्ध चेतावनी देने लगी। उनमें से एक थी, नरक का द्वार क्या है? पर इसका उत्तर था नारी। दूसरी थी, वो जंजीर क्या है जो हमें मिट्टी से बांधती है? नारी। एक और थी, अंधों में सबसे अधिक अंधा कौन है? वो जो नारी द्वारा ठगा जाता है।
0: स्वामी जी पूरब और पश्चिम की तुलना करते हैं। वे कहते हैं, पश्चिम के मठों में भी ऐसे ही विचार पाए जाते हैं। सब मठ व्यवस्थाओं के विकास का अर्थ सदा नारियों की अवहेलना रहा है।
2: पर अंततः नारीत्व की एक दूसरी कल्पना का उदय हुआ। पश्चिम में उसे अपना आदर्श पत्नी में और भारत में मां में मिला। पर यह ना सोचो कि यह परिवर्तन पुरोहितों के द्वारा हुआ। मैं जानता हूं कि वे सारे संसार की प्रत्येक वस्तु पर सदा अपना दावा रखते हैं, और मैं ये कहता हूं, यद्यपि मैं स्वयं एक पुरोहित हूं, मैं प्रत्येक धर्म और देश के मसीहा के सामने नत जानू, पर निष्पक्षता मुझे यह कहने को बाध्य करती है कि यहां पश्चिम में नारी का उत्थान जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे लोगों और क्रांतिकारी फ्रांसीसी दार्शनिकों के द्वारा किया गया। धर्म ने निसंदेह कुछ किया है, पर सब नहीं।
0: स्वामी शुद्धानंद स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रतिष्ठित बेलूर मठ के एक सन्यासी थे। उन्होंने अपने संस्मरण में स्वामी जी के व्यक्तित्व का एक नया पक्ष उजागर किया है।
4: एक दिन अपराह्न काल में स्वामी जी मठ के बरामदे में हम लोगों को लेकर वेदांत पढ़ाने बैठे। संध्या होने ही वाली थी। स्वामी रामकृष्णानंद को इससे कुछ दिन पहले स्वामी जी ने प्रचार कार्य के लिए मद्रास भेजा था, इसलिए उस समय मठ में पूजा आरती आदि उनके एक दूसरे गुरु भ्राता संभालते थे। आरती में जो लोग उनकी सहायता करते थे उन्हें भी लेकर स्वामी जी वेदांत पढ़ाने बैठे थे। उसी समय उक्त गुरु भ्राता आकर नवीन सन्यासी ब्रह्मचारियों से कहने लगे, चलो जी चलो, आरती करनी होगी, चलो। उस समय एक ओर स्वामी जी के आदर्श से सभी वेदांत पढ़ने में लगे हुए थे और दूसरी ओर इनके आदेश से ठाकुर जी की आरती में सहयोग देना चाहिए। अतः नवीन साधु लोग कुछ समय असमंजस में पड़ गए। तब स्वामी जी ने अपने गुरु भ्राता को संबोधित कर उत्तेजित होकर कहने लगे, ये जो वेदांत पढ़ा जा रहा था, ये क्या ठाकुर की पूजा नहीं है? केवल एक चित्र के सामने जलती हुई बत्ती घुमाना और झांझ पीटना मालूम होता, आरती भी समाप्त हो गई। किंतु आरती के बाद उक्त गुरु भ्राता चुपके से कहीं चले गए। तब तो स्वामी जी भी अत्यंत व्याकुल होकर बारंबार, वो कहां गया? क्या वो मेरी काली खाकर गंगा में तो नहीं डूब गया?
1: सब लोग डर गए, सभी उस युवा सन्यासी को ढूंढने लगे,
4: इस तरह कहने लगे और सभी लोगों को उन्हें ढूंढने के लिए चारों ओर भेजा। बहुत देर बाद मठ की छत पर चिंतित भाव से उन्हें बैठे हुए देखकर एक व्यक्ति उन्हें स्वामी जी के पास ले आए। उस समय स्वामी जी का भाव एकदम परिवर्तित हो गया। उन्होंने उनका कितना दुलार किया।

0: ना के बारे में जानकारी हमें बेलूर मठ में रखी डायरी से मिली। शुद्धानंद कहते हैं,
1: एक दिन बरामदे में टहलते टहलते उन्होंने मुझसे कहा, देखो मठ की एक डायरी रखना और प्रत्येक सप्ताह मठ की रिपोर्ट भेजना। स्वामी जी के इस आदेश का मैंने और बाद में अन्य व्यक्तियों ने भी पालन किया था। अभी भी मठ की वो आंशिक छोटी डायरी मठ में सुरक्षित है। उससे अभी भी मठ के क्रम विकास और स्वामी जी के संबंध में बहुत से तथ्य संग्रह किए जा सकते हैं।
2: बेलूर मठ की डायरी से हमें कुछ और प्रश्नोत्तर मिले हैं, आइए सुने।
3: हमारे चरित्र का सर्वोच्च आदर्श क्या होना चाहिए?
4: त्याग।
3: बौद्ध धर्म ने अपने दाय के रूप में भ्रष्टाचार कैसे छोड़ा?
4: बौद्धों ने प्रत्येक भारतवासी को भिक्षु या भिक्षुणी बनाने का प्रयत्न किया था, परंतु सब लोग तो वैसे नहीं हो सकते। इस तरह किसी भी व्यक्ति के साधु बन जाने से भिक्षु भिक्षुणियों में क्रमशः शिथिलता आती गई। और भी एक कारण था, धर्म के नाम पर तिब्बत तथा अन्यान्य देशों के बर्बर आचारों का अनुकरण करना। वे इन स्थानों में धर्म प्रचार के हेतु गए और इस प्रकार उनके भीतर उन लोगों के दूषित आचार प्रवेश कर गए। अंत में उन्होंने भारत में इन सब आचारों को प्रचलित कर दिया।
3: ईश्वर की सेवा करने की क्या आवश्यकता है?
4: यदि तुम एक बार ईश्वर के अस्तित्व को मान लेते हो तो उनकी सेवा करने के यथेष्ट कारण पाओगे। सभी शास्त्रों के मतानुसार भगवत सेवा का अर्थ है स्मरण। यदि तुम ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हो तो तुम्हारे जीवन में पग पग पर उनको स्मरण करने का हेतु सामने आएगा।
5: क्या माया अद्वैतवाद से भिन्न है?
4: नहीं, दोनों एक ही हैं। मायावाद को छोड़ अद्वैतवाद की और कोई भी व्याख्या संभव नहीं।
3: कभी कभी जब से थकान मालूम होने लगती है तब क्या उसकी जगह स्वाध्याय करना चाहिए या उसी पर आरूढ़ रहना चाहिए?
4: दो कारणों से जब मैं थकान मालूम होती है, कभी कभी मस्तिष्क थक जाता है और कभी कभी आलस्य के परिणाम स्वरूप ऐसा होता है। यदि प्रथम कारण है तो उस समय कुछ क्षण तक जप छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हठ पूर्वक जप में लगे रहने से विभ्रम या विक्षिप्तावस्था आ जाती है। परंतु यदि द्वितीय कारण है तो मन को बलात् जप में लगाना चाहिए।
3: कभी कभी जप करते समय पहले आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन तब आनंद के कारण जप में मन नहीं लगता। ऐसी स्थिति में क्या जप जारी रखना चाहिए?
4: हाँ, वो आनंद आध्यात्मिक साधना में बाधक है, उसे रसास्वादन कहते हैं, उससे ऊपर उठना चाहिए।
5: यदि मन इधर उधर भागता रहे तब भी क्या देर तक जप करते रहना ठीक है?
4: हाँ, उसी प्रकार जैसे अगर किसी बदमाश घोड़े की पीठ पर कोई अपना आसन जमाए रखे तो वो उसे वश में कर लेता है।
2: भगिनी निवेदिता भी अक्सर स्वामी जी से अपनी शंका दूर करने के लिए प्रश्न पूछा करती थी। उन्हीं की डायरी से ये प्रसंग मिला है।
6: पृथ्वीराज एवं चंद जिस समय कन्नौज में स्वयंवर के लिए जाने को प्रस्तुत हुए, उस समय उन्होंने किसका छद्मवेश धारण किया था? मुझे याद नहीं आ रहा है।
4: दोनों ही भाट का वेश धारण करके गए थे।
6: क्या पृथ्वीराज ने संयुक्ता के साथ इसीलिए विवाह करना चाहा था कि वह अलौकिक रूपवती थी तथा उसके प्रतिद्वंदी की पुत्री थी? संयुक्ता की परिचारिका होने के लिए क्या उन्होंने अपनी एक दासी को सिखा पढ़ा कर वहां भेजा था? और क्या इसी वृद्धा धात्री ने राजकुमारी के हृदय में पृथ्वीराज के प्रति प्रेम का बीज अंकुरित किया था?
4: दोनों ही परस्पर के रूप गुणों का वर्णन सुनकर तथा चित्र अवलोकन कर एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हुए थे। चित्र दर्शन के द्वारा नायक नायिका के हृदय में प्रेम का संचार भारत की एक प्राचीन रीति है।
6: गोप बालकों के बीच में कृष्ण का प्रतिपालन कैसे हुआ?
4: ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि कृष्ण कंस को सिंहासन से विच्युत करेंगे। इस भय से कि जन्म लेने के बाद कृष्ण कहीं गुप्त रूप से प्रतिपालित हो, दुराचारी कंस ने कृष्ण के माता पिता को कैद में डाल रखा था। यद्यपि वे कंस की बहन और बहनोई थे तथा इस प्रकार का आदेश दिया कि उस वर्ष से राज्य में जितने बालक पैदा होंगे उन सब की हत्या की जाएगी। अत्याचारी कंस के हाथ से रक्षा करने के लिए कृष्ण के पिता ने उन्हें गुप्त रूप से यमुना पार पहुंचाया था।
6: उनके जीवन के इस अध्याय की परिसमाप्ति किस प्रकार हुई थी?
4: अत्याचारी कंस के द्वारा आमंत्रित होकर वे अपने भाई बलदेव तथा अपने पालक पिता नंद के साथ राजसभा में पधारे। अत्याचारी ने उनकी हत्या करने का षड्यंत्र रचा था, पर उन्होंने अत्याचारी का वध किया, किंतु स्वयं राजा न बनकर कंस के निकटतम उत्तराधिकारी को उन्होंने राज सिंहासन पर बिठाया। उन्होंने कभी कर्म के फल को स्वयं नहीं भोगा।
6: इस समय की किसी नाटकीय घटना का उल्लेख क्या आप कर सकते हैं?
4: इस समय का जीवन अलौकिक घटनाओं से परिपूर्ण था। बाल्यावस्था में वे अत्यंत ही चंचल थे। चंचलता के कारण उनकी गोपिका माता ने एक दिन उन्हें दधि मंथन की रस्सी से बांधना चाहा, किंतु अनेक रस्सियों को जोड़कर भी वे उन्हें बांधने में समर्थ न हुई। तब उनकी दृष्टि खुली और उन्होंने देखा कि जिनको वे बांधने जा रही हैं, उनके शरीर में समग्र ब्रह्मांड अधिष्ठित है। डर कर कांपती हुई वे उनकी स्तुति करने लगी। तब भगवान ने उन्हें पुनः माया से आवृत किया और एकमात्र वही बालक उन्हें दृष्टिगोचर हुआ।
0: स्वामी जी ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा,
4: देव श्रेष्ठ ब्रह्मा को यह विश्वास न हुआ कि परम ब्रह्म ने ही गो बालक का रूप धारण किया है। इसलिए परीक्षा के निमित्त एक दिन उन्होंने समस्त गायों तथा गो बालकों को चुराकर एक गुफा में निद्रित कर रखा, किंतु वहां से लौटकर उन्होंने देखा कि वे ही गाय तथा गो बालक कृष्ण के चारों ओर विद्यमान है। वे फिर उनको भी चुरा कर ले गए और उन्हें भी छिपा कर रखा, किंतु लौटने पर उन्हें फिर वे जो के त्यों दिखाई देने लगे। तब उनके ज्ञान नेत्र खुले। उन्होंने देखा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड तथा सहस्त्र सहस्त्र ब्रह्मा कृष्ण की देह में विराजमान है।
2: स्वामी जी कहानी सुनाते सुनाते उसकी व्याख्या भी करते रहते थे ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।
4: कालिया नाग ने यमुना के जल को विषाक्त कर डाला था, इसलिए उन्होंने उसके फन पर नृत्य किया था। उनके द्वारा इंद्र की पूजा बंद किए जाने के फलस्वरूप कुपित होकर इंद्र ने जब इस प्रकार प्रबल वेग से जल बरसाना प्रारंभ किया कि समस्त ब्रजवासी मानो उसमें डूब कर मर जाएंगे, तब कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया। कृष्ण ने एक अंगुली से छत्र की तरह गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठाकर धारण किया और उसके नीचे सभी ने आश्रय लिया। बाल्यकाल से ही वे नाग पूजा तथा इंद्र पूजा के विरोधी थे। इंद्र पूजा एक वैदिक अनुष्ठान है। गीता में सर्वत्र यह स्पष्ट है कि वे वैदिक अनुष्ठानों के पक्षपाती नहीं थे। अपने जीवन में इसी समय उन्होंने गोपियों के साथ लीला की थी। उस समय उनकी आयु 11 वर्ष की थी।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब आपको बता देते हैं कल सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। सुबह 7 बजे आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम जीवन सौरभ। अक्षय निधि कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 7:10 से। भक्ति गीतों का आनंद लीजिएगा 7:20 से।

पंडित किशोरी लाल पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग आपको सुनवाएंगे सुबह 8 बजे से। 8:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कल सुनेगा गौड़ राज्य चंद्रपुर का इतिहास के विषय में चर्चा। योग संवाद ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 9 बजे से। माधवराव सप्रे पर केंद्रित कार्यक्रम भारत विभूति सुनेगा 9:30 से। परिक्रमा आप सुनेंगे 10 बजे और रेडियो रिपोर्ट में सुनेगा स्वाधीनता के गान। भगत सिंह पर केंद्रित कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा सुनेगा 10:30 से। सुबह 11 बजे आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुर सागर। और 11:30 पर सुनेगा स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। ये थी जानकारी कल प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10 बजे हैं और इसी के साथ हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।